0: नमः। आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही सौंधे सौंधे से, मासूम, पवित्र और सीधे सीधे सच्चाई से भरे हुए प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, और बहुत सारे अलग अलग विषय होंगे जिससे हम अपने जीवन को और खूबसूरत बना पाए। तो हमारे साथ है महुआ चक्रवर्ती जी, बाकी मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा। यूं तो मैं भी उनको उनके बारे में बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद बताएंगे महुआ जी, तो हमारे सुनने वालों को ज्यादा कनेक्शन लगेगा आपसे। तो आपका स्वागत है, प्लीज अपने बारे में बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं, कौन हैं आप?
1: जी समीर जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए, दिव्य दर्शन और आप ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं मुझे, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसे आपने बताया, महुआ चक्रवर्ती तो मेरा नाम है, बंगाली हूँ, बट मेरा जो जन्म हुआ है वो उड़ीसा के एक टाउन में, राउरकेला नामक टाउन में हुआ है। और मेरी जो एजुकेशन है, बैकग्राउंड, वो है इंजीनियरिंग की, और फिर उसके बाद करीब 24 साल मैं आईटी इंडस्ट्री में थी। बट जिंदगी में शायद शुरुआत से ही जिंदगी ने कुछ सिखाना चाहा और मैं सीखते चली गई, जीवन चेंज होते होने लगा। और अभी मैं, जैसे लास्ट ईयर ही नवंबर में मैंने रिजाइन किया स्वेच्छा से, वॉलंटरीली, ताकि मैं फुल फ्लेजेड जो है किसी पर्पस लेड काम के लिए अपना जिंदगी का वो कर सकूं, उस पे ध्यान दे सकूं। क्योंकि 12 साल से, पिछले 12 साल से, करीब 2013 से मैं बहुत कुछ अलग भी कर रही हूँ। जिंदगी में कुछ चेंजेस आए, कुछ क्राइसिस सिचुएशंस थे, मेरे एक जो छोटा भाई था, उसका अचानक से डेथ होने पे, और फिर उसके लेस देन अ ईयर फिर मेरे पापा का चले जाने से, तो बहुत जीवन पे एक भारी प्रभाव पड़ा, क्योंकि मैं बड़ी बेटी थी घर की और जिम्मेदारी बहुत थी, और फिर उससे भी ज्यादा बड़ा था कि लाइफ को और गहराई से समझना। तो ये चलता रहा सिलसिला, तो तब से मेरी जो खोज थी वो स्टार्ट हो गई थी डीपर सेंस में, कि

0: भरा पूरा जो है जॉब छोड़ना इतना इजी डिसीजन नहीं होता है, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मेरा लाइफ का पर्पस ये है तो लेट मी गिव इट अ ट्राई. तो अभी मैं महुआ लाइफ साइंसेस जो है मेरी संस्था, उसकी फाउंडर हूँ, जो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने का काम करती है. इट्स एन एमलगेशन ऑफ बोथ स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज साइंस.
1: वाओ, दिस इज वन बिग टास्क जो आप कैरी कर रही हैं. वेरी वेरी सिंसियर. एंड ऑफ कोर्स उसके पीछे जो रीजन आपने मुझे बताया वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. आई परफेक्टली अंडरस्टैंड. ठीक है महुआ जी, तो थैंक यू सो मच. हमें पता लगा कि आप कौन हैं, कहाँ हैं. तो अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में आपसे बातचीत करें, इस पॉडकास्ट के बारे में बातचीत करें, तो जैसा आपने अभी अभी अपने परिचय में बताया, ह्यूमन लाइव्स, ह्यूमन वैल्यूज, और किस तरीके से हम अपने को कनेक्ट कर सकते हैं टू अ हायर पावर, अपने अंदर के अपने सोए हुए जो विचार हैं शायद उनको हिप्नोटिज्म के थ्रू हम बाहर निकालें, रिजॉल्व करें. सो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, यानी कि आध्यात्म के बारे में, जिसके बारे में ये प्रोग्राम है, आपको कब सुनने में आया, कब आपको पता चला, या किसने बताया, व्हेन?
0: देखिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं. अगर मैं अपना हिस्ट्री में देखूं, इट वाज परहैप्स कहीं पे इनग्रेन्ड था शायद. और अभी मैं जब सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि देखिए, मेरे जो जो हमारे जो फॉर्मेटिव एज एज से हम गुजरे हैं, मुझे लगता है कहीं पे ये 1900 का दशक में ना स्पिरिचुअलिटी का जो दौर था वो थोड़ा सा धीमा पड़ गया था. अब मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरे दादाजी उससे पहले जो थे, परहैप्स 1800s, लेट 1800s में, तब वो बहुत ज्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव था. बट आई थिंक 1900 से लेकर 2000 के बीच ये थोड़ा सा ये जो सारे रिवोल्यूशन हुए ना हमारे, आफ्टर द फ्रीडम, आवर फ्रीडम स्ट्रगल और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो सब के चक्कर में पीपल वेंट इनटू अ सर्वाइवल मोड, जो कि तब वो सर्वाइवल एंड जॉब एंड एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान आने लग गया. तो मैं अगर अपना अपना खास करके अपना बचपन देखूं, हमारे घर में पूजा पाठ बहुत कुछ होता था. हम जाते थे रामकृष्ण मिशन, हमारे घर में दुर्गाष्टमी का पूजा होता था, तो वो सब तो होता था. बट आई कंसिडर देम एज वेरी रिचुअलिस्टिक. मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेडिटेशन करना चाहिए, साधना करना चाहिए, या इससे ऐसा होता है, ये कनेक्शन बन सकता है. ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं कभी. ये तो मेरे ख्याल से मैंने थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर्स ही सीखा है. और जैसे मैंने आपको बताया, 2013 में लाइफ उससे पहले बहुत अलग थी, लेकिन 2013 से बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया मेरे अंदर. एंड आई थिंक तभी से मुझे ये इसका आभास हुआ स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि मैंने मैंने वो खुद फील किया, एक्सपीरियंस किया. तो मेरे मेरे लिए तो मेरे ख्याल से तभी से ये बहुत ज्यादा डेप्थ पकड़ा.
1: ऑल राइट, आई गेट इट, आई गेट इट मैम. बिल्कुल फ्लो है जिंदगी का जो हमें डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स पे या सही पाथ पे लेके जाता है. और ठीक है ना, वैसे भी अगर हम कनेक्ट करें अपने आप को, और फिर जिस तरह यू नो क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स की बात आप जो कर रही हैं, उसमें वी ऑल टेक बर्थ ऑन दिस अर्थ विद ऑल दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमें बताए ही, हम रियलाइज भी कर लेते हैं उसको. तो चलिए मुझे फिर स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा मतलब समझाइए ना, अध्यात्म का मतलब समझाइए. क्या समझूं मैं अध्यात्म से?
0: देखिए समीर जी, मेरे लिए जो है ना स्पिरिचुअलिटी का मतलब है द प्रोसेस ऑफ सीकिंग, सीकिंग द ट्रुथ, द मोस्ट ऑथेंटिक ट्रुथ. और हमें वो ट्रुथ कहाँ मिलेगा? वो ट्रुथ हमें बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकता है, बिकॉज इट्स ऑल माया, जैसे हम जानते हैं. तो हमें वो इल्यूजन से दूर होके हमें वो ट्रुथ को सीख करना है. तो उसके लिए हमें, ऑफ कोर्स, मुझे लगता है हमें जो है अपनी अंदरूनी जो हमारी जो जर्नी है उसे शुरू करना बहुत जरूरी है. तो हमें इनवर्ड फेस करना पड़ेगा पहले. हम जो है बाहर मुखी होके हैं, अभी सारा दुनिया को देख रहे हैं, बट द मोमेंट वी टर्न इनवर्ड्स एंड मूव इनसाइड अस, तब जो है हम अपने अपने आप को ढूंढ पाएंगे. एंड फॉर मी जो है

0: हाँ, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है नोइंग योर स्पिरिट, और स्पिरिट तो सोल ही है, हमारी आत्मा ही है। तो अपने जो असली स्वरूप से जुड़ना, उसी को मुझे लगता है, मेरे हिसाब से वही स्पिरिचुअलिटी है। इट इज बेसिकली क्योंकि देखिए, जैसे बाहर जो होता है ना, वो आपके भीतर का ही एक रिफ्लेक्शन है जो आप बाहर देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसका मतलब है कि माइक्रोकॉजम जो है वो वही मैक्रोकॉजम हमें दिखाता है। मैक्रोकॉजम इज द यूनिवर्स एंड माइक्रोकॉजम इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अस, इनसाइड आवर बॉडी। तो ये जो पूरी यूनिवर्स है, यही समाई हुई है हमारे अंदर भी, वही वही सारे स्ट्रक्चर्स, वही सारे एलिमेंट्स, वही सारे तत्व सब हमारे अंदर ही हैं। तो जिस वक्त हम जो है कि जगत को जानने का कोशिश करेंगे, वो हमारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग लगने लगेगा। तो अच्छा यही है कि पहले हम अपने आप से शुरू करें। तो मुझे मुझे ये भी लगता है कि जैसे ही हम अपने आप को जानना स्टार्ट करेंगे ना, हमारे अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी आने लगेगी, क्योंकि हम अवेयर होते रहेंगे कि हम, सपोज कोई इंसान जो है ना, बहुत, सपोज लेट्स से बहुत एंग्री काइंड ऑफ पर्सन है, तो उसे क्या दिखेगा दुनिया में? उसे हर चीज में गुस्सा ही आएगा, हर इंसान के ऊपर उसको एंगर ही आएगा, क्योंकि वो अंदर से बहुत टूटा हुआ होगा। हो सकता है कोई पास्ट अनहील्ड उसका, कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट उसके साथ हुआ है जो अनहील्ड है, या किसी वजह से वो अपने आप से कभी प्यार ही नहीं किया, तो वो इंसान जो है वो हमेशा गुस्सा करेगा। हम क्या सोचते हैं जनरली कि अरे ये तो इतना गुस्सैल इंसान है, इससे बात ही मत करो, इसको अवॉइड करो, इसको ऐसे करो, बट कोई जानने का कोशिश नहीं करता है कि हर इंसान का अपना पास्ट होता है, और उसका जो प्रेजेंट होता है वो बहुत प्रभावित होता है उसके पास्ट से। तो मैं मतलब अपने तरफ से बोलू ना समीर जी, तो मुझे हमेशा, मैं किसी को भी पहले देखती हूँ, मैं उसे जज नहीं करती हूँ, क्योंकि हर इंसान जो है ना अपना वो पास्ट लेके आया है, एंड दैट इटसेल्फ इज व्हाट आई फील इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि आप एकदम न्यूट्रल हो जाइए। आप बहुत ज्यादा अपना जो परसेप्शन है, क्योंकि हमारा परसेप्शन, हमारा बिलीव्स, वैल्यूज, जैसे आप बता रहे थे ना कि वैल्यू सिस्टम से, बिलीव से हमारे जो थॉट्स हैं उसी से बनते हैं, और उसी को अगर हम थोड़ा सा नलिफाई कर देते हैं तो हमारा जो है वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव बन जाता है, तो हम बेहतर समझ सकेंगे किसी और को। सो ये इनर अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। जब आपका मन, आपकी जो आपकी आत्मा, आपका जो डायरेक्शन जो भी है आप ले रहे हैं जिंदगी का, वो सारी चीज जो अलाइन हो, तभी आपका जो रिलेशन है अपने साथ वो बहुत ज्यादा फर्म बनते जाएगा, एंड इट विल बिकम डिवाइन इन इटसेल्फ, बिकॉज यू आर देन बिकमिंग प्योर, राइट? एक एक लेयर आपका निकलते जा रहा है, एंड यू आर बिकमिंग ग्रॉस से सटल की तरफ आप जा रहे हो, आप प्योर बनते जा रहे हो, अपने आप यू नो थिंग्स फॉल इन प्लेस, एंड दैट इज वॉट स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू मी।
1: राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब आपने बिल्कुल सही सही बहुत मतलब नॉर्मल रूटीन लैंग्वेज में ही क्लियर बताया है। अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से सभी के लिए। तो अगर हम आज की डेट में हैं तो हम ट्राई करते हैं जो हमारी अगली जनरेशन आ रही है उनके लिए हम थोड़ी चीजें क्लियर करें, क्योंकि बहुत साफ बात है, इतना एक्सपीरियंस उन लोगों को अभी नहीं होगा कि वो इतनी गहराई में जाएं इन चीजों की। तो आपको क्या लगता है, जो आपने डेफिनेशन अभी दी या एक्सप्लेन किया, यूथ को अगर इसको समझाएं, आज की जनरेशन को इसको समझाएं कि भला देखिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, और वो अच्छा मोर ओवर इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती कि यूथ आज की डेट में या कहें तो कभी का भी इस चीज में इंटरेस्टेड होता है कि भाई ये चीज मैं प्रैक्टिस करूं मैम तो मेरे लिए क्या फायदेमंद है। तो हाउ वुड वी एक्सप्लेन दिस टू द जनरेशन, द यंग जनरेशन, कि स्पिरिचुअलिटी ये है और आपके लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कैन लिव योर लाइफ पीसफुली। सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस टू देम?
0: या मुझे लगता है देखिए, आज का जो जनरेशन है वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, एंड वी कैन नॉट नेगेट दिस फैक्ट समीर जी। मुझे लगता है बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है वर्ल्ड में ऑलरेडी, दे आर वेरी अवेयर। ये बहुत मतलब दिस इज समथिंग विच आई रियली रिस्पेक्ट। आज के जनरेशन में. हाँ, दो तरह की चीजें होती है यहाँ पे, बट मुझे लगता है जो इनर सीकिंग है ना, मतलब टू लीड अ पर्पसफुल लाइफ, जो आपने बताया कि हमें क्या मिलेगा इससे, ये जो क्वेश्चनिंग ऑफ द नॉर्म है, नॉट नॉट एक्सेप्टिंग थिंग्स एज इट इज, किसी ने बोला, हमारी मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, या वो कर रहे थे इसलिए हमें भी करना है, इट्स नॉट लाइक दैट. एंड इट इज नॉट इन अ, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में, या डिसेंट कर रहे हैं, या वो हमें कन्फ्रंट कर रहे हैं, वो बड़े रिस्पेक्ट के साथ हमें पूछ रहे हैं. एंड आई आई रियली, मेरे भी दो बच्चे हैं समीर जी, मेरा बेटा जो है 15 साल का है, बेटी 11 साल की है. तो जब वो, मेरा बेटा ऐसा ही है कि वो हर चीज को ना एक्सेप्ट नहीं करता है, नॉर्म को, वो मुझे क्वेश्चन करता है, मम्मा ऐसे क्यों करना है मुझे. और माई माई पॉइंट इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बिकॉज दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये एज इज एक्सेप्ट कर लेना है. इट इज लाइक आइदर आई कन्विंस यू और यू यू नो कन्विंस मी, एंड हूएवर कन्विंसेस ईच अदर इज वॉट वी नीड टू काइंड ऑफ एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, राइट. ये जबरदस्ती नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं है. तो जैसे मैं बता रही थी, तो एक इनर सीकिंग जो है ना, आज के जेनरेशन में कुछ लोगों में ऑलरेडी ये चीज है. अब ये बात अलग है कि देखिए, यंग जब होते हैं बच्चे, या एडोलेसेंस या टीनेजर्स में, वो तो हमें सभी लोग, वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू, और हमें पता है कि देर इज एन हार्मोनल सर्ज, और थोड़ा सा वो लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, इंप्रेशनेबल माइंड्स होते हैं उनका, वो लोग इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं बाहर की चीजों से, तो इस वजह से थोड़ा उनका अपडाउन होता है. बट द गुड थिंग इज कि दे सीक, दे आर क्वेश्चनिंग ओल्ड सिस्टम, वो लोग जो है मीनिंग खोज रहे हैं, वो लोग इमोशनल सेफ्टी खोज रहे हैं, पर्पस खोज रहे हैं अपने काम से. तो ये बहुत पॉजिटिव एक इंडिकेशन है. एट द सेम टाइम जो एक चीज जो है ना, कि स्पिरिचुअलिटी का एक ट्रेंड भी बन गया है. ये मैं पर्टिकुलरली यंग जनरेशन को नहीं बोल रही हूँ, दे आर ओनली कंज्यूमिंग, राइट, दे आर सीइंग व्हाट इज बीइंग प्रोजेक्टेड टू देम. बट ये जो ट्रेंड है ना, दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ. जो आजकल बहुत सारे ऐसे कुछ भी रील्स बन जाते हैं मैनिफेस्टेशन को लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, सी दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी डीप सब्जेक्ट्स, राइट. स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी वेरी डीप थिंग, इट इज अ वेरी पर्सनल जर्नी किसी की, इट इज नॉट आउट इन द ओपन. हाँ, आप बता सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कुछ लोगों के साथ, जो लोग लाइक माइंडेड है, जो लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बट इट इज नॉट फॉर एवरीवन इज व्हाट आई फील. क्योंकि बहुत लोग आएंगे, कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, एंड यू नो उसको मजाक में उड़ा के चले जाएंगे, विच पेन्स मी ऑनेस्टली. मुझे बहुत ये पेन करता है, क्योंकि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन इज व्हाट आई फील. एंड अभी इसको क्या है ना, कि अभी अपीयरेंस को भी इसके साथ क्या बोलूं मैं आपको, इसको मिला दिए हैं. लाइक ऐसा दिखना चाहिए, अगर कोई स्पिरिचुअल है तो उसे तिलक लगाना चाहिए, उसको धोती कुर्ता पहनना चाहिए. ऐसा नहीं होता है. स्पिरिचुअलिटी, लाइक आई सेड, इज अ वेरी पर्सनल थिंग, इट्स अ इनवर्ड जर्नी. आप कितना सिंपल इंसान है वो डिपिक्ट करता है, मन से आप कितना डीप है, कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना हम्बल है, कितनी रेजिलियंट है, वो डिपिक्ट करता है आपका स्पिरिचुअल डेप्थ को. और ये जो ट्रेंड वाला चीज है ना, वो मुझे नहीं पसंद है ऑनेस्टली, बिकॉज दिस इज समथिंग. आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, इस बार जो ये जो आपका कुंभ मेला जो हुआ था लास्ट हमारा
1: जी,
0: इसमें आप देखिए, आई थिंक फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 60-70 crore पीपल वेंट देयर. And I have seen, मैंने मेरे कितने जान पहचान के लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे समीर जी, they went in the last leg, like last one week, वो फरवरी का 3rd week, 2nd week, 20-22 तारीख को वो लोग मतलब to just ensure कि they don't miss upon anything, मतलब ताकि वो आके इंस्टा में अपना पोस्ट दे सके. दिस रियली हर्ट मी, बिकॉज आई नो पर्सनली कि दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुंभ. एंड This is something that I feel is not okay. और ये जो बहुत सारे जो just to catch up with the trend जो करते हैं ना, वो नहीं मुझे, I think that is not okay. But otherwise, wherever people are doing with the right intent, नहीं जानना एक चीज है, which is absolutely fine. हर किसी को हर चीज नहीं पता होता है, and वही सीखने का तरीका है. But ये जो है ना, कि थोड़ा बहुत वो जो ट्रेंड फॉलो करना जस्ट टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड एंड डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ ओनली दैट इज समथिंग दैट आई थिंक इज समवेयर दिस जनरेशन नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड काइंड ऑफ यू नो टेक अ बैक सीट ऑन. क्योंकि स्पिरिचुअल ये आप देखिए ट्रू स्पिरिचुअल जो आदमी होगा ना वो आप वो बहुत सॉफ्ट एंड हम्बल होगा अंदर से. ये आपको ऑटोमेटिकली आपको हम्बल बना देगा. दैट डजंट मीन दैट यू आर वीक. वो आपको बहुत स्ट्रांग भी बनाएगा, बहुत स्ट्रांग, ताकि आप एकदम सेंटर्ड रह सके, आप मोर रिस्पॉन्सिबल हो सके. लेकिन आप परफॉर्मेंस के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप दूसरों के एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए नहीं करेंगे. यू विल बी विद इन योर सेल्फ.
1: आई गेट इट. ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं. ट्रेंडिंग होना, फोमो कि को भी वही करना है जो सारी दुनिया कर रही है, अदरवाइज पीपल विल कॉल मी स्टूपिड फूल. ये एक बहुत बड़ा वायरस है जो हम लोगों के अंदर भरा हुआ है. कुछ नहीं कर सकते इसमें. युवाओं की बात हो रही थी, कि हम किस तरीके से अपने युवाओं को ये चीज सिखाएं. तो यहां पर बस रुक कर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. एंड आई हैव अ भजन स्पेसिफिकली फॉर यंग जनरेशन. So I would just like to play it here. Thank you, ma'am.

0: रहता है मंत्र पाठ वगैरह, तो एक वाइब्रेशन भी बना रहता है अच्छा सा। सो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं भी खुद जब ड्राइव मतलब ऑफिस जाना होता है कहीं लॉन्ग ड्राइव में मैं जाती हूँ 1 घंटा का, बैंगलोर का ट्रैफिक आपको पता ही है, तो मैं जो है मैं कुछ तो लगा देती हूँ अपना मतलब यू नो सो दैट आई एम आइदर आई डू अ गीता सारांश या फिर मैं सुनते रहती हूँ स्वामी अवधेशानंद स्वामी जी का, उनका अपना देखते रहती हूँ। मैं खुद क्रिया योग में इनिशिएटेड हूँ तो मैं उसके ऊपर कुछ अपना देखने लगती हूँ। तो जो भी मेरा अपना चॉइस है, या आई लुक फॉर आई मीन आई हियर फॉर सम लीडर्स का अपना उनका कुछ सुनते रहती हूँ। सो आई ट्राई टू यूज। तो आप देखिए कितना वो एडवांटेज बन गया हमारा कि सोशल मीडिया है या आपका जो भी टेक्नोलॉजी है उसका हम लोग अगर सदुपयोग कर सके तो उसको हम लोग कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जैसे ही वो डूम स्क्रोलिंग में आ जाता है या आप जो बोलते हैं ना बिंज वॉचिंग में आ जाता है कि एवरी सेकेंड यू आर जस्ट स्क्रोलिंग इट विदाउट स्टॉपिंग, तो वो चीज जो है देन इट इज कंज्यूमिंग यू देन, राइट? इट इज नॉट हेल्पिंग यू। आपका जो टाइम आपका जो पूरा दिन वो जो है हम अपना बेकार कर देते हैं। सो ये इंफॉर्मेशन को लेके जब तक हम अपना पर्सनल डेवलपमेंट में या खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ यूज कर सके, आई थिंक इट इज अ बून, बड़ा ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। बट अगर वो ना हो सके देन दैट बिकम्स अ लिटिल चैलेंज। तो और एक चीज
1: जी जी जी
0: या और एक चीज जो मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी जो मैं सोशल मीडिया में स्पेशली इंस्टाग्राम एंड वो सब में ना आप देखेंगे कि काफी लोग जो है ना जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो रेलेवेंस कितना है उनका जो भी नॉलेज लेवल या अपना लाइफ एक्सपीरियंस से या जो भी है वो लेके बोल रहे हैं विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या दे आर जस्ट कॉन्टेंट मेकिंग मशीन्स कि जो भी जो भी आज किसी ने किया तो उसको कॉपी करके 4 वायरल 10 15 20 वायरल वही टॉपिक पे वही चीज पे, चाहे रेवेडी हो चाहे कुछ हो, तो कुछ हो अब कोई नहीं देख रहा है कि देखो इसका रेलेवेंस क्या है, इसमें सही है कि नहीं है। पीपल कंज्यूम कर रहे हैं ना, बहुत लोग क्या होता है ना जो नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये ओरिजिनल क्या है या ऑथेंटिक कंटेंट क्या है एंड ये सारे जो कुछ फेक भी होते हैं वो सब क्या है, तो उन वो लोग क्या होते हैं ना इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। मुझे उसी चीज से थोड़ा सा घबराहट होती है कि मैं बोलती भी हूँ लोगों को एंड यू नो समटाइम्स स्कूल्स का भी कभी कभी मुझे बुलाते हैं फॉर सम टॉपिक्स पर्सनल डेवलपमेंट टॉपिक्स के लिए, बच्चों को बात करने के लिए। तो मैं वही बोलती हूँ बेटा देखो यू हैव टू वॉच थिंग्स फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स, किसी का भी कुछ भी नहीं सुन लो, आप थोड़ा सा देख लो एंड देन यू कंज्यूम एंड डोंट टेक एवरीथिंग ऑन इट्स फेस वैल्यू। थोड़ा सा यू नो यू रिसर्च यू स्टडी यू अंडरस्टैंड एंड देन सी इफ इट इज रियली रेजोनेटिंग आपके साथ वो बैठ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है।
1: आई गेट इट मैम, आई गेट इट, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब भी जब आप बता रहे थे ना, तो फिर आई रियलाइज्ड वन थिंग विच इज एक्चुअली प्रॉपिंग अप इन माई माइंड राइट नाउ. लेकिन बस मैं आई जस्ट टेक ए स्मॉल पॉज, एक प्यारा सा भजन यहां पर पेश करके मैं वापस आता हूं आपके पास.

0: तो मैम, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, आई गॉट इंट्रीग्ड अबाउट दिस न्यूरो साइंस ग्राउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन. तो अभी आपने जैसे सोशल मीडिया के बारे में, उसको यूज करते हुए हम किसे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बताया मुझे. तो आपका जो ये एक्सपर्टीज है न्यूरो साइंस ग्राउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन, पहली बात तो एक
1: जी
0: मैम इसको थोड़ा सा मुझे समझाइए, और फिर ये बताइए कि इस चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं विद द अमलगमेशन ऑफ सोशल मीडिया टू गिव अ राइट मैसेज टू टुडेज वर्ल्ड.
1: देखिए, जैसे मैं बता रही थी ना कि 2013 से जब से ये इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में हुए, तो आई वाज अ वेरी साइंस ओरिएंटेड पर्सन, रैशनल माइंड, लॉजिकल थिंकिंग, जैसे हमारा होता है ना. बट क्या हुआ ना, जब जब व्हेन आई लॉस्ट माय ब्रदर, आई वाज इन अ कंप्लीट डिनायल मोड. आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट फॉर एटलीस्ट 2-3 मंथ्स, एंड इट वाज अ वेरी सडन थिंग विच हैपेंड. एंड तब ना मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि लाइफ इज मोर देन व्हाट वी सी विथ आर फिजिकल आईज, विच इज लाइक फ्रॉम बर्थ टू डेथ. देर हैज टू बी समथिंग विच इज बियॉन्ड दीज टू विंडोज, एंड दैट इज वेयर माई ओन क्वेस्ट, मेरा जो क्वेस्ट स्पिरिचुअलिटी का, वो स्टार्ट हुआ. और फिर मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ने लगी, अध्ययन करने लग गई. मैं सीखना चाह रही थी, मैं डेस्परेटली गुरु खोज रही थी कि कोई मुझे बताए कि क्या होता है. एंड तब, समीर जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ कुछ मेरे साथ मेटाफिजिकल थिंग्स भी हुए, जो शायद लोगों को, अभी मैं सोचूं तो अभी तो समझ में आता है, तब मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था. एंड देन आई अंडरस्टूड कि नो, दिस इज सो. तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो आई स्टार्टेड विथ रेकी हीलिंग. उसके बाद मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग जो होता है ना, कि आप आप यू कैन रीड, यू जोन इन टू अ थिंग, हाउ यू सेंटर योर सेल्फ. फिर उसके बाद आप उस पर मेडिटेट करके आप कैसे किसी के रिकॉर्ड्स रीड कर सकते हो, हाउ यू कैन अलाइन योर सोल, व्हाट, हाउ यू कैन नो कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है. तो बहुत डीप वो होने लगा. एंड जब जब मैं बात करने लगी लोगों के साथ, तो फिर जब मैं उनको रीडिंग्स बताती थी, तो वो बहुत उनके लिए भी बहुत हैरत वाले चीज होते थे, क्योंकि उनको भी कभी बहुत कभी उनको ऐसा वो लोग कभी सोचे ही नहीं. बट जैसे जैसे मैं बताती गई, तो उनको फील होने लगा कि हाँ, ऐसा तो है, ऐसा तो है. एंड तब से मुझे और ज्यादा इंट्रीग करने लगा ये. तो मैं फिर ह्यूमन बिहेवियर और न्यूरो साइंस पे बहुत अध्ययन की, स्टडी की. एंड देन आई ऑल्सो डिड माई 5 लेवल्स ऑफ क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपी, जहां पे आपका जो है सारा क्लिनिकल, जो भी हिप्नोथेरेपी आप जैसे जानते ही हैं, इट इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द वेरी रिनाउंड पॉपुलर बिहेवियरल चेंज टूल, राइट. तो इट इज नॉट स्टेज हिप्नोसिस. बहुत लोगों का मिथ भी है कि स्टेज हिप्नोसिस जैसे किसी को वशीकरण कर लिया, इट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्ररी टू दैट. दिस इज अ थेरापेटिक मोडालिटी. और जैसे आप जानते हैं कि ये जो सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, इंक्लूडिंग हमारे जो ओबामा हैं, या विराट कोहली बोल लीजिए, ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन का जो ब्रेन सर्जरी हुआ था, दैट वॉज अंडर हिप्नो एनेस्थेशिया. माने बिकॉज बिकॉज ही सी इन यूएस एंड अदर प्लेसेस दे गिव अ लॉट ऑफ इम्फेसिस ऑन ह्यूमन राइट्स, राइट, एंड ह्यूमन व्हाट डू यू से, ह्यूमन राइट्स एंड नीड्स. तो वो लोग हर चीज केमिकल इससे नहीं इंड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही जैसे दिया जाता है वहां पे, चॉइस भी दिया जाता है, फॉर एनी सर्जरी यू वॉन्ट हिप्नो एनेस्थेशिया और रेगुलर एनेस्थेशिया, केमिकल एनेस्थेशिया. सो देर आर मोडेलिटी. सो उस पर मैंने बहुत अध्ययन किया, मैंने अपना स्टडीज किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, सेम लाइफ रिग्रेशन इन बिटवीन, सो लाइफ बिटवीन लाइफ्स में. सो वो सब फिर मेरे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, ये सब जैसे मैंने जैसे जैसे करते गई ना, तो बहुत चीजें ना क्लैरिटी, ये एक तरफ से हो रहा था जहां पे मैं सीख रही थी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट मेंटोर्स, और दूसरी तरफ से मेरा अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन जो हो रहा था अंदरूनी, जिससे मैं अपना साधना कर रही थी. तो पहले तो मैंने इनर इंजीनियरिंग किया, फिर मैं 2018 में, जब मैं बहुत ज्यादा मतलब डेस्परेट थी गुरु के तलाश में, एक बार मैं स्वामी योगानंदा का, मैंने वो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा था बहुत पहले, उसके तब तो कुछ नहीं हुआ, बट उसके बाद मुझे एक अजीब सा खिंचाव होने लगा कि जहां पे मुझे कोई तो बता रहा है, कुछ तो हो रहा है, जहां पे मुझे ये पता चला कि देर इज समथिंग दैट आई हैव टू कंप्लीट, आई मीन आई हैव टू रीस्टार्ट फ्रॉम दिस लाइफ, मतलब जो कि मैं पास्ट लाइफ में अधूरा छोड़ी हुई थी. एंड दैट केम टू मी एज क्रिया योग. तो मैं तब बहुत डेस्परेटली, अभी तो गुरु भी आपको पता है कि थिंग्स आर समटाइम्स लिटिल कमर्शलाइज्ड एंड यू नो यू डोंट नो. यही मैं आपको समझा रही थी कि ऑथेंटिक और बहुत अच्छे लोग हैं, और हमारी संस्कृति जो है एंड वर्ल्ड में भी आई थिंक एवरी रिलीजन एवरी कंट्री हैज यू नो दीज जेम्स, बट दे आर ऑल हिडन. वी इट इज डिफिकल्ट, इट्स अ डिफिकल्ट पाथ कि हम उन तक पहुंच सके. तो बट आई एम बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मुझे एक लिविंग मास्टर से इनिशिएशन हुआ क्रिया योग का. तो तब मेरा अपना वो भी रूट चल रहा था. एंड तो मैं ये दोनों का मिला के, मतलब स्पिरिचुअल और ये जो यू नो द साइंस न्यूरो साइंस पर्सपेक्टिव की व्हाट हैपेंस इन द ब्रेन, सो एक एक लोब्स का क्या होता है, कैसे अमिगडला सर्वाइवल को वो करता है, कैसे हम यू नो बिहेव, क्यों हम बिहेव करते जो हम करते हैं एट सम पॉइंट इन टाइम, क्यों कोई लोग इस तरह करते हैं, सेम सेम ट्रिगर पॉइंट में एक आदमी किसी तरह बिहेव कर रहा है, दूसरा आदमी अलग तरह से बिहेव कर रहा है, व्हाई डज दिस हैपन. तो ये सारी चीजें, और जब आई स्टार्टेड वर्किंग विथ क्लाइंट्स तो ये बहुत ज्यादा यू नो और रिवील होने लगा, एक एक लेयर एज इफ. एंड वही चीज मुझे ना आगे और उस पे रिसर्च करने, स्टडी करने के लिए हेल्प करते रहा. आज जो मैं करती हूँ कि अभी बिकॉज आई हैव डन यू नो आई वर्क्ड विथ मेनी पीपल ये 13-12 साल में, तो अभी और एक जो वो तो मैं करती हूँ थेरापेटिक प्रैक्टिस, बट उससे भी जो अभी लास्ट 7-8 साल से जो मैंने रिसर्च करके एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे लिए, मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, एक प्रोग्राम है जिसमें मैं प्रेग्नेंट वुमेन के साथ काम करती हूँ, उसका नाम है मातृत्व, जिसमें हम जो है ना गर्भ संस्कार, जो हमारे जो अभिमन्यु एंड प्रहलाद के टाइम के जो चीजें हैं, या गर्भ उपनिषद में जो लिखा गया है, जो जो हमारे वेदाज में लिखा गया है, उसका जो वो 9 महीने कैसे एक इंसान का एक लाइफ टाइम डिसाइड करता है, दोज 9 months डिसाइड 90 years ऑफ लाइफ, कैसे वो होता है और कैसे वो 9 महीना गर्भ का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है फॉर नॉट ओनली द सोल दैट इज कमिंग एंड इवन प्री कॉन्सेप्शन, कि माँ बाप क्या कर सकते हैं टू इनवाइट यू नो अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोल, अ प्योर सोल इनटू देयर लाइव्स, उसकी क्या क्या वो हैं, वो सब के ऊपर मैं यू नो पोस्ट बनाती हूँ, सोशल मीडिया में पोस्ट करती हूँ. एंड आई डू क्लासेस ऑल्सो, आई टेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन दोज ऑल्सो. एक जर्नी है. तो एंड देन ये जो आप सोशल मीडिया के थ्रू से इसका अवेयरनेस स्प्रेड करने का बात कर रहे हैं, ये तो ब्लॉग से या आपके जो पॉडकास्ट से, या फिर सोच लीजिए आपका जो भी यू नो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, चाहे थॉट लीडरशिप हो, चाहे आपका यूट्यूब वीडियोस हो, फेसबुक वीडियोस हो, ये जितना हो सके, मतलब डिपेंडिंग ऑन माय बैंडविड्थ, मैं करते रहती हूँ ताकि ये अवेयरनेस बढ़ते रहे. तो या इसी पे काम चल रहा है समीर जी.
0: ओके, ऑलराइट, दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ कोर्स, कि किस तरीके से आपने ये सब चीज़ों को डेवलप किया और किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन आज की जनरेशन के लिए, या आज की जनरेशन छोड़िए आज के वक्त के लिए किया जा रहा है. बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया. तो चलिए, विल जस्ट टेक अ पॉज फॉर अ भजन, निर्गुण भजन, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा सोच सकें, विचार कर सकें जो कुछ भी आपने अभी तक बताया हमें.

0: बहुत बढ़िया, अमेजिंगली ब्यूटिफुल मैम. बस चलते चलते मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज आप न्यूरोसाइंसेज में भी हैं, आज के जमाने में हैं, डीप स्टडी की है, तो आई सिंसियरली अप्रिशिएट दिस फैक्ट दैट यू माइट बी एबल टू एक्सपेक्ट व्हाट इज गोइंग टू कम इन नियर फ्यूचर और मे बी इन फार फ्यूचर. क्या लगता है आपको, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, क्या ये और पावरफुल होगी, लोगों के पास जाएगी या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे एंड मे बी जिंदगी, लोगों की जिंदगी और बहुत खूबसूरत हो जाए. सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कैन यू पॉसिबली सी?
1: मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव फ्यूचर है समीर जी, बहुत ब्राइट है स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है ना, अभी बहुत अवेयरनेस आने लगी है लोगों को. लोग अभी जिंदगी ऐसे नहीं जीते हैं, जैसे मैं आपको बताई ना, अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है. मैं भी कभी बचपन में आई हैव नॉट सीन यू नो लिटिल लिटरल सेंस में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मैंने अपने घर में नहीं देखा. हो सकता है बहुत सारे घर में हो. यस, देयर हैज बीन रिचुअल्स, मंदिर जाना, टेंपल जाना, वो अलग चीज होता है. बट ये जो अपने लिए, बिकॉज एक तरफ देखिए आप, बाहरी दुनिया में ना स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है, दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है एवरी डे. बिकॉज आप देर इज यू नो टेक्नोलॉजी नाउ, AI, देर इज सो मच स्पीड एंड कॉम्पिटिशन, और अनसर्टेनिटी भी बढ़ते जा रही है. इस वजह से जो है ना, ह्यूमन का जो बेसिक नीड है, कोर जो हमारी जो जरूरतें होती हैं, जो कि लाइफ में मीनिंग लाने का, एक ग्राउंडेड रहने का, एक जो इमोशनल सेफ्टी, जो कनेक्शन, जो बॉन्डिंग, जो रिलेशनशिप का जो डेप्थ, अपने अंदर का जो हमारे जो क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने का वो जो चाव है, वो और ज्यादा बढ़ते जा रहा है. पहले शायद थी, बट अभी मुझे लगता है और ज्यादा होते जा रही है, क्योंकि ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज हैपनिंग इन द आउटर वर्ल्ड. तो इस वजह से स्पिरिचुअलिटी पे बहुत लोग लीन करने लगे हैं, बिकॉज वो लोग देख रहे हैं कि इससे उनको बहुत फायदा भी मिल रहा है. तो आउटर इंटेलिजेंस तो बढ़ेगी, लेकिन इनर विजडम के बिना जो है वो लाइफ फ्रेगमेंटेड फील होता है लोगों को, और इस वजह से वो लोग जुड़ने लगे हैं. अभी आप देखिए, बहुत सारे कल्ट या बहुत सारे जो चीजें हैं, लोग मेंटर्स, गुरुज के पास, एंड एवरी एस्पेक्ट. आप देखिए लीडरशिप में भी, हमारी ऑफिस में, कंपनीज में, एट एवरी लेवल, CEO लेवल में भी पीपल आर गोइंग बैक. अभी एक लीडरशिप ट्रेनिंग, अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज CXO का ट्रेनिंग हो रहा है, इट इज नॉट ऑन टेक्नोलॉजी, उसका जो कोचिंग हो रहा है, बिकॉज आई डू कोचिंग ऑल्सो, वो कोचिंग जो है ना, इट हैज टू बी 360 degree, कि कोई इंसान जो है उसका लाइफ इज लाइक अ पाई, यू नो पिज्जा का जो वो होता है ना, एक एक स्लाइस जो है एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डिपिक्ट करता है. उसमें करियर या वर्क या जो भी है वो एक स्लाइस है, उसके साथ उसका रिलेशनशिप, उसका जो फैमिली, उसका जो पैशन एंड उसका अपना जो हॉबीज, फ्रेंड्स, वो सब चीज मिला के उसकी जिंदगी है. तो अगर हम सिर्फ एक ही चीज में फोकस करेंगे तो That will not yield. आप हेल्थ उसमें सफर करेगा, या रिलेशनशिप सफर करेगा, या हो सकता है पैसे बहुत कमा रहे हैं लेकिन आपकी बॉन्डिंग ही नहीं है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो एक कोई फुलफिलमेंट नहीं फील होगा. सो इस फुलफिलमेंट को फील करने के लिए ये जो लाइफ में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और ये हमें देता है स्पिरिचुअलिटी. ये लोग समझने लगे हैं कि हमें सेंटर्ड रहना है, हमें कॉन्शियस रहना है, इमोशनली कैसे हम रेगुलेटेड रह सकते हैं, और पर्पस ड्रिवन लाइफ लीड करना है. हम 80 साल में पहले क्या था कि रिटायरमेंट तक कर लिया, फिर घर बना लिया, बच्चे बड़े हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, वो देख के हम खुश होके हमारी जिंदगी, क्योंकि लाइफ इजी था, लाइफ वॉज सिंपल दैट टाइम, तो उनको दैट वॉज वॉट दे सीक्ड. बट आज की जिंदगी में लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि फाइनली वी हैव टू सोचना पड़ता है कि फुलफिलमेंट कैसे फील होगा. हर हर स्टेप में हमें ये फील होने लगा है. तो मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है अभी हमें और ज्यादा डीपली रूटेड होना पड़ेगा ये ह्यूमन नीड्स के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, एंड जो हो रहा है, एंड इट विल ओनली इंक्रीज.
0: जी बिल्कुल सही बात है. आगे फ्यूचर में यूं तो हम भविष्यवेदा नहीं है, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट थिंग्स टू टर्न अराउंड.

0: ना अच्छी तरीके से हमारी जिंदगी को इन्फ्लुएंशियली अच्छा बनाने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत बढ़िया। तो महुआ मैम, बस चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपके थॉट्स जो हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, उनको क्या कहना चाहोगे आप? गिव अ मैसेज टू देम सो दैट दे कैन टेक इट होम, थिंक ओवर इट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग।
1: देखिए, सिंपल सा मैसेज यही है कि लाइफ को सिंपली लीड करिए। कोई जरूरत नहीं है कॉम्प्लिकेशंस का, डजंट मैटर एक्सटर्नल वैलिडेशन का। वो थोड़ा सा पॉज करिए। मुझे पता है आंख जैसे ही बंद करते लगता है सारा दुनिया छूट जा रहा है हमसे, हम पीछे रह गए हैं। ये सबसे बड़ा डर होता है हमारा लाइफ का। बट हर मूवमेंट प्रोग्रेस नहीं होता है। आप मूवमेंट तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, बट प्रोग्रेस नहीं है वो। प्रोग्रेस तो है जो आप अपना गोल की तरफ कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है पॉज करना जरूरी है। थोड़ा सा रुक रुक के, एक एक फेज में, साल में एक बार, 5-6 दिन का, 4 दिन का, आप रुक के ना थोड़ा सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन करिए अपना लाइफ का, कि मैं सही भी जा रहा हूँ कि मुझे रास्ता थोड़ा कोर्स करेक्शन करना है। बस ऐसे आप करते रहोगे ना, तो जिंदगी एकदम, आप कहीं गलती का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गलती करेंगे भी तो यू हैव टाइम, यू हैव देन पॉज टू रियलाइज इट एंड मेक करेक्शंस। सिंपल सा है।
0: राइट, अमेजिंग। सो दोस्तों, टेक होम मैसेज जो एटलीस्ट पूरे बातचीत में महुआ मैडम से मुझे मिला है, वो इमीडिएटली तो यही है, जस्ट गो स्लो। द म्यूजिक वोंट लास्ट बट योर लाइफ शुड बी, सो टेक इट ईजी। इतनी तेज तेज भागने की जरूरत नहीं है। टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक, थिंक, अपने आप के साथ वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए। महुआ मैम ने कहा ना, सुबह सुबह एक थोड़ा सा मेडिटेशन, जर्नलिंग, ये सब क्या है? ये वक्त अपने साथ गुजारने की बात है। बहुत खूब महुआ मैम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर अ वेरी वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस वी हैड टुडे। बहुत सारी बातें अभी सोचने की हैं। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक, आई डू मेडिटेशन, बट आज की रात में मेडिटेशन का यही टॉपिक होने वाला है मेरे लिए। लेट मी जस्ट थिंक आपने जो कुछ भी कहा है। तो थैंक यू सो मच महुआ मैम, आपका बहुत बहुत आभार है। I would like to sincerely convey my regards to you and thanks to you. Thank you, ma'am.
1: Thank you so much, Sameer ji. It was so nice. बहुत interesting बातें की आपने आज, और privilege है। मैं भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका और आपके चैनल का, और आशा करती हूँ कि जो भी हमारे ऑडियंस हमें सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ भी थोड़ा वैल्यू एड हो पाएगा। With that, thank you so much.
0: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो, बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील पे आपका अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, और मैं हूं आपके तरानों की हम सफर, आपकी RJ तनुषा। आज की बात थोड़ी अलग है, थोड़ी फिलोसफी है, थोड़ी साइकोलॉजी का तड़का है, और एक सवाल है, ऑफ कोर्स एक सवाल है, जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। भगवान अगर हर जगह है तो हमें दिखते क्यों नहीं, और जरा सवाल को और शरारती बनाते हैं, क्या भगवान हमसे छुप रहे हैं या हम उन्हें देख ही नहीं रहे? सोचिए सोचिए सोचिए, थोड़ा ज्यादा सोचिए। आपके सामने एक पूरी दुनिया है, आवाजें हैं, लोग हैं, रंग हैं, खुशबू है, हवा है, लेकिन हम सब कुछ नोटिस नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। और यहीं से शुरू होती है आज की एक इंटरेस्टिंग कहानी, दिमाग का वॉचमैन। हमारे दिमाग में एक फैसिनेटिंग फिल्टरिंग सिस्टम होता है, जिसे न्यूरोसाइंस में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS कहा जाता है। आप इसे दिमाग का वॉचमैन समझ लीजिए। बिल्कुल जैसे वॉचमैन काम करता है, वैसे ही हमारे सेंसेस हर पल बहुत सारी जानकारी लेकर आ रहे होते हैं। इतनी सारी कि अगर हर एक चीज पर पूरा ध्यान देने लगे ना, तो दिमाग बोलेगा, भाई मैं रिजाइन कर रहा हूं, प्लीज हायर somebody else। इसीलिए दिमाग डिसाइड करता है किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज को बैकग्राउंड में भेज देना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फोन में नोटिफिकेशन फिल्टर करते हैं, कौन सा कब देखना है, कौन सा लेट देखना है, जल्दी देखना है, अभी देखना है, करते हैं कि नहीं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक काम करिए, आज जब आप रेडियो सुन रहे हैं, आसपास देखिए, क्या आपको पंखे की आवाज सुनाई दे रही है, AC की, बाहर के ट्रैफिक की, किसी के बात करने की? शायद पहले नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने आपका ध्यान उधर दिलाया, अब सुनाई देने लग गई। आवाज पहले भी थी, बहुत पहले से थी, बस आपका ध्यान वहां नहीं था। और इसी तरह कभी कभी जिंदगी में भी होता है, चीज सामने होती है लेकिन हम उसे देख ही नहीं पाते। साइकोलॉजी में इस तरह के फिनोमिनन को अनइंटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। जो सामने है वो भी नजर से छूट सकता है, अगर ध्यान कहीं और लगा हो। तो क्या भगवान भी ऐसा ही है? यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं। हो सकता है सवाल ये हो ही नहीं कि भगवान कहाँ है, सवाल शायद ये हो कि हम भगवान को किस रूप में ढूंढ रहे हैं। कभी हमने भगवान की एक इमेज बना ली, एक रूप, एक जगह, एक ही तरीका, और फिर हम उसी इमेज में भगवान को ढूंढते रह गए। लेकिन अगर डिविनिटी को हम सिर्फ एक ही रूप में देखना चाहें, तो हो सकता है कि बाकी सब कुछ हमसे छूट जा रहा है। अब यहां
एक और इंटरेस्टिंग सवाल, अगर भगवान किसी एक मूर्ति तक सीमित नहीं है तो मूर्ति की जरूरत क्यों है?

हमारी परंपराओं में डिविनिटी को सिर्फ एक जगह नहीं रखा गया, सूर्य में, चंद्र में, नदियों में, पहाड़ों में, पेड़ों में, पशु पक्षियों में, प्रकृति में। यानी आइडिया सिर्फ ये नहीं है कि भगवान वहां है, बल्कि भगवान को हर जगह देखने की नजर पैदा करो। और ये बात मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि अगर हम सच में देखना सीख जाएं, तो शायद आम चीजों में भी कुछ खास नजर आने लगे, और शायद हम आम चीजों, आम लोगों, आम एक्सपीरियंसेस को थोड़ी ज्यादा वक्त दें। और फिलॉसफी यहां एक और इंटरेस्टिंग बात करती है। भक्ति या आध्यात्म का सफर सिर्फ बाहरी रूप तक नहीं है, पहले हम रूप को देखते हैं, फिर नाम और मंत्र के माध्यम से ध्यान को एक जगह लाते हैं, फिर धीरे धीरे ध्यान अंदर की तरफ जाता है, और फिर एक स्टेज आती है जहां सवाल ही बदल जाता है। पहले सवाल था भगवान कहां है, फिर सवाल होता है मैं उन्हें कैसे महसूस करूं, और शायद आखिर में मैं और वो कितने अलग हैं। यही सोच सोहम के भाव तक पहुंचाती है, सो हम यानी वो मैं हूं। जी हां, वो मैं हूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम खुद को भगवान डिक्लेयर कर दें, वरना कल से हर कोई बोलेगा मैं ही भगवान हूं, पहले चाय लाओ। बात असल में अहंकार बढ़ाने की नहीं, अहंकार को धीरे धीरे छोड़ने की है। तो दोस्तों, आज की बातें इधर की उधर की का सवाल आपके लिए सिर्फ इतना है, आप भगवान को कहां ढूंढते हैं? मंदिर में, प्रार्थना में, प्रकृति में, किसी इंसान की दया में, या कभी एकदम चुप होकर अपने ही अंदर? सो हम। और एक सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज आपके बिल्कुल सामने थी लेकिन आपने उसे देखा ही नहीं? फिर किसी ने ध्यान दिलाया और आपने कहा, अरे हां, ये तो यही था। शायद जिंदगी के भी बहुत से जवाब कुछ ऐसे ही होते हैं, वो हमसे दूर नहीं होते, हमारा ध्यान ही कहीं और होता है। तो अगली बार जब आप पूछें भगवान कहां है, एक पल रुक कर शायद ये भी पूछना, मेरी नजर कहां है? क्योंकि कभी कभी चीज बदलनी नहीं होती, सिर्फ देखने का तरीका बदलना होता है। मैं हूं आपकी तरानों की हमसफर, आपकी आरजे तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पर। मिलते हैं फिर एक और सवाल के साथ, एक और सोच के साथ। तब तक देखिए जरूर, शायद जो आप ढूंढ रहे हैं वो पहले से ही आपके आसपास हो। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: तो क्या हुआ भैया कि एक बार पत्नी ने पति से कहा, जी चाय बनाओ। पति ने कहा हाँ बना लो। पत्नी ने कहा अदरक वाली। पति ने कहा ओके। तो पत्नी ने कहा तुलसी भी वैसे काफी फायदेमंद रहती है। पति ने कहा हाँ चलो थोड़ी सी डाल दो। फिर पत्नी ने कहा अच्छा थोड़ा पुदीना डालू। पति ने कहा एक काम करो, राई और जीरा डाल के ना तड़का भी लगा दो।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पर बातें इधर की उधर की, और मैं हूं आपके तरानों की हमसफर RJ तनुषा। आज सुबह जरा अपने फोन की तरफ देखिए, टाइम क्या हो रहा है? 7:57, 8:03, 8:15, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोन बता देगा। अलार्म है, स्मार्ट वॉच है, घर में घड़ी भी है, और अगर ये सब फेल हो जाए तो पड़ोसी के घर से मिक्सर ग्राइंडर की आवाज आ ही जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, आज से करीब 70 साल पहले जब घर घर में घड़ी भी नहीं होती थी, तब लोगों को कैसे पता चलता था कि स्कूल या ऑफिस जाने का वक्त हो गया है? और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान करेगा। लोग घड़ी नहीं देखते थे, लोग रेडियो सुनते थे, और एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ गाना नहीं गाती थी, वक्त भी बताती थी। 1950s का भारत याद कीजिए। आज की तरह हर जेब में मोबाइल नहीं होता था, हर दीवार पर घड़ी नहीं होती थी, हर हाथ में वॉच नहीं होती थी। टाइम जानने के लिए लोगों के पास अपने अपने तरीके थे, और उनमें से एक था रेडियो। जी हाँ, आपका अपना रेडियो। उस दौर में रेडियो घर का सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, रेडियो घर का मेहमान भी था, और कभी कभी तो घर का टाइम कीपर भी था। अब सवाल है कैसे? इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी आवाज की जिसे सुनते ही पुरानी यादें जाग जाती हैं। कुंदन लाल सैगल साहब 1952 में ऑल इंडिया रेडियो पर हिंदी फिल्म म्यूजिक को लेकर सरकारी नीति काफी सख्त हो गई थी। फिल्म सॉन्ग्स के प्रसारण पर रोक टोक बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, गाने को रोकना आसान है, गाने की चाहत को नहीं। जनता को फिल्म म्यूजिक सुनना था, तो लोगों ने रेडियो का रुख बदल दिया, और बहुत से लोग सुनने लगे रेडियो सिलोन। कोलंबो से चलने वाला ये रेडियो सिलोन उस दौर में पूरे उपमहाद्वीप में बहुत मशहूर हो गया, और उसके प्रोग्राम्स ने रेडियो सुनने की आदत ही बदल दी। बिना का गीत माला तो अपने आप में एक अलग ही कहानी है, लेकिन सुबह का एक प्रोग्राम ऐसा था जो जिंदगी का हिस्सा बन गया। जी हाँ, पुराने फिल्मों के गीत, और इसी प्रोग्राम में था एक कमाल का वक्त, 7:57। जी हाँ, 7:57 का जादू। अब यहां कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आता है। उस जमाने में गाने 78 RPM रिकॉर्ड्स पर बजते थे, उस पर लगभग 3:20 का ही रिकॉर्डिंग समय होता था। अब जरा हिसाब लगाइए, अगर सुबह 7:57 पर एक करीब 3 मिनट का KL सैगल साहब का गाना बजा, तो गाना 8 बजे खत्म, और बस 8 बज गए। आज हमें ये बात छोटी और बहुत बेमतलबी लग सकती है, लेकिन उस वक्त ये एक पूरा रिचुअल था। सोचिए, एक आम घर और उस घर का सुबह का मंजर। माँ रसोई में नाश्ता बना रही है, बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है, पापा चाय पी रहे हैं, रेडियो पर सैगल साहब की आवाज आ गई, और माँ ने तुरंत घड़ी देखे बिना कह दिया, बस अब स्कूल के लिए निकलो। बच्चा बोलेगा, मम्मी अभी तो गाना चल रहा है, और माँ बोलेगी, हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ, गाना खत्म होने वाला है। और पापा के लिए भी ये सिग्नल एकदम क्लियर था, गाना खत्म और अब ऑफिस का वक्त शुरू, यानी एक गाना पूरे घर की सुबह चला रहा था। आपके घर में भी कोई ऐसी चीज होगी जो घड़ी के बिना वक्त बता देती होगी।
किसी के घर में सुबह अजान की आवाज, किसी के घर में मंदिर की घंटी, किसी के घर में दूध वाले भैया, किसी के घर में मम्मी की आवाज, उठ जाओ। और आज के जमाने में अलार्म बजता है, हम स्नूज कर देते हैं। अलार्म फिर बजता है, हम फिर स्नूज करते हैं। तीसरी बार अलार्म और फोन को देखकर लगता है, भाई तू भी थक गया होगा, बस यही है जो नहीं जग रहा। पहले एक गाना लोगों को जगाता था, आज पांच पांच अलार्म्स भी कभी कभी हार जाते हैं, थक जाते हैं और वो भी शायद सो जाते हैं। लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक वक्त की बात नहीं है, सोचिए एक ही आवाज अलग अलग शहरों में, अलग अलग घरों में, अलग अलग लोगों के बीच एक ही समय पर सुनाई दे रही है। कहीं कोई चाय बना रहा है, कहीं कोई स्कूल यूनिफॉर्म पहन रहा है, कहीं कोई फैक्ट्री की तैयारी हो रही है, कहीं ऑफिस जाने वाले आदमी जूते पहन रहे हैं, और सबके बीच सैगल साहब की एक आवाज। रेडियो ने लोगों को सिर्फ गाने नहीं दिए दोस्तों, एक सांझा समय दिया, एक ऐसी चीज जो सबके घर में अलग थी लेकिन उस वक्त सुबह एक जैसी लगती थी। और फिर दुनिया बदल गई, घर में घड़ियां आ गईं, वॉचेस आ गईं, डिजिटल क्लॉक्स आ गईं, मोबाइल आ गया और अब हमें सेकंड तक पता है कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड हुए हैं। लेकिन एक अजीब बात है, पहले लोगों के पास टाइम जानने के लिए कम साधन थे लेकिन शायद टाइम महसूस करने के लिए बहुत मौके थे। आज हम टाइम बहुत देखते हैं, बहुत टाइम देखने की मशीन्स हैं, लेकिन क्या हम वक्त को सुनते हैं? क्या हम सुबह को महसूस करते हैं? क्या हम एक गाना पूरा सुनते हैं या आधे गाने के बाद अगला गाना लगा देते हैं? पहले रेडियो के एक गाने का खत्म होना सिर्फ एक गाने का खत्म होना नहीं था, वो एक छोटा सा सिग्नल था। चलिए अब दिन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आज आपको अपनी सुबह की घड़ी किसी एक गाने पर सेट करनी हो तो वो कौन सा गाना होगा? जरा सोच के देखिए, ऐसा गाना जो बजते ही आपको पता चल जाए बस अब उठना है, या फिर अब चाय का वक्त है, या फिर अब काम पे जाना है। मुझे लगता है हर जनरेशन के पास अपना एक ऐसा गाना होना चाहिए, एक ऐसी आवाज होनी चाहिए, एक ऐसे सैगल साहब, ऐसे किशोर कुमार, ऐसी लता जी होनी चाहिए। और आज की जनरेशन के लिए शायद वो है फोन का अलार्म। जी हाँ, वो आवाज है फोन का अलार्म जो पांच बार स्नूज होने की आदत रखता है। खैर दोस्तों, आज हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है, डिजिटल टाइम है, स्मार्ट टाइम है, लेकिन रेडियो के उस दौर में हमें एक और चीज दी थी, वक्त को साथ बांटने का एहसास। एक आवाज, एक गाना और हजारों घरों की एक सुबह, एक ही सुबह। क्या खूबसूरत बात है ना, एहसास करके देखिए। घड़ियां वक्त बताती हैं लेकिन कुछ आवाजें वक्त को याद बना देती हैं, और शायद इसीलिए कुछ पुराने गाने कभी पुराने नहीं होते, वो सिर्फ गाने होते हैं। वो किसी के बचपन की सुबह होते हैं, किसी माँ की आवाज होते हैं, किसी पापा के ऑफिस जाने का वक्त होते हैं, और किसी पुराने जमाने की धड़कन होते हैं, धक धक धक धक धक धक। मैं हूं आपके तरानों की हमसफर, आपकी आरजे तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। आज मोबाइल की घड़ी जरूर देखिए, लेकिन कभी मौका मिले ना तो एक पुराना गाना लगाइए और देखिए, शायद वक्त नहीं कोई पुरानी याद बजने लगे। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला, बताओ कहाँ दर्द है? तब वो व्यक्ति बोला, अरे डॉक्टर तुम हो कि मैं? तुम बताओगे कि मैं बताऊंगा? डॉक्टर ने कहा, लेकिन दर्द कहाँ है ये तो तुम ही बताओगे ना? व्यक्ति ने बोला, अगर फीस कम करते हो तो बताता हूँ, नहीं तो खुद ही ढूंढ लो।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एसएन रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 एफएम और मैं हूं आपकी आरजे दोस्त, आपके तरानों की हमसफर आरजे तनुषा। आज तो बातें थोड़ी धीमी करेंगे हम, आज ना कोई भागदौड़ की बातें ना कोई जल्दी, बस एक कहानी। और कहानी भी एक ऐसी चीज की जो हम सबके पास है, वक्त। जी हाँ, वक्त। लेकिन आज की कहानी वक्त को देखने की नहीं है, वक्त को समझने की है। पुराने शहर की एक तंग सी गली में एक बहुत ही छोटी सी दुकान थी, नाम था टाइम कीपर्स। दुकान इतनी छोटी थी कि एक वक्त में मुश्किल से दो ग्राहक खड़े हो पाते थे। पुराना सा लकड़ी का बोर्ड जिस पर सालों से रंग भी नहीं हुआ था, लेकिन लोग दूर दूर से वहां आते थे। और क्यों? क्योंकि वहां घड़ियां ठीक करते थे 70 साल के माधव राव जी। दुनिया के लिए माधव एक घड़ी साज थे, लेकिन माधव के लिए हर घड़ी एक कहानी थी। उनके पिता ने उन्हें एक बात सिखाई थी, सिर्फ मशीन मत ठीक करना, उससे जुड़ी यादों को भी संभालना बच्चे। क्या बात है ना? सोचिए आपके घर की कोई पुरानी घड़ी है जो शायद अब चलती भी नहीं, लेकिन आप उसे फेंक नहीं सकते। और क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ घड़ी नहीं होती, उसमें किसी की यादें चल रही होती हैं। टिक टिक टिक टिक। लेकिन वक्त तो वक्त है ना, वो किसी के लिए रुकता नहीं। डिजिटल घड़ियां आ गईं, मोबाइल फोन्स आ गए, ऑनलाइन दुकानों पर नई घड़ियां सस्ती मिलने लगी और माधव जी की दुकान पर ग्राहक कम होते गए। बेटा विक्रम कहता, पापा बस अब बस कीजिए, दुकान बेच दीजिए, आराम कीजिए। बात गलत भी नहीं थी। अगर बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखो तो हर बच्चा शायद यही चाहता है कि एक उम्र के बाद उनका पेरेंट रिटायर करे, घर पे आराम करे, फालतू के झंझट में ना पड़े। एक दिन, दो दिन, तीन दिन बारिशें होती रहीं, दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया। माधव ने पहली बार सोचा, क्या वक्त मेरे बिना ही आगे निकल गया? उसकी 12 साल की पोती नैना ने दादा को उदास देखा। उसने अपने कमरे से एक पुरानी सी अलार्म क्लॉक निकाली, घड़ी बंद थी और नैना दादाजी के पास आके बोली, दादाजी इसे ठीक करोगे? माधव मुस्कुराए, ये तो घर की ही घड़ी है बच्चा। नैना बोली, पता है, लेकिन जब आप इसे ठीक करो तो मुझे भी सिखाना। बस एक छोटी सी बात कहानी बदल देती है। अगले दिन नैना दादाजी के पास बैठ गई नोटबुक लेकर। माधव जी ने घड़ी खोली, छोटे छोटे पुर्जे, छोटे गियर, पतली सी स्प्रिंग, और साथ साथ नैना को सिर्फ घड़ी नहीं, सब्र सिखाया, ध्यान से देखना सिखाया, हाथ का प्रिसिशन और हुनर सिखाया, और सबसे बढ़कर काम की इज्जत करना सिखाया। कुछ ही हफ्तों में आसपास के और भी बच्चे आने लगे, फिर एक, फिर दो, फिर पूरा छोटा सा एक झुंड। हर सैटरडे को माधव उन्हें कुछ नया सिखाया करते थे। कोई फीस नहीं, कोई बड़ी क्लासरूम नहीं, बस एक बुजुर्ग आदमी और उनका हुनर। बच्चों के पेरेंट्स भी खुश, कम से कम कुछ घंटे तो बच्चे मोबाइल से दूर थे। धीरे धीरे बातें फैली। एक पत्रकार दुकान पर आया, उन्होंने स्टोरी लिखी, द मैन हु इज रिपेयरिंग मोर देन क्लॉक्स, यानी
वो आदमी जो सिर्फ घड़ियां नहीं कुछ और भी ठीक कर रहा है। और फिर माधव की जिंदगी बदल गई। कलेक्टर्स पुरानी घड़ियां भेजने लगे, म्यूजियम्स ने बुलाया, स्कूल्स ने वर्कशॉप्स के लिए बुलाया, यूनिवर्सिटी ने पुराने घड़ी साज के हुनर को संभालने के लिए उनकी मदद मांगी। एक दिन बड़े निवेशक आए, बोले आपकी दुकान को बड़ा करते हैं, एक ब्रांड क्रिएट करते हैं, बड़े शोरूम्स खोलते हैं, बहुत पैसा आएगा इसमें। ऑफर बहुत बड़ा था। बेटा भी बोल उठा, पापा ये जिंदगी बदलने का मौका है। माधव ने कई रात सोच कर गुजारी। फिर नैना ने एक सवाल पूछा, दादा आपके जीवन के बाद लोग आपको किस बात के लिए याद रखेंगे? आप बताओ आप क्या चाहते हो? बस सवाल बहुत छोटा था, बहुत मासूम था, लेकिन जवाब बहुत बड़ा। माधव ने वो ऑफर ठुकरा दिया और उसने बनाई स्कूल ऑफ टाइम, जहां गरीब परिवारों के बच्चे मुफ्त में घड़ी रिपेयर और रेस्टोरेशन का हुनर सीख सकें। सर्टिफिकेट नहीं था, उन्हें टूल्स दिए जाते थे, यानी लो अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। कुछ साल बीत गए, माधव की आंखें कमजोर होने लगी, हाथ भी पहले जैसे तेज नहीं रहे। आखिर एक दिन रिटायरमेंट का वक्त आ गया और उस दिन, उस आखिरी दिन, उसके पुराने स्टूडेंट्स अचानक दुकान में आ गए। किसी के हाथ में घड़ी, किसी के हाथ में पुराना कोई टाइम पीस। सब ने अपनी घड़ियां सामने रखी और ठीक शाम 6 बजे सबने एक साथ घड़ियां चला दी। पूरे कमरे में सिर्फ आवाजें थी, टिक टिक टिक टिक। माधव की आंखों में आंसू आ गए, उनके हाथ धीमे पड़ गए, लेकिन उनका हुनर अब हजारों हाथों में चल रहा था। रात को घर में नैना ने वही पुरानी अलार्म क्लॉक टेबल पर रखी। घड़ी चल रही थी। नैना ने पूछा, दादा ये कहानी कभी घड़ियां ठीक करने की थी ही नहीं, है ना? माधव मुस्कुराए, नहीं। तो किसकी थी? माधव बोले, जो जरूरी है उसे कभी रुकने ना देने की। दोस्तों क्या खूबसूरत बात है ना। हम अक्सर सोचते हैं मैंने जिंदगी में क्या बनाया, कितना पैसा कमाया, कौन सी ब्रांड बनाई, कितना बड़ा घर बनाया, कितनी पहचान बनाई। लेकिन शायद एक और सवाल पूछना चाहिए, मेरे बाद मेरे हाथों से सीखा हुआ क्या चलता रहेगा? आपका हुनर, आपकी समझ, आपका अनुभव, आपकी अच्छी आदतें, अगर आपने किसी एक इंसान को भी दे दी तो वो आगे किसी और को भी उन्हें दे सकेगा। और यही तो असली विरासत है। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए, खुद से पूछिए, मुझे क्या आता है जो मैं किसी और को सिखा सकता हूं? खाने की कोई रेसिपी, कोई हाथ की कला, कोई काम का हुनर, कोई जिंदगी का सबक, या बस लोगों को मुश्किल वक्त में संभालने का तरीका। जो भी है उसे अपने तक मत रखिए, उसे बांटिए, क्योंकि पैसा बांटने से कम हो सकता है, लेकिन ज्ञान और हुनर बांटने से बढ़ता ही है। दोस्तों माधव ने घड़ियां रिपेयर की, लेकिन असली में उन्होंने लोगों का वक्त आगे बढ़ाया। और शायद सफलता का सबसे खूबसूरत मतलब यही है, आपकी जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन आपकी सीख किसी और की जिंदगी में चलती रहे। टिक टिक टिक।
वक्त चलता रहेगा। सवाल बस इतना सा है, आपके जाने के बाद आपके अंदर का क्या चलता रहेगा? पूछेगा जरूर। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM। अगली बार मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और सवाल के साथ और कुछ नई बातों के साथ। तब तक वक्त की कदर कीजिए, अपने हुनर की कदर कीजिए, और जो अच्छा आता है ना उसे किसी और तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: चिंटू जो है पैराशूट बेच रहा था बाजार में, चिल्ला चिल्ला के बोले, हवाई जहाज से कूदो, बटन दबाओ और जमीन पर सुरक्षित पहुंच जाओ। तो एक ने पूछा कि भैया अगर पैराशूट ना खुला बटन दबाने के बाद? तो चिंटू बोला, पूरे पैसे वापस।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata. Ain't no passing craze.
2: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेरणा मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ और करते हैं प्रेरणादायक बातें।
3: What a wonderful phrase.
2: दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां सुनाएं।

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिबक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं। पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन है। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें, बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बालाश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं,
बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा। अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे, हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूँ। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ तो अच्छा।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। देखिए कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी उसकी बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला।

0: कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।
1: दोस्तों मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

0: Potter. What a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
2: दोस्तों, आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, कल फिर मिलता हूँ।
3: Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata.
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
5: लुई पास्चर।
6: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पास्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
7: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पास्चर आई वुड बी नथिंग।
6: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
8: De Marseille, dans le sud de la France.
9: Ladies and gentlemen, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मोनसिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
4: चलो,
6: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
6: चलो चलो चलो चलो,
7: अरे,
6: चलो,

0: में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
1: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
1: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
2: लुई पाश्चर
3: सर,
2: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
3: कहिए सर।
2: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
3: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
2: ठीक है।
1: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
1: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
1: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।

0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा आज, ए, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ।
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
5: अच्छा लाओ दिखाओ।
6: अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
6: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
6: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं।
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
6: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
7: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
6: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
7: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
6: आप
7: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
6: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
7: मेरा
6: अच्छा,
7: बेटा।
6: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था। और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
3: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वाज अ ह्यूमनिस्ट always working towards the improvement of the human condition.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: विज्ञान गीत

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज़।

एक कहावत है, अंधेरे की शिकायत करते रहने की अपेक्षा एक दिया जलाना ज्यादा अच्छा है। हमारे समाज में बहुत से लोग असहाय हैं और उनमें से अनेक भिखारी का जीवन बिता रहे हैं। इन दुखी लोगों के बारे में सोचते तो सब हैं, पर कुछ लोग संकल्प कर लेते हैं कि उन्हें ऐसा काम करना है जिससे दूसरों का दुख कम हो। ऐसे ही एक कर्मवीर हैं बाबा आमटे, जिनकी करुणा का साकार रूप है आनंदवन। आनंदवन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक बस्ती है। यहां कुष्ठ रोग से पीड़ित हजारों असहाय स्त्री पुरुष बाबा आमटे की सहायता से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और सम्मान के साथ जीवन बिता रहे हैं। बाबा का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है। पर इनकी मां इन्हें बाबा कहकर पुकारती थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में 26 दिसंबर 1914 को हुआ। इनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे एक बड़े जमींदार होने के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी थे। मुरलीधर की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, पर थी बहुत बुद्धिमान। मां ने इन्हें चित्रकला सिखाई, प्रकृति और प्राणी जगत से इनका परिचय कराया। मां सिखाती, जो सुख लेने में है उससे ज्यादा सुख देने में है। बार बार की कोशिश से आदमी सफल होता है। हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। मां के द्वारा दी गई सीख ही बाबा के जीवन में पग पग पर काम आई।

बालक मुरलीधर का ध्यान बचपन से ही निर्धन और असहाय लोगों के कष्टों की ओर जाता। जब कभी वो अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठ अपनी जमीन जायदाद को देखने निकलता, उसका ध्यान निर्धन मजदूरों और कामगारों की ओर खींचता। उनकी आर्थिक कठिनाइयों तथा शारीरिक बीमारियों के बारे में सुनकर उसका दिल भर आता। छुआछूत के प्रति उसके मन में बहुत घृणा थी। किसी तरह भी उसका बाल हृदय ये मानने को तैयार नहीं था कि जन्म के कारण ही समाज में कुछ लोग छोटे और कुछ बड़े हो सकते हैं।

उसके स्वभाव की दूसरी विशेषता थी प्रकृति से प्यार। पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों तथा पशु पक्षियों के प्रति उसके हृदय में अगाध प्यार था। वो दिन भर जंगलों में भील गोंडों से परिचय करता और उनसे बातचीत कर प्रसन्न होता। उनका सरल स्वभाव, सच्चाई, निशानेबाजी तथा स्वतंत्र जीवन मुरलीधर को विशेष रूप से आकृष्ट करता। युवावस्था में मुरलीधर पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। मुरलीधर हर समय सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते। स्वतंत्रता संग्राम में वे दो बार जेल भी गए। वे सच्चे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी बन गए। बापू ने उन्हें अभय साधक कहकर पुकारा था। उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय वकालत भी की, परंतु उनका मन केवल आजीविका कमाने में नहीं लगा। उन्होंने सोच लिया कि उनका जीवन किसी बड़े कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। ये कार्य था गरीब दुखियों की सेवा। उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और सेवा भाव से मुरलीधर के स्वप्नों को साकार करने में बहुत सहायता दी। सन 1948 में मुरलीधर वरोंस्की नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुने गए। वे सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी थे। इसी पद पर रहकर उन्हें इन लोगों की वास्तविक दशा का पता चला। उन्होंने सोचा, जब तक मैं स्वयं इन लोगों का कार्य नहीं करता, मुझे इनकी कठिनाइयों का ज्ञान नहीं हो सकता। उन्होंने भी सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक बार की बात है, रात्रि का समय था, घनघोर वर्षा हो रही थी। सिर पर मैले की टोकरी रखे जैसे ही मुरलीधर ने पांव उठाया कि उनकी नजर एक कुष्ठ रोगी पर पड़ी। जहां मन भयभीत रहे वहां प्यार कैसा, और जहां प्यार नहीं वहां ईश्वर नहीं। मुझे अपने मन से भय को भगाना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगी की सेवा की, फिर मैं अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटूं? बस इसी संकल्प के साथ वे अपने कार्य में लग गए। उन्होंने कोलकाता जाकर कुष्ठ रोग की चिकित्सा में विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सैकड़ों कुष्ठ रोगी प्रतिदिन उनके पास आने लगे और अपना इलाज कराने लगे। पहले मां उन्हें बाबा कहती थी, अब सभी उन्हें बाबा पुकारने लगे। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करते हुए बाबा ने देखा कि उनकी समस्या केवल उस भयंकर रोग से छुटकारा पाने की ही नहीं, अपितु मानसिक भी है। इस रोग को इतना घृणित समझा जाता है कि परिवार वाले भी रोगी के पास नहीं फटकते। रोग से छुटकारा पा लेने पर भी समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करते और उसे अपना जीवन भिखारी के रूप में ही बिताना पड़ता है। लोगों को ये भ्रम है कि इस रोग का इलाज नहीं हो सकता और ये छूत का रोग है, किंतु ऐसा नहीं है। अब इसका इलाज भी संभव है। बाबा अधीर थे कि कैसे
इन पुनः स्वस्थ हुए लोगों को बसाया जाए। उन्होंने अपने प्रयत्न से 250 एकड़ जमीन इस कार्य के लिए जुटाई और स्वस्थ हुए व्यक्तियों को उस पर खेतीबाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे पहले बनी बाबा आमटे और साधना ताई के लिए बांस की एक झोपड़ी और फिर बनने लगे उसके आसपास इन रोगियों के लिए आवास, अस्पताल और विद्यालय। बाबा की झोपड़ी तो कई वर्षों बाद अब भी कुछ कुछ वैसी ही है, परंतु आसपास के भवनों को देखकर चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। ये सब हैं बाबा की लगन और परिश्रम के साकार रूप। कुष्ठ रोगियों में किसी के हाथ नहीं, किसी के पांव की उंगलियां नहीं और कोई देख नहीं सकता, पर सभी लगे हैं अपना भविष्य बनाने में। कोई केवल पैरों से मशीन चलाता है तो कोई अंधा होते हुए भी फुर्ती से कुर्सी बुनता है। जो व्यक्ति जिस काम के उपयुक्त है वो उसी में लगा है। बाबा आमटे नहीं चाहते कि इन लोगों की सहायता दान से की जाए। बाबा का विश्वास है काम से आदमी का निर्माण होता है। वे प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर सिखाकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं।

बाबा आमटे के दो पुत्र हैं, विकास और प्रकाश। दोनों डॉक्टर हैं। विकास आनंदवन के स्वास्थ्य केंद्र का अध्यक्ष है। यहां रोगियों की चिकित्सा तो की ही जाती है, उन्हें स्नेह और सहानुभूति भी मिलती है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें फिर से स्वावलंबी बनाया जाता है।

आज आनंदवन के आसपास लहलहाते खेत हैं, फलों के बगीचे हैं, मुर्गी घर और पशु घर हैं। आसपास की चप्पा चप्पा भूमि इन लोगों के पसीने से सींचकर सोना उगल रही है। आस पड़ोस की मंडियों में यहाँ की उगाई साग सब्जी बिकने जाती है। दूध, घी और मक्खन का व्यापार होता है। यहाँ के खेतों में उत्पन्न बीजों की नई किस्में भारत के कोने कोने में पहुंचाई जाती हैं। आनंद वन में कहीं बच्चों के लिए विद्यालय हैं, कहीं खेल के मैदान। छोटे छोटे कारखाने हैं, कहीं मनोरंजन के कार्यक्रमों के लिए सभागृह। यहां रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। आनंदवन सचमुच

बाबा आमटे बच्चों से अगाध स्नेह करते हैं। एक बार एक दृष्टिहीन बालक ने गुलाब का फूल छूकर देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा उसे फूलों के बगीचे में ले गए। बालक ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसकी उंगली में कांटा चुभा। उसने हाथ पीछे खींच लिया। बाबा आमटे उसी दिन से कांटों रहित गुलाब के पौधों की खोज में लग गए और अंत में आनंद वन में वो पौधा लग गया जिस पर गुलाब तो है पर कांटे नहीं। वास्तव में बाबा का संपूर्ण जीवन ही दूसरों के मार्ग से कांटों को हटाने में और फूल खिलाने में लगा है।

बाबा के कार्यों की सफलता से प्रेरणा पाकर अनेक स्थानों पर ऐसे आश्रमों की स्थापना हुई जिनसे असहाय व्यक्तियों को सहायता मिली। अब बाबा की कीर्ति फैलने लगी। उन्हें जगह जगह से सम्मान पत्र भेंट किए जाने लगे। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। '78 का जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1985 का मैक्सेसे पुरस्कार भी बाबा आमटे को प्रदान किए गए। ऐसे अनेक अन्य पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए। बाबा इन पुरस्कारों से प्राप्त समस्त धनराशि आश्रमों में लगा देते हैं। अपने देश में शांति तथा राष्ट्रीय एकता का वातावरण बनाए रखने के लिए बाबा हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। भारत जोड़ो अभियान भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाया गया है। बाबा आमटे उन व्यक्तियों में से हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: रेलगाड़ी
2: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे। तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
3: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
4: अरे संजू, वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
5: अरे हाँ, गाड़ी रुको गाड़ी रुको।
4: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
5: हाँ, अब बन गई रेल।
3: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
4: अरे अरे, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
5: दादाजी, आप भी हमारे संग खेलिए ना।
6: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं, तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
4: हाँ दादाजी, ये ठीक रहेगा।
6: चलो रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई, मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
4: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
6: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
4: अच्छा
6: अच्छा, अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
5: दादाजी, मैंने देखी है।
6: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
5: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था, तभी देखी है बस।
6: अच्छा तो चलो, मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
4: अरे वाह,
6: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
4: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
6: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
7: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
6: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देखाएंगे।
7: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ो।
6: बैठो बैठो, जल्दी करो जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
7: उतरो उतरो
5: रानी, जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
6: हाँ हाँ, उतरो बेटी।
2: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफार्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
4: दादाजी, यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
6: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और कुछ जाने वाले हैं।
4: अच्छा, तो ये बात है।
6: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
8: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
5: दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
6: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
4: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
6: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
4: अच्छा, अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
6: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
4: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।
8: चुक चुक चुक चुक

मीन पातल रे से अने कैनी गेहरी जो जाडी रे से। तो गेहरी जमीन में कम पानी लागे से अने जो पातली जमीन से तीन में नमी नी बार बार कमी थाई जाए तीना हारू तीन में आपड़ किसान भाई नमी देखी ने तीना हिसाब थी पानी फेरतू रहेवानू। ये वात थाई हाव सिंचाई नी अने किसान भाईओ हाव तमन हूँ निंदाई गुड़ाई अने पौधा ने टेको आलवाना बारा में जानकारी बताड़ू। तो पौधा ने टेको आलवानो अने निंदाई गुड़ाई की कम करवानी तो इनाम देखी जाए किसान भाइयों फसल नी हाते अक्सर जो खरपतवार जो दरोड़ी से एवं कई प्रकार ना खरपतवार ना झाड़का उगी जाए से अने आवश्यक पोषक तत्व अने पूरी तरह पौधा तक नी पुगवा दे से अने त्या वसमा तीनान खाई जाए से। कई प्रकार नो आपू खातर आलिए त्या भी तीना ने निंद्रनी जो छाड़का से त्या तीनान खाई जाए से अने आपड़ा असली पौधा से टमाटर ना तीना पौधा ने त्या नी पनपवा दे ते तीनी हारू आपन किसान भाइयों ने समय समय पर निंदाई गुड़ाई करीने खरपतवार निकालतु रहेवानु अने टमाटर मा फूल आवाना टाइम पर अने पौधा मा टेको आलवो जोईए। खासकर टमाटर मा जो लांबी बढ़वा वाली जो वेला रहेशे तीनी किस्मनी टेको आलवानी घणी जरूरत पड़े से अने इनमा फल अने मीठी अने पाणीना संपर्कमा नी आवा जोईए तीनी हारू आपणे टेको आलीने तार बांधीने तीना ऊपर टांगवा पड़े से। तो किसान साथियों तीना फल स्वरूप फल हड़े भी नहीं अने एवी कई प्रकार की समस्याओ तीन में नहीं आवे से। टेको आलवाहारू रोपाई ना 30 था लगाड़ी ने 45 दिन नी बाद में वाहड़ा या फिर लाकड़ा ना जो डंडा से तीना लाकड़ा ना डंडा थी तीहुनी ऊंचाई पर तार बांधी ने पौधा ने हुतुड़ी नी सहायता थी आपूं एक तरह थी तीन मां असल गुणवत्ता वाले जो टमाटर रहे से तीन मां वेला ने आपूतिनी ऊपर सलाड़ी सकी ताकि जितनी भी फसल जो किस्मिया से तीन गुणवत्ता ना आधार पर टमाटर से तीनों उत्पादन भी तीनान सही मिली सके। तो किसान साथियों तुड़ाई तो अगस्त मां रोपेला जो पौधा है टमाटर ना तीन मां अक्टूबर मां फल आवा लागे से अने फसल 75 दिन थी लगाड़ी ने हो दनों मां तुड़ाई हारू तैयार थाई जाय से। जेर फळनो रंग हल्को रातो थावा चालू थई जाय अने एनी अवस्थामां फळोनी तोड़ाई करी लेवानी। नजदीकी बजार मतलब मेरे आपणो जो बजार पड़े छे तीनमां मोकलवा हारू असली पाकेला फळोनी तोड़ाई करवी जोईए जे पूरी तरहथी पक्का थई गया है परिपक्व तीनान बोले से अने असली थई जाय तीनान आपण तोड़ीने तीनान आपूं मार्केट तक ले जाई शकीए। तो किसान साथियों टमाटर नो उत्पादन तकनीकी नेट शेड ना अंतर्गत भी करी सके अने गर्मी ना दनों मा संकर टमाटर नेट शेड मा आसानी था उगाड़े जाई सके से। तो किसान साथियों इना हारू 35% वाली नेट शेड नो उपयोग करियो जाई से। तो किसान साथियों नेट शेड ना अंतर्गत जो क्यारियो थी क्यारियो नी जो दूरी है 80 सेंटीमीटर अने पौधा थी पौधा नी दूरी 40x60 सेंटीमीटर राखवी पड़े से। शुरुआती स्तर पर एन अने के प्रत्येक नी 50 किलोग्राम अने पी पोटास 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर ना हिसाब थी नाखी जाए से अने फर्टिगेशन ना समय पर किसान भाइयों एन अने के प्रत्येक ने जो 200 किलोग्राम मात्रा खुदा तरीका थी आलवी पड़े से। तो किसान साथियों पाली हाउस ना अंतर्गत टमाटर नी उन्नत उत्पादन तकनीक की कम करे से तो तीनी जानकारी भी थोड़ी हामल ली। तो जो सुमाहना दोनों मा जो बरसात ना मौसम मा पाली हाउस ना अंतर्गत इंडी टर्मिनेट प्रकार थी संकर टमाटर भी ओरी सकी तीना हारू मिट्टी मां देसी खातर कंपोस्ट कायर मज्जा अने रेत नो जो मिश्रण से 2:1:1 इना मिश्रण करीने इनो उपयोग आपू करी सकी। शुरुआत मां एनपीके हरेक ने 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर नी दर थी उपयोग करे से अने इनी बाद मां फर्टिगेशन मां एनपीके प्रत्येक ने 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर ना दर थी उपयोग करवो पड़े से। तो किसान साथियों पाली हाउस में 50 माइक्रान नी पालीथन मल्च नो उपयोग करियो जाय से। तो किसान साथियों हाव टमाटर में रोग अने तीहुनो नियंत्रण
तो किसान साथियों, टमाटर में रोग नु

ऊंची तक ऊपर उठेली इरे विजयी। तो किसान साथियों पछेती अंगमारी यो रोग नो नाम से अने यो रोग पौधा ना पायड़ा अने कैनी भी अवस्था में यो थाई से भूरा अने काला बेंगनी रंगना पायड़ा ऊपर धब्बा बनी जाय देखाई देसे अने तीने कारण आखरी में पायड़ा पूरी रूप थी झूलसी जाय से अने कोकड़ाई जाय से। तो किसान साथियों नियंत्रण नियंत्रण करवा हारू मेनकोजे 2 ग्राम अने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम रिडोमिल एम झेड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाने छिड़काव करवाथी आप इना रोग नो नियंत्रण करी सकें। तो किसान साथियों एक और रोग है पायड़ा ना धब्बा रोग तिना ने वेक्टेरियल धब्बा रोगजनक पौधा थी हगला भागों पर घावों नो उत्पादन जगह जगह घाव पड़ेला टमाटर में करना कैसे अने तिना पायड़ा थूड़ फूल अने फल शुरुआती पायड़ा अने लक्षण एक पीला रंगना प्रभामंडल तो घेराई जाय से अने त्या नाना गोल थी अनियमित गहरा घावों जेवी रीते देखाई दे से घाव पायड़ा थी जो किनारा से तीना आगाड़ीना भागों पर 3-5 मिलीमीटर व्यासना आकार में बढ़ोतरी करवा लागे से प्रभावित पायड़ा पर एक झुलसन जेवी देखाई दे से अने अनेक स्पॉट थाई जाय से अने इन्हा पायड़ा पीला पड़ी जाय से अने बाद में या रंग बदली जाय अने इहोना निचला पौधाना जो निचला जो हिस्सो रहेसे त्या पायड़ा झड़वा लागे से अने पौधो बाद में मरी जाय से। तो किसान साथियों इना नियंत्रण करवा हारू नवसरी नी बेड तैयार करवा तो पहलू मिट्टी धूप में तड़का में तैयार करवी जोई ताकि ऊपर ज्यादा सीहड़ो नहीं रहेवो जोई अने बीज ने स्ट्यूडोमोनास क्लोरोसेस 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज थी उपचारित करवाथी इना रोग नो नियंत्रण किसान भाई करी सके से। तो किसान साथियों कीट प्रकोप नो नियंत्रण तब टमाटर में किसान भाइयों ने पायड़ा सुरगक कीट लीफ माइनर या कीट पायड़ा में सांदी हार का सुनहरा सुरंगे बनाई नाखे से इना रंगनियो अने इहुन मा मैथा पायड़ा या खावा लागे से। तो किसान साथियों इना नियंत्रण करवा हारू जो आपड़ो पौधो इनी बीमारी तो ग्रसित थाई गयो हती ना पौधा ने निकाली ने खत्म कर देवानो डाइमिथोएट 2 मिलीलीटर मिथाइल डेमिटोन 30 ईसी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी ना हिसाब थी मेलवी ने छिड़काव करवा थी आपु इहुनो नियंत्रण करी सकें। तो किसान साथियों टमाटर पर जो फल छेदक जो टमाटर ऊपर काणू कर नाखे से तो तीना हारू किसान भाइयों इना ने यो कीट टमाटर में सब तो पहलो ज्यादा थी ज्यादा नुकसान पहुंचाड़ वालो कीट से अने मादा कीट पायड़ा ना निचला जो सतह रहे से पायड़ा नी बूंदे नी परत में निशा ईंडा मिले से अने जो जाड़ीदार रहे से तीन में ईंडा मिले अने इना टमाटर अने फोड़ू ने काणा करीने जो फल जो टमाटर नो अंदर नो महीनो गुदो गाप खाई जाय से। तो किसान साथियों इना नियंत्रण करवा हारू टमाटर नी हरेक 16 पंक्तियों पर ट्रेप फसल ना रूप मा अने एक पंक्ति गेंदा लगाड़वा जोई तो एक ओळ मा गेंदा लगाड़वा जोई अने जेवी रीते आपू ओळियां काढी थोवर ना। तो किसान साथियों जरूरत पड़वा पर लीमड़ा ना बीज नो अर्क 5% या NPHV 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टर इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 1 ग्राम 2 लीटर स्पेनोसेड 50 SC 1 मिलीलीटर 4 लीटर या डेल्टा मेथ्रीन 2.5 EC 1 मिलीलीटर पानी नो इस्तेमाल करवानो थी आप इनो नियंत्रण करी सकी अने किसान साथियों बीजो रोग से सफेद मक्खी अंग्रेजी में इनान व्हाइट फ्लाई ना नाम थी जाने से या कीट पायड़ा नो रोस हुई जाए से अने वायरस जनित रोगों नो प्रसार करे से। तो किसान साथियों इना नियंत्रण हारू रोपाई तो पहलो पौधा ने जेड़ियों ने आधा घंटा हारू इमिडा क्लोरोपीड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोली ने इना ने डुबाड़ी राखवानो। नवसरी में 4 मेष नी नायलॉन कशकड़ा नी नेट ने ढाकी ने

0: आकार पर निर्भर करे से। क्यारीओ बनावता वक्त बे क्यारीओ मा अने बे क्यारीओ ना जो 20 मा 30 सेंटीमीटर नो आतरो राखो जोई तीन थी कर्षण कामोनी सुविधा थाई जैसे। तैयार क्यारीओ ना रोपत ना बे दन पहलू निर्जीकरण करी जैसे। तीना हारू कांस नी प्लेट पेट्री डिश मा 8-10 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट ना क्रिस्टल नाख्या जाए से। पूरी बेड ना पॉलिथीन थी ढाकी ने इनान ढाक नाखवानो। तीनी बाद मा हर एक पेट्री डिश मा 5-7 मिलीलीटर फॉर्मेलिन नाख्यो जाए सके से। तीन थी तुरंत गैस नकले से। तीन थी मिट्टी मा उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीव खत्म थाई जाए से। तो किसान साथियों, मैं तमने आज पोली हाउस में शिमला मिर्च ना उत्पादन ना तरीका ना बारे में जानकारी हमलावी अने एवी खेतीवाड़ी नी असल असल जानकारियों हमलवा हारू तमो हमलता रहेजो रेडियो टंट्याभील 90.8 FM छाबुआनी आवाज। तो किसान साथियों, हाँ आर जे कमता डामोर ने इजाजत आलजो अने
1: तो किसान भाइयों, यो हतो आज नो कार्यक्रम खेतीवाड़ी। आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम मा आपुई वात हामली सब्जी वर्गीय खेती नी। इनामा आपुई टमाटर नी, अदरक नी, बैंगन अने शिमला मिर्च नी तकनीकी खेती नी बदी वातियो आज आपुई इना कार्यक्रम मा हामलियो। किसान भाईयो, हमु रोज तमारी वस मा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायला मुद्दा, तीनी समस्याओ अने एना समाधान नी वातियो पण लीने हाजिर थाता रही छे। અને આશા પણ કરી છે કે અમારા ઝાબવા જિલ્લાના કિસાન ભાઈ એ બધી વાતો સાંભળે અને આપણી ખેતીવાડીમાં સુધાર કરે અને અસલ મોટો મુનાફો કમાઈ શકે તો આ સારું બસે એટલી વાત। કેમ કે હાલ સમય થઈ ગયો છે બીજા કાર્યક્રમોનો। હું આરજે રાકેશ લું છે તમારી દેખી ઇજાજત, પણ તમું જાજો મતી કહીતા સાંભળતા રહેજો ઝાબવાની આવાજ પર સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટ્યા ભીલ 90.8 FM પર તમારા જ રેડિયો ખતવાર આરજે રાકેશની હાથે।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड, जहाँ हम मिलते हैं उन लोगों से जिनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि मूल्यों, अध्यात्म और जीवन दर्शन की होती है। आज हमारे साथ हैं अंशुल उदय उलाल जी, जिनके जीवन में परंपरा और प्रगति दोनों का एक सुंदर सा संगम देखने को मिलता है। मैंगलोर के उलाल से जुड़ी सांस्कृतिक जड़ों और बेंगलुरु के डायनेमिक माहौल में पली बड़ी सोच ने उन्हें एक अनोखा नजरिया दिया है। प्रोफेशनली अंशुल जी एक बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर मैनेजर सर्विस एक्सीलेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही भाला चंद्र नेकन कट्टे ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में समाज सेवा और चैरिटेबल इनिशिएटिव से भी जुड़े हुए हैं। पर उनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं है, आध्यात्म, गुरु भक्ति, सेवा, विनम्रता और जीवन के उच्च मूल्यों को अपने व्यवहार में उतारना ही उनकी असली पहचान है। दोस्तों, तो आइए स्वागत करते हैं अंशुल जी का। तो अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग के स्पेशल प्रोग्राम में। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप?
1: बहुत अच्छे, थैंक यू
0: जी। चलिए शुरू करते हैं सर आपके आइडेंटिटी से, आपकी शुरुआत से। बहुत सारे लोग आजकल अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पर्सनालिटी को अक्सर अपने प्रोफेशनल डेजिग्नेशन, प्रोफेशनल लाइफ, अचीवमेंट्स, इन सभी से जोड़ते हैं, और आपने इतना कुछ जीवन में अचीव किया है पर्सनली, सो आई एम श्योर वो आपके लिए बहुत एक प्राइड का मैटर है। बट अगर आपसे कहा जाए कि आपकी पहचान बिना जॉब, बिना ट्रस्ट की जो आइडेंटिटी है, फैमिली बैकग्राउंड, इन सभी को हटा के अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन है, आप अपने आप को किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे सर?
1: जी,

0: बाय एग्जाम्पल काम करता है और वही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ।
1: क्या बात है। तो सार बेसिकली ये है कि आप मिडिल पाथ अगर अपनाएं जिसमें सबका भला हो, सब खुश रहें, तो वो आई थिंक इज द आइडियल वे ऑफ लाइफ। एम आई राइट?
0: जी
1: जी। अब सर, इन्हीं बातों के बीच सबसे पहले हम आपका आज का पहला फरमाइशी गीत सुनेंगे जो बहुत ही खूबसूरती से लता मंगेशकर जी ने गाया है, तुम आशा विश्वास हमारे। क्योंकि आपने कहा आप म्यूजिक से जुड़े हैं, तो मे बी प्रोग्राम के अंत तक मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कोई भी आपकी पसंद का एक गीत गुनगुना दें अगर आप चाहें तो। फिलहाल हम ये सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत गीत, तुम आशा विश्वास हमारे, लता मंगेशकर जी की खूबसूरत और गहरी आवाज।

0: बहुत ही सुंदर आस्था विश्वास से भरा हुआ ये गीत हमने सुना। थैंक यू सो मच अंशुल जी इस खूबसूरत गीत की, इस खूबसूरत भक्ति गीत की रिक्वेस्ट करने के लिए, थैंक यू। आगे चलते हैं। आपने कहा कि गुरु और ईश्वर इन दोनों ही पे आपकी आस्था हमेशा रही है और हमेशा एक अटल आस्था रही है। तो अगर आपको जीवन मौका दे कि आपके गुरु से या आपके ईश्वर से आपको ये एक सवाल पूछ सके, तो वो क्या सवाल होगा और क्यों?
1: बहुत अच्छा सवाल है तनुषा जी। जब ऐसा मौका जब आते हैं तो हम और आगे कैसी उनकी सेवा करें, ऐसा एक सवाल मन में आता है कि उनका और सेवा करके उसका पुण्य कैसे कमाएं। सवाल उधर किया जाता है जहां पर थोड़ा डाउट होता है, लेकिन गुरु और भगवान उनको पता है कि कब और क्या उपलब्धि देनी है, कैसी कोर्स करेक्शन करनी है और अपना जो जीवन चल रहा है उसको सही दिशा कैसे देनी है। तो हम क्या मांगे और कौन है मांगने को, ऐसा मेरी सोच है। आदेश के साथ उसको पूरा करने का आशीर्वाद मांगते हैं उसको, और सबको सुख शांति और पूर्णता का एहसास यही मांग सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सवाल तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन पापा बोलते थे कि जब हम मंदिर में जाते हैं और दर्शन के बाद हम जब बाहर आने से पहले हमें वो प्रांगण में बैठने को कहा जाता है, जब हम वहां पर बैठते तो उस समय एक प्रार्थना है जैसा अनायासेन मरणम विना दैनीन जीवनम। तो पापा बोलते थे कि ये जब हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान को, ये सबसे बड़ी प्रार्थना है जहां पर भगवान को सब चीजें मतलब अच्छा जीवन, अच्छा अंत और उनके चरण में ही जगह, ऐसा प्रार्थना इस मंत्र में बोला जाता है। एक प्रार्थना है वहां पर जो हम करते मंदिर में, तो वही सबसे बढ़कर रहता है और उससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकते करके पापा बोलते थे।
0: वाओ, ब्यूटीफुल। और एक एक तरह से कंप्लीट सरेंडर का भाव है इन बातों में।
1: जी जी,
0: बिल्कुल सरेंडर करें और भगवान पे विश्वास रखें। ही इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू और वो आपको कैरी करते हैं लिटरली अपने हाथ में।
1: एब्सोल्युटली, सुख हो तो सुख और दुख हो तो उसमें शक्ति, उसको उसको सामना करने का शक्ति भी वो ही देते हैं।
0: बिल्कुल, और कोर्स करेक्शन भी जैसे आपने कहा कि वही करते हैं, वही डिवाइन है, वही पावर है। खूबसूरत सर। जी, आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया और जैसे मैंने आपसे जितना कॉरेस्पॉन्डेंस किया है इस इंटरव्यू के लिए, तो मैंने फील किया कि आप एक बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही मेटिक्यूलस एम्प्लॉई हैं। इसीलिए शायद आज आप बिग फोर कंपनी में एक सीनियर मैनेजर की पोजिशन में हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत प्राइडफुल बात है। इसके अलावा आप भालाचंद्रन नेकनकट्टे ट्रस्ट में भी मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में सामाजिक सेवा से जुड़े रहते हैं
1: जी।
0: तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, सबको नहीं प्राप्त होती हैं। और बहुत सारे ऐसे पल आए होंगे, बहुत सारे ऐसे मौके आए होंगे जब शायद आपको ऐसा लगा होगा कि ये मैं हूं। बट मैं सबके बीच में ये पूछना चाहती हूं कि इन अचीवमेंट्स, इन अवार्ड्स, इन डेजिग्नेशंस या टाइटल से नहीं जुड़ी हुई कोई एक ऐसी कहानी, कोई एक ऐसा पढ़ाव है आपके जीवन का जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो इन सब उपलब्धियों से ऊपर लगता है आपको?
1: जी, तो जब मैं स्कूल में था और जब हमारे जो पूर्वजों का घर है हमारे उल्लाल में, तो वहां पर हम जाते थे क्वाइट फ्रीक्वेंटली, और वहां पर जैसे डेवलपमेंट होता गया वहां

0: पर जो रीति रिवाज यू नो रिवाइव होते गए, तब ऐसा लगता था कि ऐसे सब ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उनको सीखना है, उनको आगे लेके जाना है, जो भी सेवा है वैसा करना है। तो जब पापा की गुजर जाने के बाद लास्ट अगस्त में परिवार और परंपराओं की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई, लेकिन मेरे ऊपर बोलना चाहूंगा तो इसमें जैसे मैंने बोला कि भगवान देते भी हैं और कुछ चैलेंजेस रहते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी शक्ति वही देते हैं। तो इस बिग फोर में ऐसा पद मिलना सब भगवान का आशीर्वाद समझता हूं कि एक प्रतिष्ठित कंपनी में सीनियर मैनेजर का पद भी श्रम के फल में रूप में मिला मुझे। और अब हर बार जब उल्लाल जाता हूं तो वहां पर जो दैविक शक्तियों और पूर्वजों की पुण्य भूमि में सेवा करता हूं तो एक बहुत निराली सी सुकून मिलती है। मेरे पापा का जीवन काल में बहुत ऐसे मौके मिले हैं जहां उनको देखकर मुझे ऐसा लगा है कि अगर मैं इसका 10% भी कर सकूं तो ये जन्म मेरा सार्थक होगा। इतनी बहुत अच्छी चीजें वहां पर हुई हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलना चाहूंगा तो वहां पर हर साल एक यात्रा होता है। यात्रा मतलब जहाँ पर दैविक शक्तियां हैं उनको उत्सव और एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जहाँ पर वो भक्तों को आके बाहर गर्भगुड़ी से बाहर आके आशीर्वाद देके वापस गर्भगुड़ी में जाते हैं। ऐसा होता है
1: जगन्नाथ जैसा। जी
0: जैसे रथ यात्रा होता है ऐसा ही होता है, लेकिन वहाँ पर दैविक शक्ति बाहर आके सब भक्तों को परिहार आशीर्वाद देके वापस गर्भगुड़ी में विराजमान हो जाते हैं। तो वो यात्रा जब आयोजन करते हैं तो उसमें आर्थिक व्यवस्था की भी जरूरत होती है, और इतने साल में जब हम लोग देख रहे थे तो आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़के लेके जाने के लिए बहुत चैलेंजेस होता था, जहां पर डेफिसिट बैलेंस होता था, जैसे तैसे मैनेज करके जाते थे। लेकिन इस साल जब मेरे सेवा करने का मौका मिला तो वहां हमने ये देखा कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, मतलब थोड़ा हम लोगों को पॉजिटिव बैलेंस मिलना चालू हो गया। तो ये सब वहां पर हमारी देवी है अप्पे उल्लाल्टी करके, आपको रेडियो एसएन के एक इंटरव्यू में शीला नागरकट्टी जी ने बोला था, जो मेरी बुआ है, तो उन्होंने भी बोला था, तो उनकी शक्ति का मैं यू नो आई'd लाइक टू गिव दैट क्रेडिट और गिव माय ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। तो उसने उन्होंने अपने जो देवस्थान में उसमें मुझे एक किताब है वहां पर जो शान भोग और शेनरे जैसे बोलते हैं, तो वो भी आशीर्वाद के रूप में दिया वो पद। तो ये सब जब देखते हैं तो उनका यात्रा जो हुआ वो भी और शानदार स्तर पे हुआ। तो वहां पर एक 80 साल के बुजुर्ग हैं वो देवस्थान में जो टेंपल में, तो वो बोलते कि और ये शायद उनका 50 या 60 साल का उनका एक्सपीरियंस है वहां पर सेवा करने का। तो वो बोलते हैं कि इतने साल में इतने विलक्षण रूप पे और इतने ग्रैंड स्तर पे उन्होंने वो यात्रा नहीं देखा। तो जब ऐसा कोई बुजुर्ग बोलते हैं कि मतलब ऐसा दिखने को आया और इसमें देवी का आशीर्वाद मिलता है, तो एक बहुत निराली सी फीलिंग आती है कि माँ ने मुझे चुना और मुझे राह दिखा रही हैं। और वहां पर जो मडराय करके वाराही शक्ति है, वराह लक्ष्मी, वराह अवतार, जो विष्णु जी की वराह अवतार है, लक्ष्मी लक्ष्मी जी है उसमें, तो उनका भी हमारे घर में संचार है और उनका आशीर्वाद भी, उनका मार्गदर्शन होता है। तो ये जो आपने जैसे बोला टाइटल्स वगैरह, वो कभी हमारे सक्सेस हमारा सक्सेस है करके वो कभी फीलिंग नहीं आता है। भगवान ने दिया और भगवान करवा रहे हैं और भगवान लेके जा रहे हैं करके वो वाला फीलिंग आता है।
1: बहुत ही खूबसूरत, मैं सच में बहुत इंस्पायर्ड हूँ इस भाव से आपके, आपका जो कंप्लीट सरेंडर है वो अगर एक इंसान इस लाइफ में शायद इसका अंश भी सीख जाए तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत इजीली अपने आप को कैरी थ्रू होने देंगे। अपनी उपलब्धियों में भी आपके अंदर नाज नहीं आएगा, आप एरोगेंट नहीं होंगे और अपने फेलियर्स में भी आप बिल्कुल डाउन नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल गिव अप नहीं कर देंगे एंड यू विल नो कि आपको भगवान कैरी कर रहा है, आज नहीं तो कल आप ऊपर उठ जाएंगे। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया। मैं चाहूंगी कि कभी मैं उलाल आऊं तो इस यात्रा के समय आऊं और मैं ये देख सकूं, फील कर सकूं माँ की वो पार, बिकॉज मैं भी माँ में बहुत विश्वास रखती हूँ, सभी नवरात्रे रखती हूँ। तो बहुत ही गहरी और बहुत ही आध्यात्मिक बातें आपसे हो रही हैं। इसी के बीच आई एम सॉरी, हमारी पूरी SN रेडियो टीम की तरफ से वी कन्वे अ लॉट ऑफ कंडोलेंस टू यू फॉर द लॉस ऑफ योर फादर। आई एम श्योर वो जहां पे भी हैं ही इज लुकिंग एट यू एंड ही इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। जिस तरह की उनकी अपब्रिंगिंग है, इट्स ब्यूटिफुल टू सी यू टॉक एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड हेवनली यू नो happiness to your father, the departed.
0: Thank you, Tanusha ji. तो इसमें actually एक तो आपका you know हृदयपूर्वक स्वागत है उल्लाल और यात्रा में भाग लेने का आपका और आपकी पूरी टीम का, और दूसरा जो आपने बोला कि पापा देख रहे हैं, मुझे बहुत बार ऐसा महसूस होता है जो जब वहाँ पर काम करता हूँ या जब यहाँ पर भी कुछ थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं कि कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, तो उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है, एक वाइब और इंस्पिरेशन, जैसे बोलते गॉड्स इनविजिबल हैंड बोलते हैं और पिता तो पहले गुरु बोलते हैं, माता
1: पिता तो सूर्य
0: हाँ, तो उनका जो इनविजिबल हैंड है वो दिखता है और हर कार्य में मैं उनको समर्पित करके उधर अच्छा होना चाहिए, परिवार साथ में होना चाहिए और साथ में प्रेम भाव से हमें सेवा करना है करके मेरा हमेशा प्रार्थना रहता है। तो आपने बहुत करेक्ट वाइब हमारा पकड़ा है, थैंक यू सो मच।
1: बिल्कुल सर, मैं ये फील कर सकती हूँ क्योंकि आई ऑल्सो लॉस्ट माई फादर इन 2020 और इट्स ओके एंड मैं हर समय उनका प्रेजेंस फील करती हूँ, हर समय उस रोशनी की कभी तो कमी फील करती हूँ और कभी ऐसा लगता है कि वो ही है जो मुझे आगे लेके जा रही है, वही रास्ता दिखा रही है। बहुत डीप और बहुत गहरे एहसास होते हैं ये माता पिता को खो देना और फिर उनकी प्रेजेंस को अपने जीवन में हमेशा फील करना, और बहुत ब्लेस्ड हैं हम कि हम वो कर पा रहे हैं। इन्हीं बातों के बीच हम सुनेंगे आपका अगला फरमाइशी ब्यूटीफुल गीत। अगेन ये भी एक भक्ति गीत है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, अनूप जलोटा जी की आवाज में।

0: बहुत ही सुंदर गीत। एक बार फिर आगे चलते हैं सर। अगर आपके जीवन को एक मंदिर माना जाए तो आपके हिसाब से उस मंदिर के चार स्तंभ कौन से होंगे, जिन पर चल के, जिन पर यू नो अपना एक अपनी एग्जिस्टेंस खड़ी करके एक अर्थपूर्ण और एक संतुलित जीवन टिक सकता है और जिया जा सकता है।
1: कितना खूबसूरत सवाल है तनुषा जी। मैं वही सोच रहा था कि जब आपने ये सवाल ड्राफ्ट किए तो आपको कैसा वो पल्स मिला होगा। ऐसे सवाल आज तक शायद किसी ने नहीं पूछा और मैंने जवाब देने का भी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि ये बहुत पर्सनल सवाल है। लेकिन थैंक यू सो मच पूछने के लिए, क्योंकि आज के जमाने में ये बाहर आके थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस जब होता है तो बहुत काम आता है हमारे इंडिविजुअल डेवलपमेंट में। तो जिंदगी एक मंदिर ही है जो सफर हम लोग तैर करते हैं यहाँ पे। तो चार स्तंभ अगर मैं सोचूंगा तो एक है सेवा भाव, माता पिता, गुरु और भगवान। जो मंदिर में भगवान होते हैं तो माता पिता, गुरु और भगवान, और माता पिता गुरु भगवान की ही स्वरूप है, और गुरु हमारे मठ में गुरु हैं, भगवान हैं, उनकी सेवा करना। श्रद्धा, तो हर कार्य को समर्पण के रूप में देखना, मतलब हम लोग कर रहे हैं ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान करवा रहे हैं, माता पिता करवा रहे हैं, उनका आशीर्वाद करवा रहा है, जो भी उसमें त्रुटियां हैं उनसे सीखना हमारा काम है। जो लेकिन उसका जो श्रेय मिलता है उसको भी उनके लिए समर्पण करना, वो बहुत मायने रखता है। संतुलन, और पुराने और मॉडर्न लाइफस्टाइल में बैलेंस। आजकल आप देखोगे बहुत मॉडर्न लाइफस्टाइल होने लगा है, जहां पर अपना हम स्कूल में बात करते थे पुरातन ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा एक निबंध हुआ करता था, ऐसे लिखते थे हम लोग उसके ऊपर। तो उसमें संतुलन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो भारत की संस्कृति है, संस्कार है, हमें बहुत ग्राउंडिंग रखते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल हमें सक्सेस भी देता है। तो उसमें जैसे मैंने स्थित प्रज्ञा श्लोका के बारे में बोला था, उसमें संतुलन एक डिप्लॉय करने का बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेप होता है। साधना चौथा स्तंभ। सो लक्ष्य प्राप्ति और मेहनत, नई चीजों को सीखने का जज्बा, और खुद को दूसरों की सहायता में उपयोग करना, ऐसा साधना के अंश होने चाहिए। और स्कूल में एक प्रसिद्ध कबीर के दोहे सिखाए गए थे, जिसमें वो बताते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसमें आप देखोगे तो पहले मैं भी भूखा ना रहूं आता है। तो खुद को पहले बुलंद कर दो और उसके बाद कोई भी आपके दर पे आए वो भूखा नहीं जाना चाहिए, संतुष्ट और संतोष होके निकलना चाहिए, ऐसा सेवा भाव होना चाहिए। ये दो चीजें ये दोहे में दिखने को मिलता है। तो ये सब जो सीखा है वो सब इम्प्लीमेंट करने का ऐसा जज्बा होता है।
0: बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही नुएंस्ड आंसर था ये, और इसमें सब कुछ आ गया एक तरह से। जिस तरह से आपने उस श्लोक की बात की, वो श्लोक ही सब कुछ, आई थिंक गागर में सागर जैसी बात हो गई है कि सेवा भी हो, साधना भी हो, संतुलन भी हो, और ऑफ कोर्स आपकी जो श्रद्धा है वो भी हो।
1: जी।
0: बहुत ही खूबसूरती से आपने आंसर किया, और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप खुद नहीं भरे हुए होंगे तो आप कभी भी एक एम्प्टी कप से पोर नहीं कर सकते। आपके पास कोई भी आएगा आप उसकी मदद तभी कर सकते हैं जब आप फुलफिल्ड हैं, आपके पास कुछ है देने को। तो बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया कि कैसे साधक बने, कैसे संतुलन में जिए श्रद्धा के साथ, और बहुत ही खूबसूरत आंसर। चलिए इन्हीं बातों के बीच हम सुनेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत गीत, जो मेरा भी वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, फिल्म मेरा साया।

0: क्या बेहतरीन गीत है ये सच में। आगे चलते हैं सर
1: जी।
0: गीत है ये सच में। आगे चलते हैं सर
1: जी।
0: आप सेवा और चैरिटी से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमने जाना आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। तो हम बहुत बार सोचते हैं, जैसे आपने कहा कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक अहंकार आ जाता है या एक एक एक वो एक यू नो एक फीलिंग आ जाती है कि मैंने इसकी मदद की। हम भूल जाते हैं कि मैं सिर्फ एक साधक था, एक सोर्स था, एक एक इंस्ट्रूमेंट था भगवान के द्वारा चुना हुआ, और हम सोचते हैं कि मैंने इसकी जिंदगी बदल दी। बट मैं उलट करके ये पूछना चाहूंगी, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ इतने लोगों की सेवा में, इतनी चैरिटी में, कि किसी एक व्यक्ति की हेल्प करने में, उसके साथ उसकी सेवा करने में आपकी जिंदगी बदल गई?
1: जी, हम जब सेवा करते हैं तो जैसे आपने बोला कि हम किसी की और की जिंदगी बदल रहे हैं, हम किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते। हम सब अपने अपने जो कार्मिक साइकिल हैं वो फॉलो करते हैं। मेरा ये मानना है कि हर लाइफ टाइम एक बैलेंस शीट की तरह होता है। जब तक बैलेंस क्लियर नहीं होता तब तक प्रोग्रेस नहीं होता। तो इस सफर में कुछ लोग हमारे जीवन में सुख लेके आते हैं या उसको चैलेंजिंग बनाने के लिए आते हैं। हम उन्हें कैसे हैंडल करें वो मायने रखता है। सो हम सब एक दूसरे के लिए एक निमित्त मात्र हैं। और दोर तो उस मालिक के हाथ में है जो अनंत रूप और लेके और अनंत सूत्रों से ये दुनिया चलाते हैं। तो सेवा भाव में निमित्त मात्र होने का एक ग्रेटिट्यूड होता है कि भगवान ने एक ऐसा मौका दिया है हमें। सिर्फ योग्य लोगों को ऐसा आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसा कई बार मन में आता है। तो पापा का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि ये जो ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी थे उन्होंने ये ट्रस्ट को चलाया है इतने साल, और उन्होंने काफी हद तक, मतलब मैं अभी जब मैनेजिंग ट्रस्टी होके फिर मैं वो फाइल सब देखता हूँ तो बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसे यू नो संस्थाओं के साथ हम लोग जुड़े, जहाँ पर हम लोग सामाजिक सुख और एड्स, हम लोग जैसे हेल्प करने की जो यू नो प्रोग्राम्स है उसमें हमने सहायता की है, मतलब ट्रस्ट के द्वारा। और भगवान ने हमें वो मौका दिया है ऐसा किसी का जीवन को बेहतर बनाने के लिए, हमारा एक छोटा सा योगदान सेवा के तौर पे, लेकिन वो भी देने का आशीर्वाद भगवान ने ही दिया है। तो ऐसा मुझे ऐसा जब ये सब पढ़ता हूँ तो ये मन में आता है।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सच है कि भगवान ही वो मौका देता है। हम सच में सिर्फ एक निमित्त हैं, एक जरिया है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और वो भी भगवान सबको नहीं देता जो योग्य हैं, जिनको उनको पता है कि इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल वो सच में उस कार्य के लिए करेंगे, उन्हीं को मिलता है। और ऑफकोर्स कुछ पुराने कर्म होते हैं आपके अच्छे संचित, जिनकी वजह से आप आज वहां हैं जहां हैं। तो आगे चलते हैं सर, उलाल के बारे में आपने बहुत बार मेंशन किया, ये आपकी नेटिव प्लेस है मैंगलोर में
1: जी।
0: तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या उलाल से जुड़े हुए कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, कुछ अनुभव, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनमें आपको एकदम डिवाइन प्रेजेंस फील हुआ हो, या इनर अवेकनिंग हुई हो, या बहुत गहरे आध्यात्मिक एहसास महसूस किए हों आपने?
1: बहुत सारे हैं।

0: तो उल्लाल, जैसे आपने बोला कि आपकी नेटिव जगह है, मैं तो कहना चाहूंगा कि ये मेरे पूर्वजों की पुण्य भूमि है। तो जहां पर उन्होंने कितना श्रम करके उसको सींचा है, और वहां पर जो एक टेक्सचर होता है ना, हर जगह का एक टेक्सचर होता है। तो वहां पर जब आप टेक्सचर होता है ना, हर जगह का एक टेक्सचर होता है। तो वहां पर जब आप टेक्सचर देखोगे तो वहां पर बहुत स्पिरिचुअली हाई जगह है वहां पे, जहां पर भगवान का प्रेजेंस और इनर अवेकनिंग तो बहुत फील होता है, वहां के वाइब्रेशंस जो है वैसा। तो यहाँ पर थोड़ा अगर मैं इसके बारे में बोलूँ तो ये एक इंटरव्यू काफी नहीं रहेगा, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन मेनली अगर मैं बोलना चाहूंगा तो जैसे मैंने आपको बोला ये इंटरव्यू में कि हमारे घर में वराह लक्ष्मी जो मर रहा है, वराही शक्ति है, वराही शक्ति है उनकी, उनका संचार है। तो जब हम लोग घर घर को रेनोवेट कर रहे थे, पूरा रेनोवेट कर रहे थे, फाउंडेशन में हमें तीन मैंगलोर साइड पे ना, जब पानी गर्म करते हैं स्नान करने के लिए, उसको भाण बोलते हैं अपने कोंकणी में, भाण करके एक बर्तन जैसा होता है जो गर्म करते हैं पानी उसमें। तो ऐसे तीन तीन बड़े बड़े, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 फीट के ऐसे बर्तन हमें मिले थे, जिसपे जिनमें विभूति था।
1: वाओ
0: तो वो विभूति किसी पूर्वज का मतलब अस्थि है कि विभूति है, पापा को समझ में नहीं आया, तो हमने उसको फाउंडेशन में मिक्स करके घर बना दिया था। ठीक
1: वाओ
0: है, तो जब ये हुआ तो हम जब सब डिसमेंटल कर रहे थे, तब एक हमें एक लकड़ी का प्लैंक मिला था। ठीक है, तो उस टाइम हमें पता नहीं था कि ये क्या है, कुछ डोर हो सकता है, कुछ शेल्फ हो सकता है, ऐसा कुछ रहेगा करके साइड में रखा था। तो घर बनने के बाद वो जब यात्रा हुआ, तब वो वाराही शक्ति श्री मलराय, जो हमें मातृ स्वरूपिणी हम लोग ऐसे सोचते हैं, तो उन्होंने बोला कि वो मेरा झूला है, तो मैं उस पे बैठती हूं, तो उसको पुनर्स्थापित करो करके।
1: क्या बात है.
0: तो हमने वहां पर उसको स्थापित किया। स्थापित करने के बाद उसका जीर्णोद्धार हुआ 3 साल पहले। तो जब 3 साल पहले जब हमने किया था, तब उसमें प्रश्न वो जो शेल्स के द्वारा लगा के हमें पता चलता है कि क्या क्या करना है, विधि विधान क्या है, वो सब हमने पता किया। तो उसका सूत्र वापस अप्पे उल्लाल जी के दरबार में और देवस्थान में जाके वहां पर प्रसाद लेने को बोला गया था। तो हम लोग जब वहां पर गए लेने के लिए, तो अप्पे उल्लाल जी पूछती हैं, तो वहां पर जैसे पुजारी हैं उनको देवी का मतलब वो आके बात करते हैं ऐसा। तो अप्पे उल्लाल जी, अप्पे मतलब माँ तुलु में, तुलु भाषा में। तो अप्पे उल्लाल जी जो देवी है, उन्होंने मुझे पूछा कि जैसे पहले था वैसे करोगे क्या करके। तो मैंने उस टाइम बोला करने और करवाने का तो आपका, आपकी शक्ति का स्वरूप है। मैं तो सिर्फ सेवा के लिए खड़ा हूँ, आप जैसे बोलते हो हम लोग वैसे करेंगे। आपका अनुग्रह चाहिए और आशीर्वाद चाहिए, आगे कैसे बढ़ना है आप जैसे बोलोगे हम लोग वैसे करेंगे करके। तो उन्होंने संपूर्ण आशीर्वाद देके, अभी वहां पर बहुत सारा अच्छा एक वातावरण हो गया है, यात्रा होता है, सभी साथ में आके सेवा करते हैं, बहुत अच्छा है। और वहां पर हमारे घर के बाजू में एक सीताराम देवस्थान करके, राम जी का मंदिर, तो उसका जब पापा रेनोवेशन कर रहे थे, 2018-19 के आसपास की बात है ये, जब वो बना रहे थे, तो उसमें एक क्या बोलते हैं, एक मंकी एवरी डे आता था,
1: बताइए.
0: एवरी डे आता था, और वहां पर बैठ के देखते थे, और हमें ऐसा लगता है कि वो हनुमान जी हैं करके। ठीक
1: हाँ बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल.
0: हम लोग मतलब मैं बंदर या मंकी बोलने के लिए मैं थोड़ा हिचकिचाता हूँ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हनुमान जी ही आए हैं

0: थे वहां पे। और ताज्जुब की बात है कि हमने इतना कोशिश किया है कि फोटो लेने के लिए, लेकिन जब फोटो लेते थे वो वहां पर नहीं दिखते थे।
1: बताइए,
0: जब कैमरा नहीं है तब आके सब देखते थे, ऐसा होता था। और फिर एक दिन हमने प्रार्थना की कि हमें लोग, हम लोगों को बोल रहे हैं कि आपका आगमन यहाँ पर हो रहा है, तो आप एक फोटो का अवसर दीजिए करके हमने जब वहाँ पर प्रार्थना की तो एक फोटो मिला हमें कि वो वहाँ पर आके बैठे और हमने लिया था एक फोटो। ऐसा होता है तो वहाँ पर महसूस कर सकते, शब्द जो है वो वहां का एक्सपीरियंस बताने के लिए बहुत कम है, मतलब यू हैव टू लिव इट टू फील इट बोलते हैं ना वैसा। वहां पर आके जब सेवा करते हैं वहां पर जो शक्ति है उनका अनुभव होता है, तब पता चल जाए कि इनर अवेकनिंग कैसे कौन से स्तर पे हो सकता है, वहां पर ऐसा पता चलता है।
1: क्या बात है, इतनी स्ट्रॉन्ग वहाँ की वाइब्रेशंस होंगी, मैं सोच सकती हूँ सर। एक सैंडलवुड पेस्ट का भी किस्सा आपने मुझे बताया था, अगर वो भी
0: जी श्योर श्योर श्योर। सो वहाँ पर अप्योरिटी के देवस्थान में एक सैंडलवुड पेस्ट देते हैं, चंदन का पेस्ट, जैसे हम लोग साउथ इंडिया और अपने पूजा में गांध बोलते हैं यूज करते चंदन की थिंग्स। सो वो जब देते तो उसमें संजीवनी शक्ति कर गांध बोलते हैं यूज करते चंदन की थिंग्स। सो वो जब देते तो उसमें संजीवनी शक्ति करके है, तो ऐसा मानना होता है। ऐसा सीताराम देवस्थान में भी जो हनुमान जी को प्रे करके वो देते हैं उसमें भी आता है, और प्योर लाइटी के देवस्थान में भी है। तो ऐसा हमने देखा है कि जहाँ पर काफी सारे हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स थे, जहाँ पर उनको कुछ ना कुछ ऐसी पीड़ा दर्द ऐसा डिजीज कुछ होता था, हम लोग उसको देते थे तो उसमें काफी सारा राहत मिल जाता था। जैसे हमने एक ऐसा एक पेशेंट को जैसे हार्ट प्रॉब्लम था, वो चल नहीं पा रहे थे, उनको दिया। तो हाल ही में जब मैं ऑफिस जा रहा था तो वो नजर आए, वो वॉक कर रहे थे, तो उनको मैंने पूछा आप कैसे हो करके, तो वो आंटी बोलती है बेटा आप जैसे पूछते हो उनको और मतलब एनकरेजमेंट मिलता है कि और एक्सरसाइज करके ये करने के लिए करके, तो उनकी उनकी हालत काफी हद तक सुधार हो गई। तो ऐसा मेरा मानना है कि सच्ची श्रद्धा और प्रार्थना से, जैसे वो बोलते हैं दवा का असर और दुआ का असर, ऐसा दोनों होता है। तो जब पूर्ण सेवा भाव से हम लोग प्रार्थना करते तो अच्छा ही होता है, ऐसा मेरा मानना है।
1: सच है और होती हैं, बिल्कुल होती हैं, कई जगहें इतनी जागृत होती हैं कि आप पूरी आपकी बॉडी आपका सोल तक उसको महसूस करता है वहां जाके, और वहां इतनी दैव्य शक्तियां जीवंत होती हैं। तो मैं बिल्कुल इमेजिन कर सकती हूँ ये सब जो आपने हमारे साथ शेयर किए, ये सारे वाक्या। और मैं चाहती
0: हूँ, और मॉडर्न लाइफस्टाइल में तो नुजा जी, मॉडर्न लाइफस्टाइल में ऐसे काफी सारे हमें इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये करेंगे तो ज्यादा हमें बेनिफिट होगा, लेकिन ऐसे सब जब चीजें हम हमारे जहन में रहती हैं कि एक सुपर पावर देख रहा है, वो अगर गलत उसमें 1% भी गलत हो तो उस तरफ जाने नहीं देती ये सुपर पावर, जो सही राह है उसी पे चलना है, ऐसा होता है।
1: करेक्ट, फिर आपको वो डिवाइन गाइडेंस इतना क्लोजली मिलने लग जाता है
0: जी,
1: कि आप महसूस कर पाते हैं कि भाई ये पूरा पाथ बस मैं बस चल ही रहा हूँ, वो वही गाइड कर रहा है मुझे।
0: जी जी,
1: आगे चलते हैं सर, ये आज का आखिरी सवाल है मेरा, और मेरे लिए बहुत ही क्लोज सवाल है, मेरे जहन से निकला हुआ सवाल है, क्योंकि हर इंसान अपना जीवन, हम बात तो यही करते हैं कि पास्ट में मत जियो, बट अल्टीमेटली जब हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं, जब हमने जीवन कैसा जिया वो देखना चाहते हैं, तो हम हमेशा पीछे ही जाएंगे। तो आज से 50 साल बाद अगर आप अपने जीवन को पलट के देखें, अपनी यात्रा को देखें, तो इस जीवन को जिस तरह से आपने अपना जीवन जिया है उसको एक वाक्य में अगर बतलाना चाहें, या कोई आपके बारे में बोलना चाहे, तो आप क्या चाहेंगे कि वो क्या बोले आपके बारे में?
0: तनुजा जी, मेरा हमेशा ये

0: मानना था कि लोग क्या कहेंगे से ज्यादा मायने रखता है कि मालिक के आदेश क्या है और क्या आदेश करते हैं, और देते भी वही हैं और लेते भी वही हैं। आशा यही होगी कि उनके एक्सपेक्टेशन में हम लोग अव्वल नंबर आए और जो भी सेवा कर पाया हूँ वो स्वीकार हो। लेकिन अगर किसी को ऐसा 50 साल के बाद सोचना पड़े, तो जैसा बहुत जन आज भी बोलते हैं कि पापा की तरह भी ये काम करना चालू कर दिया है, तो उनके साये में जो मैं काम कर पा रहा हूँ वो भगवान और उनको समर्पित हो, और जो भी उनका आदेश है और जो भी उनका एक्सपेक्टेशंस ये जीवन में है, तो वो मैं सब हासिल कर पाऊं और उनको संतुष्ट रखूं, सब जन सुखी रहें, ऐसा मेरा मानना है। बाकी उसके बाद बारे में और नहीं सोचा हूं कि लोग क्या कहेंगे या टाइटल क्या है या क्या सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि जो भगवान सर्टिफिकेट देते हैं उससे बड़ा और कोई सर्टिफिकेट होता नहीं है। तो ऐसा मेरा सोचना है अभी एज ऑफ नाउ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल श्योरिटी से कह सकती हूँ, बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि आपको लोग सच में आपके फादर का रिफ्लेक्शन मानेंगे, क्योंकि आप सच में उनकी लेगेसी इन द ट्रू सेंस आगे लेके जा रहे हैं। नॉट जस्ट हिज मटेरियलिस्टिक लेगेसी बट हिज स्पिरिचुअल लेगेसी विच इज सो रिच एंड सो डिवाइन।
0: जी तनुजा जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि रेडियो SN और आप सबने ये थीम सेलेक्ट किया है, हमें रेडियो SN के बारे में जो हमारा एक क्लोज्ड कराओके ग्रुप है, जो रेखा नाड़कर्णी कामत जी और सुभाष जी कामत उन्होंने शुरू किया है, और यतिन जी उसमें भी यू नो वन ऑफ द मेंबर्स है और कोर कमेटी में भी हैं, तो उन्होंने जब ये बोला कि ऐसा हमें करना है और आप संपर्क करेंगी और ये ऐसा एक रेडियो सेशन हुआ, मैं कभी रेडियो पे नहीं गया हूँ तो ये मेरी पहली बार है, तो कुछ भूल चुक हो तो माफ हो, और बहुत बहुत मजा आया ये सब बात करने में, क्योंकि ये सब आजकल के तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे सोचें, कैसे आगे बढ़े, एक दूसरे का सहायता कैसे करें, और ये जीवन जो आपने बोला जैसे सफर है, तो जब साथ में सफर करते तो उस सफर का मजा एक दूसरे के साथ और ज्यादा कैसे ले, ये सोच मायने रखता है, बाकी सब एक निमित्त मात्र है और आता है और जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं यतीन सर का, यतीन नटकर्णी सर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी इस माध्यम से कि उन्होंने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस करवाया और हमारा ये रेडियो इंटरव्यू हुआ और हमने इतनी खूबसूरत बातों के बारे में, इतनी डिवाइन बातों के बारे में जाना, उलाल के बारे में जाना, आपके व्यक्तित्व के बारे में जाना। बहुत ही खूबसूरत सफर रहा ये सच में। थैंक यू यतीन सर, थैंक यू अंशुल सर। जाते जाते मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि आपने कराओके ग्रुप की बात की, सिंगिंग की बात की, आपके म्यूजिक में इंटरेस्ट की बात की, तो अगर आप कोई गीत गुनगुनाना चाहें हमारे लिए।
0: मेरा आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम इनटू मोर ऑफ तबला एंड पखावज, तो आई हैव नॉट बीन टू मच इनटू वोकल्स, लेकिन दो लाइन अगर बोलना चाहूंगा तो हम

0: के जैसे पहले खुद को जय करे। आशा
1: बहुत ही
0: करता हूँ आपको
1: खूबसूरत,
0: पसंद आया। थैंक यू।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन।
2: अंशुल जी, आज की बातचीत ने हमें ये एहसास दिलाया कि सफलता सिर्फ करियर की ऊंचाइयों से नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, सेवा भाव और आध्यात्मिक गहराई से मापी जाती है। आपके विचारों में एक सुंदर संतुलन नजर आता है, जहां परंपरा और आधुनिकता, कर्तव्य और करुणा, सफलता और विनम्रता सभी एक साथ चलती हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने जीवन यात्रा और अपने अनमोल विचार हम सभी के साथ आज साझा किए। दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तांत्या भील 90.8 FM पे। मिलेंगे फिर एक नए मेहमान और एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।

0: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze.
2: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेरणा, मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ और करते हैं प्रेरणादायक बातें।
1: What a wonderful phrase, Hakuna Matata.
2: दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है और तब

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां सुनाएं।

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन हैं। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी को

अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें? बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बाल आश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील हैं। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे, हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूँ। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ तो अच्छा।

0: कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

0: जिससे पहले।
1: दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ। बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है। क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं? सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीची की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।
0: दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आज समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

0: cotta. What a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
2: दोस्तों आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, कल फिर मिलता हूँ।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार है बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाना है, मतलब उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने आप में लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो जो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे, लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मीन्स एवरीथिंग टू मी।
0: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
1: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ बच्चन जी का, तो श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।
2: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

नहीं देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

लगा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम। यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी मेरा ट्रांसिस्टर दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है।
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है? ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितने तक तेरे लिए बचता रहेगा। कोई गा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जा।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहाँ जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास। What?

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है। सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है अनिल कपूर। बेहद ही हंसमुख और हमेशा ही जवान दिखने वाले अनिल कपूर बेहद पॉपुलर एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अनिल कपूर जी एक पंजाबी हिंदू फैमिली में 24 दिसंबर 1956 को जन्मे थे और तब से लेकर आज तक बस हम सभी का मनोरंजन करते ही जा रहे हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: डार्लिंग, तुम हर वीक गाड़ी चेंज करता, क्या गाड़ी के साथ साथ लड़के भी बदलता?
1: ऐसा न कहो।

अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंदा ने कहा, अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
2: ১৯৮০ के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए, हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? अनिल कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिसमें बधाई हो बधाई, माई वाइफ्स मर्डर, गांधी, माई फादर जैसी फिल्में आती हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। एक बार एक सब्जी वाला सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था, छिड़कता जा रहा था। काफी देर हो गई तो ग्राहक ने गुस्से से बोला, सुनो, अब अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तौल दो।

अनिल कपूर जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आज के कलाकार अनिल कपूर जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, सफर ना करते हुए भी किसी सफर में रहा।

0: वो जिस्म ही था जो भटका किया जमाने में, वो जिस्म ही था जो भटका किया जमाने में, दिल तो मेरा तेरी ही डगर में रहा। तू ढूंढता था जिसे जाके बुर्जे बाबुल में, वो शख्स तो किसी मीरा की चश्मे तर में रहा। हजारों नग थे उस जौहरी की झोली में, हजारों नग थे उस जौहरी की झोली में, उसे कुछ भी ना मिला जो अगर मगर में रहा। नमस्कार, आदाब, गुफ्तगू के रसिको, 90.8 FM रेडियो एसएन और रेडियो टांटिया भील पर आपके पसंदीदा और बेहद अजीज प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, जिंदगी में कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनकी कहानी सिर्फ पन्नों पर नहीं लिखी जाती, बल्कि उनके हौसलों और सुरों में महसूस की जाती है। आज की महफिल एक ऐसी ही बेहद खास, नायाब और जिंदा दिल फनकारा के नाम है, जिन्होंने जिंदगी के सबसे बड़े कठिन इम्तहानों को मुस्कुरा कर पार किया है। वो ना सिर्फ संगीत की दुनिया की एक अजीम हस्ती है, बल्कि अब हमारी रेडियो एसएन फैमिली का भी एक बेहद खूबसूरत हिस्सा है। तो चलिए, बिना एक पल भी गवाए सीधे महफिल में खास इस्तकबाल करते हैं हमारी आज की मेहमान मीना अय्यर जी का। मीना जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है, बहुत बहुत खुशामदीद।
1: खुशामदीद, हमारी आवाज को सुनने वाले श्रोताओं को हमारा आदाब, प्यार भरा नमस्कार। कभी सोचा नहीं था कि गजलों का भी एक ऐसा प्रोग्राम होगा।
0: बेशतर जब हम नहीं कुछ सोचते और वो जब हो जाता है तो उसका तो मजा कुछ और ही होता है, है ना मीना जी?
1: जी
0: तो
1: जी
0: हमारी बातचीत सिर्फ एक दो दोस्तों के बीच की बातचीत है, तो आइए हम और अपने दोस्तों के साथ, मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आप हमें ये बताएं अपने उन शुरुआती दिनों के बारे में जहाँ आपका जन्म हुआ और जहाँ आपका बचपन बीता। वो कौन सी खूबसूरत जगह थी जहाँ आप जैसी खूबसूरत सी मीना अय्यर पैदा हुई?
1: हाँ, हम पैदा हुए थे तमिलनाडु के एक गांव में जिसका नाम है कल्लीडई कुरिची। बड़ा कठिन नाम है, जो कि तिरुनलवेली
0: भाषा की तरह ही।
1: जो कि तिरुनलवेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ की खूबसूरती ये है कि सह्याद्री पर्वत की श्रृंखला से घिरा हुआ है ये गांव, और वहाँ ताम्रवर्णी नदी बहती है।
0: ताम्रवर्णी नदी, मतलब
1: नदी का नाम ताम्रवर्णी है।
0: ताम्र तो तांबे को कहते हैं ना?
1: जी, उसका नाम ताम्रवर्णी है।
0: उस पानी में तांबा तांबा है बहुत?
1: ना ना, ऐसे कुछ नहीं, जैसे गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, वैसे ताम्रवर्णी है। हाँ।
0: ताम्रवर्णी, ओके।
1: चंद पैदाइश के चंद महीने बाद हम लोग मुंबई आ गए। तब बम्बई हुआ करता था,
0: जी
1: वहां 6-8 महीने रहे। फिर हमारे पिताजी की पोस्टिंग बंबई से अहमदाबाद गुजरात में हो गई। तो वी शिफ्टेड टू अहमदाबाद। फिर वहां स्कूल की पूरी पढ़ाई वहीं की, और साथ साथ खूब सारी शरारतें भी की।
0: मतलब आप गुजराती में शरारतें करना सीखी?
1: हाँ, और क्या।
0: तमिलनाडु से सीधी लैंड कर गई आप गुजरात में।
1: हाँ, बताइए।
0: जिंदगी इसी का नाम है। फिर क्या हुआ?
1: फिर स्कूल में हर चीज का, हर तरह की गेम्स मैंने खेली हैं। आप गिल्ली डंडा बोलिए, या गुलेर बोलिए, या मार्बल बोलिए, कुछ भी बोलिए, पेड़ चढ़ना बोलिए, वो तक भी किया मैं।
0: मैंने भी किया है और धर्म से गिरी थी।
1: हाँ, बहुत चोटें लगती थी मेरे को बार बार। और उस जमाने में पता है चोट लगा के घर आओ तो पहले मार पड़ती थी, उसके बाद उसका जो भी होना था होता था।
0: मार पे और मार पड़ती थी। वैसे हमारी माएं भी कितनी कठोर दिल होती थी ना। ओके वाकई मीना जी, उन यादों की मिठास आपकी बातों में साफ झलकती है। अब मीना जी ये बताइए, जिंदगी में अक्सर हम जो सोचते हैं रास्ते उससे बिल्कुल अलग अलग निकल आते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि शुरुआत में आपका सपना कुछ और बनने का था लेकिन मंजिल आपको कहीं और ले गई?
1: हाँ, लगभग ऐसा ही कुछ हुआ। चूंकि मेरे दादाजी आर्मी में डॉक्टर थे, तो बचपन से मेरा ये सपना मैंने पाल रखा था कि बड़े होकर डॉक्टर बनना है। उतनी मेहनत भी की और अच्छे नंबर भी मिले, लेकिन उस दौर में अर्ली 70s में गुजरात यूनिवर्सिटी की पहचान इतनी मशहूर नहीं थी। और ऐसे में मेरी मासी यहाँ मुंबई में रहती थी जिनके कोई बच्चा नहीं था, और वे हमेशा मुझे न्योता देती थी कि मेरे पास आके रहो बेटा।
0: अच्छा।
1: बस मैंने तय कर लिया कि अब वो टाइम आ गया है कि मैं बंबई शिफ्ट हो जाऊं। फिर मैं हो गई पापा से परमिशन लेके।
0: अच्छा।
1: फिर मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया। तो जनाब सब अच्छा था, मगर डोमिसाइल ना होने की वजह से हमारी अर्जी को जो है ना मंजूर कर दिया उन्होंने। मेरा तो दिल ही टूट गया।
0: मेरा तो सुन के ही टूट गया।
1: फिर जैसे तैसे मन को ना दृढ़ बनाया कि नहीं, ऐसे हार नहीं मानते, और भी रास्ते हैं। तो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, रसायन शास्त्र मुझे बहुत ही मेरा प्रिय विषय था, तो उसे लेकर उसे लेकर मैंने जो है ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली, BSc। हाँ, मैंने रुख बदल दी जिंदगी की।
0: आपने कहा तो 360 डिग्री टर्न हो गया ना, कहाँ आप डॉक्टर बन रही थी और अब आप कहाँ पे केमिस्ट्री के साथ BSc कर रही हैं। तो साइंस तो आपके साथ थी ही आपके। तो मीना जी, अब आप कौन सी गजल सुना रही हैं हमारे सुनने वालों को?
1: उस उम्र की बात करें तो जहाँ लव लेटर्स लिखने में हिचकिचाते रहते हैं ना हम लोग, कोई पसंद आ जाता है फिर पता नहीं लगता कि कैसे बताएं। और चिट्ठी लिखने बैठे तो और मुश्किल हो जाता है काम।
0: तो
1: वैसे ही एक गजल है जगजीत साहब की, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, वही सुनते हैं।
0: वैसे आपस की बात है, आप बता सकते हैं आपने लिखा था क्या? दूसरे दौर की बात है, अगर हम इकरार कर भी लेंगे तो कौन सी आप बता जाएगी लिखा था जी? कर लो जो करना है।
1: नहीं, लिखा नहीं था, लेकिन एक सजेस्टिव ग्रीटिंग कार्ड जरूर भेजा था किसी को।
0: कुछ तो किया था ना। कोरे कोरे तो नहीं निकल आए ना?
1: नहीं नहीं, नहीं।
0: गंगा जी में थोड़ा डुबकी लगा ही लिए ना, पैर तो गीले कर ही लिए ना, डुबकी नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं। तो आइए दोस्तों, मीना जी की गाई हुई ये बड़ी खूबसूरत सी गजल सुनते हैं, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। आप भी सुनिए।

वाह, सुना आपने दोस्तों, मीना जी की आवाज में कैसी मीठी, दर्दनाक, सोजदार गजल, मुझे तो बहुत पसंद आई। थैंक यू मीना जी।

0: ओके
1: उन्होंने कहा कि मेहदी हसन आए हैं और इधर ही पास वाले ऑडिटोरियम में कॉन्सर्ट हो रहा है, हम सब जा रहे हैं, तुम भी चलो।
0: वो
1: मैंने कहा अरे यार मेरे को ये गजल वजल सब समझ नहीं आता, मैं नहीं आती। बोले नहीं नहीं नहीं फिर पछताओगी, आना तो पड़ेगा। तो मैंने कहा अरे फिर घर में भी बोलना पड़ेगा, बड़ा टेंशन है। तो बोले नहीं फोन करके बता दो ना क्या दिक्कत है, हम छोड़ आएंगे तुमको रात में। तो मैंने फोन करके बोल दिया कि भाई एक्स्ट्रा क्लास है, ये तो नहीं बोल सकती गजल सुनने जा रही हो। तो क्लास का बहाना करके मैं चली गई उनके साथ सुनने। और माशाल्लाह मेहदी हसन साहब ने जो गाना शुरू किया, मैं तो पागल ही हो गई। क्या अंदाज था और क्या चुनिंदा अल्फाज थे। ओ, मैं तो साहब गजलों की दीवानी हो गई उसके बाद,
0: एक ही शाम में
1: एक ही शाम में
0: लूट लिया दिल आपका
1: लूट
0: मेहदी
1: गया।
0: हसन साहब। हाय उस शाम का जादू आज भी आपके सुरों में जिंदा है। तो चलिए
1: हाँ मुझे
0: दोस्तों। हाँ बोलिए, कुछ और कहना चाहती।
1: उसी उसी उसी शाम को उन्होंने वो गाई थी गजल जो मैं अभी आपसे बोलने वाली थी कि प्ले करें, मुझे आज तक जबानी याद है वो।
0: अरे वाह, तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए डूब जाते हैं मीना जी की आवाज की इस मखमली मिजाज में और सुनते हैं मेहदी हसन साहब की ये पुरअसरार गजल। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। आइए हमारे साथ आप भी सुनिए

0: वाह मीना जी, आपकी गायकी की मैं क्या तारीफ करूं। जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। कितने जबरदस्त नुआंसेस को आपने उसी तरीके से बरकरार रखते हुए गाया। बहुत मजा आया, बहुत मजा
1: शुक्रिया।
0: आया। जैसा कि आपने बताया था कि साल 1981 में आपकी जिंदगी में संगीत का वो सबसे बड़ा दरवाजा खुला, यानी कि HMV की दुनिया। वो नौकरी आपको कैसे मिली और वहां आपकी पहली ही रिकॉर्डिंग का क्या तजुर्बा था?
1: हाँ, देखते ही देखते पढ़ाई खत्म हो गई और पढ़ने की ख्वाहिश भी खत्म हो गई। ऐसे
0: अच्छा।
1: में अखबार में एक इश्तेहार देखा कि HMV के रिकॉर्डिंग सेक्शन में असिस्टेंट चाहिए, और नेकी और पूछ पूछ हमने भी अर्जी दे दी, और मानेंगे नहीं 300 लोगों ने अप्लाई किया था और उनमें से दो चुने गए, जिनमें एक मैं थी। और
0: अच्छा,
1: मुझे,
0: 300 लोगों
1: हाँ
0: में। वाओ।
1: जी, और मुझे चुनने की वजह ये थी कि मुझे काफी सारी हिंदुस्तानी भाषाएं आती थी, खास करके बंगाली। तो
0: अच्छा।
1: फरवरी के महीने में 1981 में मैंने ज्वाइन किया, दाखिल हुए उधर। पहले ही दिन तो मेरे एक अफसरा के दर्शन हो गए जनाब, नाजिया हसन आई हुई थी।
0: ओ वाह, छोटी मोटी तो कोई बात ही नहीं कर रही आप, शुरू से ही नादिया हसन आ गई। वाह,
1: उनका वो डिस्को दीवाने उसी दिन
0: ओ
1: रिलीज हुआ,
0: क्या क्रेज
1: तो
0: थी उस कैसेट की।
1: हाँ,
0: मैंने चार
1: तो
0: बार वो कैसेट खरीदी, आपको बताऊं,
1: क्या बात है।
0: सुन सुन के घस जाती थी।
1: हाँ, मैंने पूरे कमरे में उसके पोस्टर लगा रखे थे।
0: फिर क्या हुआ?
1: फिर महीना भर गुजरा और पहली रिकॉर्डिंग अटेंड करने का अवसर मुझे मिला। फिल्म लावारिस के गाने की रिकॉर्डिंग हमारे स्टूडियो में हो रही
0: यू
1: थी।
0: मीन अमिताभ बच्चन?
1: जी,
0: ओ माय
1: तो
0: गॉड।
1: उनका गाना मेरे अंगने में रिकॉर्ड होना था,
0: वाह।
1: और हमारा दफ्तर जो था वो एकदम डाउनटाउन में क्राउडेड प्लेस में था, तो वहां दिन दहाड़े तो उनको ला नहीं सकते, उनके लिए भी मुश्किल, हमारे लिए भी मुश्किल। फिर ये तय हुआ कि उनको आधी रात में ले आते हैं,
0: अच्छा।
1: तो ये झंझट नहीं पालने पड़ेंगे, आराम से आएंगे, गा के चले जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ, 11:15 को आए और चुपके से हम लोग अंदर ले गए उनको, उनकी रिकॉर्डिंग हुई। और फिर चंद महीनों, ये तो बड़ा पहले ही मेरे को, मेरा क्या बोलते हैं, जिनको एडमायर करती थी वही स्टार देखने को मिल गया,
0: अरे
1: और उस
0: बाबा,
1: पर वो गा भी रहे थे, तो मैं तो एकदम क्या बोलते हैं, बल्ले बल्ले हो गई।
0: ओह माय गॉड, क्या एक्सपीरियंस है, क्या नायाब एक्सपीरियंस है, हाउ लकी यू हैव बीन।
1: फिर चंद महीनों में 1982 में मेरी शादी हो गई जनाब, श्रीमान रमेश अय्यर से।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: मतलब
1: प्रमोशन हो गया मेरा लाइफ
0: अच्छा, वेरी नाइस। फिर
1: में। बस ऐसे ही, फिर रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉर्डिंग,
0: ओ
1: एक आर्टिस्ट
0: वाकई
1: के बाद दूसरा आर्टिस्ट। हाँ।
0: वाकई मीना जी, आपकी जिंदगी का ये एक्सपीरियंस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज है मेरे ख्याल से तो। ये बताइए कि HMV और फिर उसके बाद के सफर में अपने संगीत जगत के एक से बढ़कर एक दिग्गज और उस्तादों के साथ वक्त गुजारा। वक्त गुजारा आपने,
1: जी
0: तो उन महान फनकारों के साथ काम करने का कोई ऐसा अनुभव या फिर किस्सा जो आपके दिल के सबसे करीब था?
1: सबसे ज्यादा काम मैंने मरहूम जगजीत सिंह जी के साथ किया है, उनके उनके हर एल्बम की प्रमोशन का काम मैंने किया है, और उनका अपनी एल्बम के लिए गजलें चुनने का काम जो होता था उसमें वो सबसे ज्यादा वक्त लेते थे। माने 300-400 शायरों में से कोई 8 सिलेक्ट करते थे वो, एक एल्बम के लिए।
2: अच्छा
1: बहुत हाँ, हर एक शायर की शायरी को पढ़ते थे और जो उनके दिल को छू जाती थी उसको वो सिलेक्ट कर लेते थे। हाँ, तो वो प्रोसेस बड़ा मजेदार होता था।
2: अच्छा
1: बीच बीच में मजाक भी होते थे या फिर किसी के लिए कंसर्न भी दिखाते थे। फिर 1984 में उन्होंने एक एल्बम बनाई एक्सटेसीज,
2: अच्छा
1: जिसकी रिकॉर्डिंग के दौरान मैं गर्भवती थी। आप मानोगे, जब मेरी बेटी पैदा हुई मार्च में, तो उन्होंने बड़ा सा गुलदस्ता भेजा था मेरे लिए।
2: ओ
1: और उन दिनों में किसी कर्मचारी को यूं कलाकार से नवाजा जाना माने बहुत बहुत बड़ी बात थी।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मैं
1: और
2: समझ सकती
1: मैं,
2: हूँ।
1: हाँ, और मैं भी बड़ी खुश हो गई कि वाह, मतलब सो नाइस ऑफ देम टू इवन रिमेम्बर मी।
2: वाकई।
1: फिर हाँ, फिर 1995, 1995 में मैंने HMV छोड़कर एक पॉप म्यूजिक की कंपनी जो मेरे एक दोस्त ही चलाते थे वहां
2: अच्छा
1: ज्वाइन कर लिया, मैग्ना साउंड।
2: ओ वाह।
1: हाँ, और उधर पहले ही एल्बम वहां जो रिलीज हुई मेरे ज्वाइन होने के वक्त, वो थी अलीशा की मेड इन इंडिया, जो कि बहुत चली।
2: वाह क्या बात है आपकी, तो प्यारी
1: और वो एक अलग ही
2: बात
1: दुनिया थी। क्योंकि यहाँ जब आर्टिस्ट आते थे तो पैर छूना, यू नो, और उनके साथ बड़ी क्या बोलते हैं, वेरी ट्रेडिशनल वे में पेश आना, और उधर बिल्कुल अलग था। हाँ, माहौल ही अलग था। काम काम का प्रोसीजर वही था, लेकिन दुनिया अलग थी। और वहां मुझे दलेर मेहंदी साहब मिल गए और उनके सारे एल्बम्स को मैंने प्रमोट किया वहां पे।
2: वाह वहां
1: बड़े
2: आज
1: अच्छे
2: दलेर
1: इंसान
2: मेहंदी
1: हैं।
2: ने मिली, वाह
1: जी
2: क्या
1: जी
2: बात है।
1: वो आज भी मुझे उनका मतलब स्टैंडिंग इनविटेशन है कि आप दिल्ली आए तो मेरे घर आए।
2: क्या बात है,
1: बहुत
2: बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ रहेगी आपकी तो।
1: हाँ, मजेदार लाइफ
2: मतलब हर
1: रही।
2: वक्त हमने तो, मैंने तो सिर्फ जगजीत सिंह को ही उनका एक कॉन्सर्ट अटेंड किया और वो भी
1: हाँ,
2: रूपते ही देखा है, और आप सबसे रूबरू हुई और सबको पास से मिली, कितनी
1: हाँ,
2: इंटरेस्टिंग लाइफ रही आपकी। तो
1: यस,
2: इतने सालों आप ने ये सब कुछ, इतना अच्छा वक्त गुजारा, उन महान उस्तादों की सोहबत का असर आपकी गायकी पर भी साफ नजर आता है। तो आइए दोस्तों, मीना जी के सुरों से सजी एक और लाजवाब पेशकश, क्या बोल हैं इसके मीना जी, गुनगुना के बताओ ना जरा।
1: मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा।
2: वाह आइए दोस्तों, मीना जी की आवाज में अब ये गजल सुनते हैं।

0: वाकई मीरा जी, क्या गाती हैं आप! इतने सुंदर सुर हैं आपके, सुनता ही जाए कोई। तो ये
1: शुक्रिया।
0: बताइए अब कि इतने सालों तक पर्दे के पीछे रहकर दूसरों के सुरों को आप रिकॉर्ड करती रही, तो साल 2000 में आपने अचानक एक बहुत बड़ा फैसला किया और नौकरी छोड़ दी। क्यों, क्या
1: जी
0: वजह थी? आपके भीतर की उस गायक ने उस वक्त आपको क्या आवाज दी थी?
1: हाँ, एक वजह तो यही थी कि अब खुद अपने गाने का अरमान पूरा करो और सुकून पाओ। और उसके लिए जगजीत सिंह ने ही मुझे ये एडवाइस दी थी कि आप
0: अच्छा,
1: बाकायदा गाना सीखिए क्योंकि आप बहुत अच्छा गाती हैं। तो मैंने ज्वाइन कर लिया म्यूजिक क्लास। और दूसरी वजह ये थी कि मेरी बेटी 10वीं कक्षा में आ गई थी और मेरी सांस भी जो है बहुत ही कमजोर हो गई थी।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, वाह, सबको लगा कि इस मुकाम पे पहुंच के ऐसे छोड़ क्यों दी नौकरी। सबके मन में यह सवाल था। किसी ने मुझसे, कई लोगों ने पूछा भी कि ऐसे क्यों छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि इट्स बेटर टू लीव व्हेन पीपल आस्क व्हाई देन टू लीव व्हेन दे से व्हाई नॉट। मैंने बस चुप ही करा दिया सबको।
0: क्या बात है! बेटर टू लीव व्हेन समबडी आस्क व्हाई, नॉट व्हेन समबडी आस्क व्हाई नॉट। ओह माय गॉड, बिल्कुल सही, बहुत सही बात बोली आपने। तो सुरों के लिए आपका वो समझौता आज हम सबके लिए भी एक तोहफा बन गया मीना जी। तो अब जब हमारी ऑफलाइन बात हो रही थी, तो आपने अपनी सेहत से जुड़ी एक बेहद मुश्किल चुनौती का जिक्र किया था, जिसने साल 2020 में आपको घेर लिया। उस कठिन दौर में जब आप कैंसर जैसी इतनी बड़ी जंग लड़ रही थी, तब संगीत ने और आपके हौसले ने आपका साथ कैसे दिया?
1: मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद थे मेरे साथ और बेशक ईश्वर की कृपा भी थी। तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। सुना है ये
0: जी,
1: गाना?
0: सुना है
1: हाँ, तो मन में ख्याल आया कि क्यों ना श्रीमद् भागवतम पर थोड़ा विचार किया जाए।
0: वो।
1: तो पहले श्लोक से लेके 18,000वां श्लोक तक हमने पढ़े, उसके साथ उसका अर्थ भी समझाया क्लास में, और आसानी से निकल आए कैंसर की जकड़ से। और उन दिनों में मैंने बहुत गाने गाए भी और सुने भी, और ये ऐप डिस्कवर किए ना, स्म्यूल और स्टार मेकर और पता
0: हाँ
1: नहीं क्या
0: हाँ
1: क्या, सब में बस गाती रहती थी क्योंकि कीमो की वजह से रात में नींद हराम हो गई थी मेरी, तो बस गाती रहती थी। और कोविड भी था तो कहीं जा भी नहीं सकते थे, तो ऐसे में मेरे संगीत ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया।
0: वाकई वाकई सलाम है मीना जी, आपके इस जज्बे को आपने साबित कर दिया कि हौसला और सुर कभी मत्थम नहीं पड़ते। तो इस
1: जी
0: बादम हौसले को सलाम करते हुए आइए सुनते हैं अब आपकी खूबसूरत आवाज में आपके जी से निकली हुई ये गजलें। कौन सी गजल है अब आपकी गाई हुई? मिलकर जुदा हुए तो ना सोया करेंगे हम, यही ना मीना जी?
1: जी
0: तो आइए दोस्तों सुनते हैं मीना जी की रूहानी आवाज में, मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई हुई ये खूबसूरत गजल आप भी सुनिए।

0: क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत अंदाजे बयां है मीना जी आपका, कितना खूबसूरत
1: शुक्रिया।
0: गाती हैं आप। तो आप बताइए मीना जी, उस मुश्किल दौर में आपने ना सिर्फ उस चुनौती को हराया बल्कि आदि शंकराचार्य जी की रचना पर एक खूबसूरत किताब भी लिख डाली। आज
1: जी
0: जब आप हमारे साथ रेडियो एसएन पर अपनी ये नई पारी खेल रही हैं, तो इस पूरे सफर को देखने के बाद आज हमारे सुनने वाले दोस्तों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी?
1: हमारे सुनने वालों से यही कहूंगी कि हर चुनौती का हंस के सामना करो और दिल के किसी भी सुझाव को नजरअंदाज मत करो। जहां तक हो सके खुद भी खुश रहो, औरों को भी खुश रखो। दैट्स हाउ आई लीड माय लाइफ।
0: वाकई मीना जी, आपकी बातें सीधे रूह में उतर जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो में आने के लिए और अपने इन अनमोल एहसासात को हमारे साथ बांटने के लिए।
1: मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और गजल का प्रोग्राम रचने के लिए आपका और समीर का तहे दिल से शुक्रिया। आदाब।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी, हमारी इस महफिल को इस तरह अपने सुरों से सजाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आइए आज की इस मुकम्मल महफिल की आखिरी कड़ी में सुनते हैं मीना जी की आवाज में ढली ये रूहानी इल्तजा। मंजिल ना दे, चिराग ना दे, हौसला तो दे, तिनके का ही सही तू मगर आसरा तो दे। मीना जी की आवाज में आप भी शौक फरमाएं।

बहुत खूबसूरत गाया मीना जी ने। तो दोस्तों, लफ्जों से सुरों तक और मुश्किलों से लेकर सुकून तक का ये सफरनामा आज हमारे दिलों में एक गहरा साया छोड़ गया। मीना अय्यर जी की बातों ने आज हमें सिखाया कि जिंदगी क्या है, कितने भी इम्तहान ले, अगर आपके पास सुरों का साथ और अंदर का हौसला है तो हर शाम खूबसूरत हो सकती है। मीना जी की खूबसूरत बातचीत और उनकी जादुई गायकी ने आज वाकई अल्फाज से एहसास तक के इस मंच को एक नया आयाम दिया है। दोस्तों, अब वक्त की सुइयां गवाही दे रही हैं कि आज की सुरीली महफिल को यहीं थामना होगा और आपसे रुखसत लेनी होगी। कल ठीक किसी वक्त कुछ नए चेहरों, कुछ अनकही बातों और कुछ बेहद खास अल्फाज के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो SN एंड रेडियो टांटिया भील। अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय को दीजिए इजाजत। अपना खूब ख्याल रखिएगा, महकते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा। शपा खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

तो दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ।

0: देखी। तो किसान भाइयों, आजनो कार्यक्रम घणो महत्वपूर्ण छे। आजना समय हारू अने कृषिना क्षेत्रमा स्टार्टअप हारू। तो किसान भाइयों, हा वार नी करी शुरुआत करी आजना खेतीवाड़ी कार्यक्रम नी। कड़कनाथ मुर्गे की एक नस्ल है जिसे काली मासी भी कहा जाता है। ये मुर्गे पूरी तरह काले होते हैं। कड़कनाथ मुर्गे का खून और मांस भी काले रंग का ही होता है तथा इनके अंडे सुनहरे रंग के होते हैं। इनकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के धार और झाबुआ जिले से हुई है। इन पक्षियों को ज्यादातर गरीबों आदिवासियों द्वारा पाला जाता है। इसके स्वास्थ्य से जुड़े फायदों को देखते हुए इसकी मार्केट में मांग अधिक रहती है और इसकी गुणवत्ता के कारण ये काफी महंगा भी बिकता है। हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने भी इन मुर्गों को पाल रखा है और कड़कनाथ मुर्गे से वे कड़क कमाई करते हैं।
1: हमारे साथ में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर A.S. दिवाकर साहब जी और ये प्रबंधक है कड़कनाथ फार्म झाबुआ मध्य प्रदेश में। सर जी, ये बताइए कि कड़कनाथ फार्म जैसे इसकी स्थापना कैसे हुई और इनको GI टैग मिला है, वो किस तरह से इसका पालन किसान भाई करते हैं?
2: नमस्कार किसान भाइयों को, मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर A.S. दिवाकर यहाँ प्रबंधक हूँ कड़कनाथ फार्म झाबुआ में।
1: जी सर।
2: किसान भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा शासकीय कड़कनाथ फार्म है ये 1985 में प्रारंभ किया गया था।
1: जी जी सर।
2: तो सबसे पहले किसी न किसी माध्यम से ये कड़कनाथ के बारे में जानकारी मिली कि ये कट्ठीवाड़ा के जंगलों में अलीराजपुर झाबुआ उस समय एक था, वहाँ ये पाए जाते थे। हमारे गांव के जो ग्रामीण अंचल आदिवासी भाई बहन है इसका पालन करते थे और बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते थे।
1: जी
2: तो
1: जी।
2: इसकी क्या कुछ विशेषताएं थी जिन जब ये शासन तक पहुंची, इसकी विशेष जानकारी तथा ये भी मालूम पड़ा कि ये विलुप्त होने वाला है।
1: जी जी।
2: तो शासन ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, क्यों ना इस प्रजाति का हम संरक्षण किया करके इसकी संख्या बढ़ाई जाए और भविष्य में कभी योजनाएं लागू करेंगे तो योजनाओं के माध्यम से किसान भाइयों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
1: जी सर, ये बताइए कि वैसे तो यहाँ पर देसी मुर्गे मुर्गियाँ पाली जाती है, लेकिन कड़कनाथ और देसी में क्या अंतर है?
2: अंतर तो बहुत कुछ है। आप देख सकते हैं कि जो कड़कनाथ है, कड़कनाथ मुर्गे तीन प्रजाति में पाया जाता है। एक होता है गोल्डन ब्लैक स्ट्रेन, एक होता है पेल्सिन ब्लैक स्ट्रेन, एक होता है आपका जेट ब्लैक स्ट्रेन।
1: जेट ब्लैक।
2: अब ये जो कड़कनाथ है, इसके अगर मूल लक्षण देखें, शारीरिक विशेषताएं देखें, तो सभी अंग इसके काले होते हैं।
1: जी।
2: और नॉर्मल जो देसी मुर्गा मुर्गी रहते हैं उसके कई प्रकार के कलर होते हैं, लाल, पीला, हरा, व्हाइट, ये सब देसी होते हैं।
1: जी जी।
2: अब इसमें अगर हम अंतर करके देखें किसान भाइयों कि आखिर कड़कनाथ ऊपर क्यों माना जाता है, कुछ तो इसके विशेष गुण हैं जिसके कारण लोग कड़कनाथ के प्रति आकर्षक होते हैं।
1: जी जी।
2: तो इसका कारण क्या है कि ये काले रंग का होता है।
1: जी जी।
2: अब काला रंग जो होता है, काला रंग नॉर्मली ऐसे ही नहीं आता है।
1: जी जी।
2: ये सब कुदरती होता है।
1: जी सर।
2: तो कुदरती मतलब ये होता है सूर्य की किरणों से।
1: जी।
2: तो सूर्य की किरणें ही इसके काला रंग बनाने में मदद करती है।
1: जी जी।
2: और वो किरणें से क्या मिलता है, इसकी चमड़ी में मेलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस होता है।
1: जी सर।
2: उस मेलानिन पिगमेंट के कारण ये काला होता है तथा साथ में इसके खाने पीने की जो प्रवृत्ति है।
1: जी सर।
2: अगर ये फार्मिंग करते हैं तो वो एक अलग तरीका होता है, लेकिन अगर हम कुदरती और नेचुरल पद्धति में पालते हैं जंगल में खुले में, तो उसके खाना पीना, इसका जो खाने का तरीका है, ये कीड़े मकोड़े खाएगा, मिट्टी खाएगा, हरी पत्ती खाएगा, ऐसे ऐसे चीज खाएगा जिससे कि इसमें लोह तत्व ज्यादा बढ़े।
1: जी।
2: तो लोह तत्व बढ़ने के कारण तथा मेलानिन पिगमेंट बढ़ने के कारण ये काला रंग होता है।
1: जी।
2: अब अगर दोनों में अंतर करते हैं कि देसी तथा कड़कनाथ की विशेषताएं तथा इसमें अंतर क्या है,
1: जी,
2: तो हम देखते हैं कि इसमें जो प्रोटीन का प्रतिशत रहता है वो करीब 25-26% रहता है, जबकि दूसरे पक्षी जो देसी रहते हैं उनमें करीब 18-20% रहता है। तो हम अंतर देखते हैं 5-6% ज्यादा ही रहता है।
1: जी सर।
2: अब देखें कि कोलेस्ट्रॉल,
1: जी,
2: जो कि कोलेस्ट्रॉल और फैट ना के बराबर रहता है।
1: जी।
2: आजकल का समय है कि कोलेस्ट्रॉल और फैट फ्री तीनों का उपयोग खाने में करें
1: जी।
2: तो बीमार पेशेंटों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं
1: जी जी।
2: और लेनोइक एसिड एक तत्व और होता है
1: जी।
2: वो भी इसमें मात्र 0.1% होता है
1: जी।
2: अगर ये चीजें दूसरे पक्षी में ज्यादा रहेंगी
1: जी
2: तो वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए नुकसानदायक रहती हैं। लेकिन कड़कनाथ एक जैविक औषधि है
1: जी,
2: इसलिए ये जैविक औषधि के रूप में इसका उपयोग करते हैं
1: जी। सर इसको अधिकतर इसको देखा गया कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं, जैसे विटामिन B1 रहता है, B2 रहता है, तो सर ये हमारे रोगों के उपचार के लिए भी काफी फायदेमंद होता है।
2: देखिए सर, कड़कनाथ एक तरह से, सबसे पहले तो बता दूं, मिनरल इसमें
1: जी जी,
2: आयरन
1: जी,
2: लोहा
1: जी,
2: लोह तत्व से भरपूर है
1: जी जी।
2: अब ऐसा कोई व्यक्ति या महिला या बच्चे जिनमें खून की कमी है
1: जी जी,
2: अरक्तता बोलते हैं खून की कमी को, हम क्या बोलते हैं, एनीमिया, हिंदी में अरक्तता, खून की कमी से होने वाली बीमारी
1: जी सर,
2: तो ऐसे समय में अगर हम कड़कनाथ के मास का सेवन हफ्ते में 2 बार भी करते हैं
1: जी,
2: तो निश्चित है उसकी खून की कमी की दूरी पूर्ति हो जाएगी
1: जी सर।
2: दूसरी विटामिन की बात आती है तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में, B1, B2, B12, फोलिक एसिड, ये पूरा बी कॉम्प्लेक्स का एक ग्रुप है
1: जी,
2: भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इससे क्या होता है कि ये जैसे किसी में लकवा की बीमारी हो उससे वो भी इसको ठीक कर देगा, किसी में अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है वो भी ठीक कर देगा, किसी में माइग्रेन की है वो भी ठीक कर देगा, तथा साथ में अगर इसके अंडे का उपयोग करते हैं तो अगर किसी की किडनी खराब होती है तो हम अंडे खाने से किडनी भी ठीक हो जाती है, किसी में अगर शुगर पेशेंट है अंडे खाने से शुगर पेशेंट भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है
1: जी। सर अधिकतर देखा गया है कि जो फार्मों में किसान भाइयों के यहाँ कड़कनाथ अगर किसान भाई पालना चाहे तो उसे किस तरह से, उसको पालने के लिए उसे कहाँ से इसके चूजे मिलेंगे?
2: किसान भाइयों बहुत अच्छे प्रश्न किया, हमारा जो मध्य प्रदेश शासन है किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं समय समय पर लाता रहता है
1: जी।
2: वो कड़कनाथ के लिए विशेष योजना कड़कनाथ के नाम से ही बनाई है, 80% अनुदान पर कड़कनाथ कुक्कुट पालन योजना
1: जी सर।
2: ये है योजना करीब 4400 रुपए की है
1: जी सर,
2: इसमें हम किसान भाइयों से 1100 रुपए लेते हैं
1: जी सर,
2: और बाकी का जो 75% जो रहता है राशि 3300 वो सब्सिडी रहती है
1: जी सर,
2: अनुदान रहता है। हम इसके बदले किसान भाइयों को 40 बच्चे 28 दिवसीय उपलब्ध कराते हैं
1: जी,
2: साथ में 1390 रुपए का उनको खिलाने के लिए दाना उपलब्ध कराते हैं, साथ में 210 रुपए के आसपास की उनको औषधि उपलब्ध कराते हैं
1: जी,
2: और ये सब योजना के अंतर्गत होता है। इसके अलावा अगर योजना से लोगों की, हमारे किसान भाइयों की पूर्ति नहीं होती है
1: जी,
2: अगर वो बड़े मात्रा में पालना चाहते हैं
1: जी जी,
2: तो बड़ा मात्रा में अगर पालना है तो प्राइवेट भी आकर चूजे
1: कड़कनाथ
2: मुर्गी फार्म से प्राप्त कर सकते हैं
1: जी।
2: तो अभी वर्तमान में जो तथा साथ में अगर कोई अच्छी संख्या में कड़कनाथ का बिजनेस करना चाहता है और ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि हमारे कड़कनाथ फार्म में आके वो प्रशिक्षण ले सकते हैं
1: जी जी।
2: प्रशिक्षण ले उपरांत ही अगर वो कड़कनाथ चीजों की देखभाल करेंगे, बड़े करेंगे, तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा
1: जी जी। सर सर जी ये बताइए कि जैसे अपन जो यहाँ से जो किसान भाई चूजे ले जाता है और वो पालता है तो उसमें सर वैक्सीन या टीकाकरण का किस तरह से क्या होता है?
2: देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने किसान भाइयों, आज का समय बड़ा ही बलवान है, बड़ा ही वैसा हो गया है कि बगैर टीकाकरण के आप किसी चीज का पालन कर नहीं सकते हैं। तो टीकाकरण तो बहुत जरूरी है, टीकाकरण होने से जो विषाणुजनक बैक्टीरिया जनक जो जितनी बीमारी है उसके खिलाफ उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है
1: जी सर।
2: तो हम कोशिश करें हमारे फार्म पे हम जैसे ही बच्चा मशीन से निकलता है उसको पहले दिन ही टीका लगा दिया जाता है
1: जी जी सर।
2: उसके उपरांत फिर 6वें-7वें दिन रानीखेत का टीका लगाया जाता है
1: जी सर।
2: उसके पश्चात करीब जब वो 12 से 14 दिन का होता है तो बुम्बारो बीमारी का टीका लगाया जाता है
1: जी जी।
2: उसके पश्चात जब वो 21 दिन का होता है तो उसे रानीखेत लासोटा का टीका लगाया जाता है
1: जी जी।
2: जब वो 28 दिन का होता है तो बुम्बारो का बूस्टर डोज कराया जाता है
1: जी।
2: और अगर हम जैसे पालन करना चाहते हैं तो टीकाकरण के बगैर मुर्गी पालन संभव नहीं है
1: जी सर।
2: तो ये टीके तो यह होते हैं, इसके अलावा हम 35 से 40 दिन की उम्र में चिकन पॉक्स, फाउल पॉक्स बीमारी आती है जो हमारे ट्रैवल एरिया में काफी देखने को मिलती है
1: जी जी,
2: जिसमें पक्षियों की शक्ल सूरत खराब हो जाती है, दाने दाने निकल आते हैं, उस बीमारी का भी टीका लगवाना चाहिए
1: जी जी।
2: इसके पश्चात फिर 2 महीने की उम्र में रानीखेत का भी आरसीबी का भी टीका लगता है
1: जी।
2: तो टीकाकरण तो बहुत जरूरी है
1: जी।
2: टीकाकरण कैसे किया जाता है, कब कब किया जाता है, इसका हम ट्रेनिंग के जरिए किसान भाइयों को जानकारी दे सकते
1: हैं। सर जी बताइए कि हमारे किसान भाई अगर यहाँ से चूजे ले जाएंगे और जिनको पालेंगे तो उनको पोल्ट्री फार्म में किस प्रकार की देखरेख करना पड़ती है, जिनके लिए ज्यादातर सावधानियां रखना है?
2: देखिए किसान भाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कोई भी प्लानिंग करने से पहले, फार्मिंग करने से पहले उसकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण जरूर ले लें
1: जी। जी सर,
2: अगर हम प्रशिक्षण ले लेते हैं तो हमको कुछ उसकी जानकारी उसकी मैनेजमेंट के संबंध में प्राप्त हो जाती है
1: जी जी।
2: तो फिर हमको क्या परेशानी नहीं आती, हमको परेशान नहीं होना पड़ेगा
1: जी सर।
2: तो सबसे पहले कोशिश करें शासन द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध बड़े आसान तरीके से कराया जाता है
1: जी जी।
2: और उसके पश्चात हम अगर ट्रेनिंग अच्छी प्राप्त कर लेते हैं
1: जी जी,
2: उसके बाद हम प्लानिंग करें कि हमको कड़कनाथ का पालन किस प्रकार का करना है, छोटी संख्या में करना है कि बड़ी संख्या में करना है, हमारी क्षमता कैसी है, उस क्षमता के ऊपर हम किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट पैसा लगा सकते हैं, कैसे उसमें, क्योंकि जब उसका पालन करेंगे तो निश्चित उसमें पैसा बहुत खर्च होता है
1: जी जी।
2: और हम उस पैसे को 3 गुना 4 गुना कैसे करें
1: जी सर,
2: तो एक अच्छे प्रशिक्षण उपरांत ही हम उनका अच्छा पालन कर सकते हैं और अच्छा हम पैसा कमा सकते हैं।
1: हाँ सर, देखा गया है कि अधिकतर कड़कनाथ जैसे छोटे चूजे होते हैं जिसमें प्रकाश की जरूरत होती है और इसको पानी भी समय समय पर देना पड़ता है और बड़े चूजों को भी अलग रखना पड़ता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है सर?
2: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया किसान भाइयों के लिए। देखिए साहब, जब भी किसी चूजे का जन्म होता है, अंडे से बाहर निकलता है, चूजा करीब 21 दिन में बाहर निकलता है
1: जी जी।
2: तो बच्चों के विकास के लिए, चूजों के विकास के लिए गर्मी की जरूरत पड़ती है
1: जी जी सर।
2: और वो गर्मी हम कैसे देते हैं, सबसे पहले उन चूजों को हम एक कमरे में रखते हैं, उस कमरे को बोलते हैं ब्रूडर हाउस
1: जी सर।
2: मुर्गी पालन में हर उम्र के लिए अलग अलग कमरे होते हैं
1: जी जी।
2: और सबसे पहले बच्चों का कमरा जो उसको ब्रूडर हाउस बोलते हैं
1: जी।
2: जब वो 2 महीने के हो जाते हैं, दूसरा उसको शिफ्ट कर देते हैं, उसको ग्रोवर हाउस बोलते हैं
1: जी।
2: हिंदी में हम उसको पठोर बोलते हैं
1: जी।
2: जब वो अंडे देने लगे हो जाती हैं तो हम उनको लेयर हाउस में शिफ्ट कर देते हैं, तो लेयर हाउस कहलाता है
1: जी जी।
2: तो ब्रूडर हाउस जो फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें हम चूजों का पालन पोषण करते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें क्या है निर्भर ये करता है कि वो पैदावारी किस समय हो रही है चूजों की, क्या गर्मी के मौसम में हो रही है, क्या बारिश के मौसम में हो रही है, क्या सर्दी के मौसम में हो रही है
1: जी।
2: तीनों मौसम में चूजों की देखभाल करने के तरीके अलग अलग हैं
1: जी जी।
2: अगर गर्मी का मौसम है जैसे मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, यहाँ देखेंगे कि पहले से ही गर्मी बहुत होती है
1: जी जी।
2: नॉर्मली चूजे के विकास के लिए 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है
1: तापमान,
2: तो इसमें तो काफी पर्याप्त मात्रा में बाहर का टेम्परेचर रहता है, करीब 42-45 तक पहुंच जाता है, और कमरे का टेम्परेचर आराम से 37-38 के आसपास रहता है। तो मेरे ख्याल से ये गर्मी के मौसम में अगर हम चूजा पालते हैं
1: जी जी,
2: तो ब्रूडिंग प्रकृति के द्वारा ही हो जाती है, प्रकृति की लाइट गर्मी से ही हो जाती है
1: जी जी।
2: उसमें देखभाल कम करनी पड़ती है
1: जी जी।
2: लेकिन अगर यही हम बारिश के मौसम में करते हैं तो उसमें देखते हैं कि बरसात हो रही है तो निश्चित टेम्परेचर गिरेगा
1: जी जी,
2: तो सर्दी पैदा होगी और मालूम पड़ा कि 8 घंटे की सर्दी हो गई, अगले 8 घंटे में थोड़ी सी गर्मी पड़ गई, तो ये वेरिएशन चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमको थोड़ा देखभाल ज्यादा करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या है उसमें लाइट जो रहती है बिजली
1: जी जी,
2: तो 200 वाट का बल्ब यूज करते हैं। अगर हम जैसे 100 बच्चे पालते हैं
1: जी,
2: तो कम से कम 200 वाट के 2 बल्ब उसके ऊपर लगाए जाते हैं, जिससे क्या है उजाला तो मिलता ही है उससे
1: जी,
2: लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको एक गर्मी भी पैदा करते हैं
1: पैदा कर।
2: और अगर यही हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अगर चूजों का पालन करते हैं
1: जी,
2: तो ऐसी स्थिति में कभी कभार बहुत ज्यादा सर्दी गिरती है, शीत लहर चलती है, तो उस समय चूजों का नुकसान होने की संभावना रहती है
1: जी जी।
2: लेकिन हमको क्या गर्मी 35-37 डिग्री मेंटेन करना है, तो उसमें आजकल हीटर आते हैं और हम हीटर लगा देते हैं।
1: जी जी,
2: तो आजकल हीटर क्या बड़ा ही
1: एक संतुलित मात्रा में जो उसको

0: बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये फर्स्ट स्टेप है पोल्ट्री फार्म को अच्छा चलाने के लिए। अगर हमारी ये शुरुआत अच्छी रहती है, हमारा ये देखभाल अच्छा रहता है, तो इसमें शुरुआत का मतलब ये हो गया बायो सिक्योरिटी।
1: जी जी।
0: तो बायो सिक्योरिटी जो मेजर रहते हैं
1: जी,
0: बगैर उसके मुर्गी फार्म चलाना बड़ा ही मुश्किल है, अन्यथा कोई ना कोई बीमारी बाहर से आएगी
1: जी जी,
0: और वो हमको परेशान करेगी और नुकसान करेगी
1: जी जी।
0: तो बायो सिक्योरिटी मेजर अपनाना बहुत जरूरी है। अगर हम छोटा पोल्ट्री फार्म हो या बड़ा पोल्ट्री फार्म हो, किसी भी व्यक्ति को प्रवेश ना करने दें
1: जी जी,
0: उसको बाहर ही रखें।
1: हाँ।
0: मुर्गी के कमरे में अंदर तो कभी भी प्रवेश ना करने दें
1: जी जी।
0: हम अगर वो आप भी हाँ। खुद पालन करते हैं
1: जी जी,
0: आपके भी जूते चप्पल अलग होना चाहिए
1: जी जी।
0: आप बाहर से आते हैं तो बाहर के जूते चप्पल बाहर रखें
1: जी।
0: मुर्गी पालन करने वाले कमरे के जूते चप्पल के कमरे में ही रखें
1: जी जी।
0: जब उसको अंदर काम करेंगे तो आप उसमें उसका उपयोग करें
1: जी जी।
0: और कपड़े भी हम समय समय पर बदलते रहें
1: जी जी।
0: हम हर दो दिन में नए कपड़े मतलब धो लें, फिर उनका यूज करें।
1: और बर्तन भी सर पानी भी बदलते।
0: हाँ, बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: हम डेली प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में उनके बर्तन बाहर निकालें, उनको सर्फ साबुन से बर्तन धोएं अच्छी तरह से
1: जी जी।
0: इससे क्या रहता है, उसमें कोई भी गंदगी कीटाणु वीटाणु सब खत्म हो जाता है। डेली उसको स्वच्छ पानी, स्वच्छ दाना और स्वच्छ बर्तन, अगर हम इसका मापदंड अपनाएंगे तो हमको एक अच्छा मुर्गा मुर्गी तैयार हो
1: जाए। तो सर जी ये बताइए कि हमारे किसान भाई अगर ज्यादा मात्रा में अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो शासन उन्हें कितना अनुदान दे सकती है?
0: हमारी मध्य प्रदेश शासन की 40-25 की स्कीम है
1: जी जी।
0: तो वो तो बहुत छोटी यूनिट है।
1: हाँ सर।
0: लेकिन हम अगर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं
1: जी जी,
0: तो हम स्वयं का पैसा खर्च करके 200-500 हजार बच्चे हम प्राइवेट लेके उनको पाल सकते हैं। और वो पालने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था प्रशिक्षण जरूर लें
1: जी जी,
0: कि मुर्गी का शेड कैसे बनना है
1: जी,
0: मुर्गी का दाना कैसे खिलाना है, मुर्गी का वैक्सीनेशन कैसे करना है, मुर्गी का सभी प्रकार का जो मैनेजमेंट देखभाल स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं वो हम सब सिखाते हैं
1: जी जी।
0: तो अगर आप तरीके से काम करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी।
1: सर जी, अधिकतर देखा गया है कि मीनार है और देसी मुर्गे पालते हैं, इसके अलावा कड़कनाथ जो बिकता है 3 गुनी कीमत में बिकता है, तो किसान भाइयों को इसके लिए और आप क्या कहना चाहते हैं?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। क्योंकि कड़कनाथ एक यूनिक नस्ल है
1: जी जी,
0: उसके अलग ही लक्षण है, काले रंग का होता है। तो एक जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है
1: जी जी,
0: आपके झाबुआ जिले में कोई व्यक्ति इंदौर से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, महाराष्ट्र से, तो जिनके रिश्तेदार है, मित्र हैं, वो सीधा यही बोलता है कि भाई कड़कनाथ खाऊंगा मैं
1: जी,
0: जी, जी। तो एक अलग ही उसकी मांग रहती है मेहमानों की
1: जी।
0: तो प्राइवेट लोग उसको अच्छा कीमत पर बेचते हैं, करीब मेरे ख्याल से देसी मुर्गा 500 का बिकता होगा, तो करीब 1000-1200 रुपए के आसपास तो इसकी दाम रखता है प्राइवेट मार्केट में। और अगर हमारे शासन के कड़कनाथ फार्म से लेना चाहते हैं तो 540 रुपए के जी हमारे यहाँ उपलब्ध रहता है
1: जी जी,
0: 3600 रुपए उपलब्ध है हमारे यहाँ
1: जी जी।
0: मैं अनुरोध करूंगा कि शासन की रेट पे लें तो ज्यादा फायदा मिलेगा किसान भाइयों को
1: जी जी। तो किसान भाइयों, हमारे सर जी दिवाकर साहब ने बहुत ही अच्छी अहम जानकारी दी, और कड़कनाथ के बारे में किसान भाइयों को और अधिक जानकारी लेना हो सर जी तो आपसे कहाँ संपर्क करेंगे?
0: किसान भाइयों, मैं अपना मोबाइल नंबर आपको नोट करा देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8319050715
1: जी।
0: ये मेरा नंबर है
1: जी सर।
0: आपको कभी भी मुर्गी पालन के संबंध में प्रशिक्षण लेना हो, पालन करना हो, और किसी प्रकार की कोई मुर्गी पालन के क्षेत्र में कोई समस्या आती है
1: जी जी,
0: कहीं कोई बीमारी आती है, तो मैं जरूर मेरे से सुझाव लें, मैं मदद करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका मुर्गी पालन में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो
1: जी जी,
0: सफलता प्राप्त करें
1: जी। तो किसान भाइयों, अभी हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर एस दिवाकर साहब, जो कि प्रबंधक है कड़कनाथ फार्म झाबुआ में, और इन्होंने बहुत अहम जानकारी दी। और किसान भाइयों, हमें लगता है कि आप इन कड़कनाथ की जानकारी

0: सुनकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सर जी जाते जाते हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहते हैं?
1: मेरी सलाह यही है कि क्योंकि अपना जो कड़कनाथ है, मैं भी मुख्य बात तो बताने ही भूल गया आपको।
0: जी जी सर,
1: हमारा कड़कनाथ को हमारा जो केंद्र सरकार है उन्होंने एक जिला एक उत्पाद एक योजना है।
0: जी जी,
1: जिले में ऐसा कौन सा यूनिक उत्पाद है जिसको जिले का मुख्य उत्पाद बनाया जाए?
0: जी जी,
1: तो हमारा जो कड़कनाथ है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चयन किया गया।
0: जी जी सर,
1: तो हम एक जिला एक उत्पाद से अगर जुड़ते हैं और हम 1500 बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो शासन ने इसकी एक वेबसाइट भी खोल रखी है।
0: जी जी सर,
1: jhabuakadaknath.com।
0: जी सर,
1: आप अपना पर्सनल पालन करें, मुर्गों को तैयार करें।
0: जी जी,
1: और इसमें रजिस्टर्ड पंजीयन करवा लें इसमें।
0: जी जी सर,
1: और आप ऑनलाइन बिक्री भी कर सकते हैं आजकल। आपके पास जितने ऑर्डर आएंगे आप अपना सामान वहाँ भिजवाएं, आप अच्छी आमदनी प्राप्त करेंगे।
0: जी जी, धन्यवाद किसान भाइयों, हमारे डाक साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और सर जी और हमारे मैं कमता डामोर और हमारे सर जी A.S. दिवाकर साहब जी को लेते हैं विदा। नमस्कार,
1: धन्यवाद।
2: हूँ से आरजे राकेश
3: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
2: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। તો ચાલો કિસાન ભાઈઓ, હવે લઈએ એક નાનો બ્રેક અને હામલી લઈએ આપણા ઝાબવા જિલ્લામાં ભીલ સમુદાયમાં જબ લાડો પૈણે અને જાન જાય તીનમાં જો ગાવે તું ઘણું મજાનું અને અસલ ગીત હામલીને પાછા ભેળા થા હું કાર્યક્રમ ખેતીવાડીમાં જાજો મતી કહી થા હામલતા રહેજો ઝાબવાની આવાજ સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ પર।

0: ऑनलाइन डिलीवरी की बात करें तो 800 रुपए की ट्रे जाती है,
1: 800 रुपए की,
0: और कोई फार्म से लेके जाता है तो 600 रुपए की ट्रे है,
1: 600 रुपए। सोशल मीडिया मार्केटिंग का बड़ा अच्छा फायदा उठा रहे हैं। बेशक इनका फार्म गांव में है, लेकिन ये ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू अपना चिकन और एग सेल करते हैं। कितने कितने बड़े सेक्शन बनाए हैं और लंबाई चौड़ाई क्या है इस फार्म की?
0: इसकी जो चौड़ाई है पूरे फार्म की और लंबाई 30 फुट चौड़ा है ये
1: जी,
0: और 300 फीट लंबा है ये
1: जी,
0: 30x300 का साइज है।
1: बाहर भी ओपन के लिए आप फ्री रेंज के लिए भी,
0: फ्री रेंज के लिए,
1: और मुर्गियां चर भी रही हैं
0: जी जी, फ्री रेंज में भी खोलते हैं इनको
1: जी।
0: सुबह मॉर्निंग टाइम का फ्री रेंज का होता है और इवनिंग टाइम फ्री रेंज का होता है।
1: ये खर्चा कितना आया आपका, लीज का है या अपना?
0: नहीं, ये अपना लीज का है।
1: लीज का है
0: हाँ जी।
1: क्या लीज जाती है?
0: 20,000 रुपए रेंट जाता है इसका,
1: 20,000 रुपए जाता है। और यहाँ पे वर्कर कितने रखे हुए हैं?
0: दो वर्कर है
1: और संभाल लेते हैं
0: बिल्कुल।
1: आप इसके अलावा क्या करते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या?
0: जी जी,
1: इस बारे में बताइए।
0: मैं MBA हूँ
1: जी,
0: ऑपरेशन से। मेन काम मेरा प्रॉपर्टी का है,
1: प्रॉपर्टी में डील करते हैं। और उसके बाद ये आपने,
0: ये मैंने अभी स्टार्टअप किया 8-9 महीने पहले।
1: 8-9 महीने से किया
0: जी।
1: आप इतने अच्छे धंधे में आप क्यों आए मुर्गी पालन में?
0: एक्चुअली है क्या सर, धंधा आदमी हर कोई चाहता है एक्सपेंड करना अपना
1: जी,
0: तो वो तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है।
1: अच्छा,
0: ये साइड बिजनेस के लिए एक बिजनेस और स्टार्ट
1: मतलब किया, समथिंग मोर।
0: हाँ जी, समथिंग मोर
1: जी, मतलब कुछ और कर ले हटके।
0: बिल्कुल।
1: प्रेरणा कैसे मिली?
0: एक्चुअली है क्या, आप अगर मेरा बैकग्राउंड पीछे से देखेंगे तो मैं किसान हूँ।
1: अच्छा, कहाँ से है?
0: मैं अमरोहा से बिलोंग करता हूँ।
1: अमरोहा से?
0: हाँ जी। तो बाप दादा ये किसानी की है सबने, तो किसान सी से थोड़ा जुड़ाव भी है, लगाव भी है, और हमने गाय भैंस पाली है, मतलब बचपन से ये देखा है चीजों करते हुए, तो एक मन भी था कि कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए। अभी तो ये स्टार्ट फेस है। इसके अलावा गोट फार्मिंग और अदर बर्ड भी रखने का प्लान है इसमें।
1: मतलब अभी आपने कड़कनाथ से शुरुआत की है, आगे आपने गोट फार्मिंग करनी है और पोल्ट्री की दूसरी ब्रीड भी आप रखने का इरादा है?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: जी।
1: इतने शानदार बर्ड है आपके
0: जी,
1: जो चिकन है,
0: एडल्ट चिकन है। हाँ जी,
1: चिकन पर्पस से आपने ये
0: चिकन पर्पस से अलग रखे।
1: बेसिकली जो सर्दियां चल रही हैं अभी
0: जी जी,
1: सर्दियों के लिए कोई खास इंतजाम किया?
0: वैसे तो जो एडल्ट बर्ड होता है सर्दी में इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा, मैंने पिछली सर्दी में भी देखा हुआ है इसको,
1: क्योंकि अच्छे खासे
0: बर्ड है। मेन जो दिक्कत रहती है वो बच्चों को रहती है, तो बच्चों के लिए हमने भट्टियां रखी हुई है। अगर हम बच्चे पालते हैं तो हम ये जो स्टार्ट होगा कि लेइंग पे जब आ जाएगा तो वो वाला सेक्शन खाली हो जाएगा,
1: मतलब ब्रूडिंग का भी आपने ऑप्शन रखा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आप इतने दिन से कर रहे हैं, 8-9 महीने हो गए आप
0: जी,
1: कैसा लगा आपको ये काम?
0: बहुत बढ़िया काम है
1: जी।
0: बस मेन काम है मार्केटिंग।
1: अच्छा,
0: अगर आपकी मार्केट नहीं है
1: जी,
0: तो आप कुछ भी नहीं है, फिर तो आपको इसको बंद करना पड़ेगा। तो
1: यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ आपने ये
0: एक्चुअली है क्या, खाली इसने छोड़ा हुआ है कि जैसे ही वो लेइंग बर्ड स्टार्ट होगा
1: अच्छा,
0: सेक्शन बढ़ेगा
1: इसमें आ जाएगा,
0: तो इसमें आ जाएगा उधर, फिर बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे।
1: स्पेस
0: ज्यादा चाहिए होगा। हाँ जी,
1: यहाँ पे आपने अंडे की ट्रे रखी हुई है
0: जी,
1: मतलब स्टोर आपने यहाँ,
0: स्टोर यहाँ पे क्या हुआ है, रोज 2 दिन में 4 दिन का माल स्टॉक होता है, क्योंकि दूर जाता है प्रोडक्शन ये।
1: हाँ,
0: जो मार्केटिंग ऑनलाइन होती है वो अलग, यहीं से डिलीवरी जाती है। जो बड़ा स्टॉक होता है वो एक साथ होकर जाता है,
1: क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने ट्रे बांधी हुई है
0: जी जी,
1: मतलब
0: पैकिंग में जाता है,
1: रेडी
0: टू मूव है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
1: कड़कनाथ बहुत अच्छी ब्रीड है, और लेकिन लोग बीच में तैयार करने के बाद बेच नहीं पाए
0: जी,
1: आपने कड़कनाथ ही क्यों चुना?
0: बेसिकली है क्या, सारा गेम मार्केटिंग का था
1: जी,
0: और जिस जगह ये कड़कनाथ स्टार्ट किया वो विलेज स्टाइल में था।
1: अच्छा,
0: और विलेज में इसकी मार्केट नहीं है क्योंकि महंगा बर्ड है
1: जी,
0: अंडा भी महंगा है और चिकन भी महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता
1: जी।
0: इसलिए मैंने नोएडा और दिल्ली के जो पॉश एरिया है उनको मार्केटिंग चुनी है,
1: उनको टारगेट किया
0: और फ्लैट वाले क्लाइंट को टारगेट किया, कोठी वाले क्लाइंट को टारगेट किया
1: जी,
0: जो अच्छी चीज खाना पसंद करते हैं उनके लिए फिर रेट मायने नहीं करता, वो 1,000 और 2,000 कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए।
1: तो तैयार चिकन आप किस रेट बेचते हैं?
0: तैयार चिकन अगर यहाँ से जाता है ड्रेसिंग होके तो 1200 रुपए का जाता है।
1: डिमांड कैसी है और जो रेवेन्यू आपको आ रहा है वो कैसे आ रहा है?
0: देखिए, डिमांड ठीक आने लगी है क्योंकि सर्दी बढ़ने लगी है, तो अब डिमांड और बढ़ रही है, मतलब रोज अब ऑर्डर आ रहे हैं। पहले शुरू में दिक्कत हुई मार्केटिंग, मतलब उस लेवल तक स्टार्ट नहीं हुई थी, लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे, अब धीरे धीरे काफी लोगों तक हम पहुंच लगे हैं, माउथ टू माउथ पहुंच लगे हैं, जिन लोगों को हम माल दे चुके हैं उनकी भी दोबारा रिपीट ऑर्डर आने लगे हैं
1: जी,
0: तो अब जाके बेस तैयार होने लगा है माल का।
1: मैंने देखा है जिन लोगों को जरूरत है उनको मिलते नहीं है
0: जी,
1: और जिन्हें देना है वो वहाँ पहुंच नहीं पाते, कहीं ना कहीं ये मार्केट का ही खेल है।
0: बिल्कुल,
1: रिक्वायरमेंट पूरी भी नहीं हो पा रही है और जहाँ तैयार हो रहा है
0: वहाँ माल बिक नहीं रहा है,
1: पहुंच नहीं पा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये एक बहुत बड़ा गैप है इसमें।
0: जी जी जी जी
1: जी। और आपने अपना ये सोशल मीडिया के थ्रू आपने अपनी मार्केटिंग को एनरिच किया?
0: बिल्कुल
1: जी,
0: सोशल मीडिया से क्या होता है कि आप कम टाइम में ज्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं।
2: हूँ से आरजे राकेश,
3: अने हूँ से आरजे कमता डामोर,
2: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती बाड़ी, आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंकिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। कड़कनाथ मुर्गों की प्रजाति में आने वाला सबसे महंगा मुर्गा है। इसका रंग

0: खून पंजे और आंखें आदि सब कुछ काले रंग के ही हैं, इसलिए इसे काले चिकन या काले मांस के नाम से भी जाना जाता है। बाजार में इस मुर्गे की कीमत लगभग 1200 रुपये प्रति किलो से 1800 रुपये प्रति किलो तक है। अन्य मुर्गों के मुकाबले यह केवल 5 से 6 महीने के भीतर ही तैयार हो जाता है। कड़कनाथ मुर्गे चारे में बरसीम और चरी आदि खाते हैं, अतः इन्हें पालने में लागत कम लगती है और मुनाफा काफी ज्यादा होता है। अपनी कई खूबियों के कारण इस मुर्गे की सबसे अधिक मांग है। इसकी एक खास बात यह भी है कि यह अन्य मुर्गों की तुलना में इनमें वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिसे खाने से शरीर को नुकसान नहीं होता। कड़कनाथ मुर्गा मूल रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मिलता है और इसकी कीमत सामान्य मुर्गों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा भी बेहद ही ज्यादा पाई जाती है। साथ ही इसकी हड्डियां और मांस का कलर भी काला होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। हूँ से आरजे राकेश
1: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
0: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। तो किसान भाइयों, एक वक्त हजू लई ब्रेक अने हामली लई आपड़ा झाबवा जिला मां भील समुदाय मां जब लाड लाडियां पैणे अने तीन वाजो गावे त्यू घणु मजानु अने असल गीत हामली ने पासा भेला था हूं कार्यक्रम खेतीवाड़ी मां। जाजो मती किसान भाइयों, हामलता रेजो झाबवानी आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील पर।

0: क्रॉस ब्रीडिंग करीने कम समय में ज्यादा लाभ कमावाना तरीका थी पशु रही तीन थी ना केवल इन्हीं प्रजाति ने खतरों से बल्कि आवाला दनों में इन्हीं मांग भी काफी कम थाई जाए। किसान साथियों देह ना अनेक राज्यों थी युवक अने केवल कड़कनाथ थी आपड़ी आजीविका सलाड़ी रहा से बल्कि कड़कनाथ मांस ने विदेशों में भी सप्लाई करी रहा से। अरे किसान भाइयों कड़कनाथ कुक्कुट इकाई नो वितरण भी कृषि विज्ञान केंद्र थी तलाश करीने किसान भाई इन्हें जानकारी प्राप्त करी सके। तो किसान साथियों कुकड़ा कुकड़ियों ने बीमारियों थी वसाड़वा हर कुछ उपाय एहमा सस्तु पहलू किसान भाई ने साफ सफाई पर पूरो ध्यान देवो जोई अने सच ओहे पक्षी तो सुरक्षित इंसान भी रह सके। तो किसान साथियों पक्षियों ना बर्ड फ्लू अने अन्य बीमारियों थी वसाड़ी सके। ये बीमारियों एक पक्षी थी बीजा पक्षी में दूषित पानी थी अने तिहोना खान पान थी अने तिहोना मूत्र पाखड़ा इने जरिए थी झाड़ू थी तेजी थी प्रभावित थाय से इना वसाड़वा हारू उपाय। तो किसान साथियों दूरी बनाई राखवानी एक पक्षी ने बीमार पक्षियों थी अने पक्षियों ना वाड़ा में बंद राखवानो केवल पोल्ट्री फार्म ने देखभाल करवा वाला ने एक ही व्यक्ति ने तिहुकन जाऊं जोइए अने तिहुनी एक ड्रेस भी रहे से अने तिनी ड्रेस ने केवल बाड़ा में मई जाए तेतरा घड़ी पहेरवी पड़े से अने तिहुनो भोजन अने तिहुनो पानी अने तिहुनी दवाई आदि नो इंतजाम करवा वाला व्यक्ति ही तिना ने तिनी ड्रेस ने पहेरीन मई भरावानो अने तिंथो भरावाती पहलो तिहुना हाथ पाव अने पूरा शरीर ने असली साफ कर लेव जोई अने नकल्या बाद में भी पूरी तरह से तिनी ड्रेस ने पाछी तामेली ने पूरी तरह से साफ सफाई करीने मेलवी जोई साफ सफाई नो ध्यान राखो। तो किसान साथियों वाड़ा मा अने तिहुनी आसपास साफ सफाई राखवी घणी जरूरी से इना प्रकार थी जीवाणु अने विषाणु थी वछाड़ी जाई सके से। पक्षियों वाड़ा ने साफ सुथरा राखवानो अने पक्षियों भोजन अने पानी रोज बदलवानो पोल्ट्री फार्म वाड़ा ने नियमित रूप तो संक्रमण तो मुक्त राखो जाई अने पोल्ट्री फार्म में बीमारियों ने प्रवेश करवाथी रोकनो जाई। आपने बजार ना अने अन्य फार्मों थी अन्य पक्षियों ने आपनु संपर्क में लाववाली चीजों अने तिहुना औजार में भी पूरी तरह थी साफ सफाई करवाना अने नवा पक्षी ने कम थी कम 30 दिन तक स्वच्छ पक्षियों तो सेटी राखवानो। किसान साथियों बीमारी ने फैलवाथी रोकवानो अने वसाड़वाना हारू पोल्ट्री फार्म ना संपर्क में आवाथी पहलू अने बाद में आपड़ा हाथ सीतरा अने खाहणा थी खाहणा धोवा जोई संक्रमण मुक्त बीनान करवा जोई अने बीमारी आपड़ बीजी उधार नी लेवानी। अगर आपु बीजा फार्मो थी उपकरण औजार अने पोल्ट्री फार्म जो उधार पर लाया है जेवी रीते आपड़ी कन पानी ना बर्तन अने खावाड़वाना बर्तन एवी कई प्रकार नी चीजो आपड़ी कन अगर कम पड़ती है तो किसान भाई तीना ने संक्रमण मुक्त कर लेवानी। संकेतों थी जानवानों की पक्षियों पर नजर राखवानी अगर ज्यादा पक्षी मरता है तो तिहुनी आंखियों गणों अने जो सिर ने आसपास हुजन रहे से अने रिसाव थाय से पाखड़ा कलंगी अने पोग नो रंग बदली रहो है अने पक्षी ना अंडा कम आलवा लागे तो इना खतरा न यो एक बड़ो संकेत से। तो किसान भाइयों ने यह ध्यान रखी जोई कि पक्षियों में अचानक कमजोरी पाखड़ा करवानो एवी हरकत कम थावा पर नजर राखवानी। बीमारी की सूचना तो किसान साथियों पक्षियों में सामान्यतः बीमारी अने मौत की सूचना तुरंत नजदीकी पशु उपचार केंद्र ने मोकलवानी आपड़ी रक्षा में ही आपड़ी सुरक्षा से। किसान साथियों ये बड़ाओ आलवाहारू हमारा कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ ना माध्यम थी आज इन्हीं वातियों ने हमो प्रसारित करी रहा से। तो किसान साथियों एवी खेतीवाड़ी नी अने पशुपालन नी अने पक्षी पशु पक्षी पालन नी एवी कई प्रकार नी जानकारियों हामलवाहारू तमो हामलता रहेजो। रेडियो टंटावी 90.8 FM झाबुआ नी आवाज़। તો કિસાન સાથીઓ હાવ આર જે કમતા ડામોર ને ઇજાયત આલજો અને રેડિયો પર હામળા વાળા આગલા કિસાન ભાઈઓ ને નમસ્કાર.
1: તો કિસાન ભાઈઓ, યો હતો આજનો કાર્યક્રમ ખેતીવાડી. આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં આપણી વાત સાંભળી કડકનાથ મુરગી પાલનની. બધી વાતો આપણને વતાડ્યો કૃષિથા જોડાયેલા વિશેષજ્ઞ અને અનુભવી લોકોની, અને હાથે હાથ એવા કિસાન ભાઈની વાતો પણ સાંભળ્યો ત્યાં કડકનાથ મુરગી પાલન કરીને અસલ અને મોટો મુનાફો કમાઈ રહ્યા છે. કિસાન ભાઈઓ, આપણા હાવના સોરા ખેતીવાડી પર ધ્યાન કમ દિન બીજું કામ કરવા લાગી ગયા છે, અને જો ભણ્યા લીખ્યા લોકો છે ત્યાં હાવ ધીરા ખેતીવાડીની તરફ આગાડી બળી રહ્યા છે અને અસલ મોટો મુનાફો પણ કમાઈ રહ્યા છે. ખેતીવાડીમાં સ્ટાર્ટઅપ કરવાનો હમણે સુનહરો મોકો છે, અને આપણા જો ધારેલા જો સપના છે ત્યાં ઇના ક્ષેત્રમાં આપણું પૂરા કરી શકીએ. કિસાન ભાઈઓને હમ પ્રેરિત કરવા હારું રોજ એવા અસલથી અસલ ખેતીવાડીના કાર્યક્રમ લઈને આવી છે, અને આશા પણ કરી છે કે અમારા જ હવા જિલ્લાના કિસાન ભાઈ એ બધી વાતો સાંભળે અને આપણી ખેતીવાડીમાં અને કૃષિ સ્ટાર્ટઅપમાં આગાડી વળે અને અસલ મોટો મુનાફો કમાઈ શકે અને આપણા ઝાબવા જિલ્લાનું નામ પણ રોશન કરી શકે. આ સારું બસ એટલી વાત કિસાન ભાઈઓ, કેમ કે હાવ સમય થઈ ગયો છે બીજા કાર્યક્રમોનો. હું આરજે રાકેશ લું છે તમારી દેખી ઇજાજત, પણ તમે જાજુ મતી કહેતા હામલતા રહેજો ઝાબવાની આવાજ સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ પર. તમારા જ રેડિયો હથવાર આરજે રાકેશની હાથે.
2: કભી હમ

0: अच्छा कौन है।
1: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन राज आपका स्वागत करते हैं।
2: हरगिज नहीं यकीन था हमको अनहोनी बात होगी।
1: आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं गोपाल दास जी। गोपाल दास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दीजिए ना, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं।
3: जरूर जरूर जरूर। मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत, आपकी टीम को सबको बधाई देता हूँ इस अच्छे से रेडियो प्रोग्राम को आप लोग चला रहे हो।
1: शुक्रिया सर।
3: काफी अच्छी तरीके से और काफी लोग को आप लोग ने मौका दिया है मैं अपने टैलेंट को दिखाने का अवसर दिया है ये सबके लिए और मुझे भी मौका मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं वैसे भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ
1: जी।
3: जैसे आपने कहा मेरा नाम गोपाल दास है, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं भिलाई स्टील प्लांट में एज ए, अभी फिलहाल तो मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं एज ए रिटायर्ड ऑफिसर मान के चलिए कि मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ भिलाई स्टील प्लांट का
1: जी।
3: और भिलाई स्टील प्लांट आपको जैसे पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, ये फेमस फॉर रेलवे ट्रैक्स
1: जी जी जी,
3: जो आप पूरे भारतवर्ष में जो रेलवे ट्रैक्स में आप जो भी सफर करते हैं
1: जी जी,
3: तो रेल प्रोडक्शन के लिए फेमस है भिलाई स्टील प्लांट। और भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वेस्ट, लेकिन खास करके रेल प्रोडक्शन जो ट्रैक बनती है अपनी
1: रेल ट्रैक,
3: रेलवे ट्रैक, वो भिलाई स्टील प्लांट का ही प्रोडक्ट है।
1: बहुत खूब।
3: जो पूरे भारतवर्ष में छाया हुआ है, इवन दो भारत के बाहर भी है, कुछ कंट्रीज में भी सप्लाई करते हैं हम
1: जी।
3: तो मैं ऐसे ही शॉप में ही था, स्टील मेंटिंग शॉप में, जहां पर मैं उसकी सेमी फिनिश प्रोडक्ट ब्लूम बनाया करता था।
1: वाह।
3: और ऑपरेशन में था तो मेरे हाथ के ही बहुत सारे सेमी फिनिश प्रोडक्ट गए हैं जिसके माध्यम से रेल ट्रैक तैयार हुआ और जो भारतवर्ष में फैला हुआ।
1: क्या बात,
3: ये मान के आप चल सकते हैं।
1: बहुत खूब, बहुत ही अच्छा लगता होगा ये सोच के कि साहब आपके हाथ से बनी हुई चीजें हैं जो पूरे हिंदुस्तान की सेवा कर रही है।
3: सेवा कर रही है। तो ये तो हुई मेरे प्लांट लाइफ की बात। और मैं, मुझे सिंगिंग का शौक तो ऐसे बचपन से ही था
1: जी,
3: जैसे आप मेरे गाने में सुनेंगे, जैसे शौक था
1: जी,
3: मुझे
1: जी, जी।
3: लेकिन मैं बेसिकली बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ
1: जी,
3: तो आपको पता होगा बंगाली में म्यूजिक का थोड़ा सा कल्चर थोड़ा ज्यादा है।
1: जी हाँ बिल्कुल सही।
3: तो खास करके वहां पर फीमेल को ज्यादा सिंगिंग सीखने के लिए
1: प्रोत्साहित किया जाता,
3: कहा जाता है कि आप प्रोत्साहित किया जाता है कि आपको सिंगिंग सीखना ही है
1: जी।
3: ऐसा हमारे में माना जाता। तो वो सिंगिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे फादर ने हमारे सिस्टर्स के सिंगिंग के लिए टीचर्स को बुलाया करते थे, वो घर में आया करते थे और सिस्टर्स लोग को सिखाया करते थे। मेरे से तीन सिस्टर्स और बड़े थे, उनके बाद मैं हुआ। तो सिस्टर्स लोग गाना सीखते थे तो मैं, मुझे तो मौका नहीं मिला सीखने का, हाँ जरूर मैं सुनता जरूर रहता था। तो सुनने के कारण आप घर बहुत सारे गुरुओं का आप बात सुने होंगे कभी, उन्होंने जो कहा है कि आप सुनो गाने को, तो सुनना बहुत जरूरी है। ताल और म्यूजिक इसको आप जितना सुनेंगे उतना आपका ईयर ट्रेनिंग होगा। तो मैं सीखा नहीं लेकिन मेरा ईयर ट्रेनिंग जरूर हो रहा था।
1: बहुत बढ़िया।
3: बहुत सिस्टर्स लोग सीख रहे थे तो इसलिए मुझे सुर ताल का ज्ञान बचपन से ही हो गया था।
1: वाह।
3: तो मैं वो सीखते हुए मतलब ज्ञान होता, लेकिन उसके बाद मैं फिर ऐसा कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग कभी सिंगिंग का नहीं लिया। हाँ कॉलेजों में मैं कुछ परफॉर्म जरूर किया, कॉलेज में परफॉर्म किया और लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग इसलिए नहीं हो पाई, उसके बाद मेरी पढ़ाई और नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे, बच्चों को बड़ा करना, ये सब के आपाधापी में मैं सिंगिंग सीख ही नहीं पाया। इवन दो मैं प्लांट लाइफ में भी हमारे फंक्शंस हुआ करते थे, डिपार्टमेंटल हो गए, तो उसमें भी काफी लोग गाना गाया करते थे, लेकिन मुझे लोग गाते थे तो मुझे लगता था कि मैं परफॉर्म, मैं भी जाके गाऊं क्या, लेकिन मुझे एक अंदर से एक फियर था किस चीज का कि मैंने सीखा नहीं, तो पता नहीं मैं स्टेज में आऊंगा कैसे गा पाऊंगा, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, तो एक फियर जैसा था, तो इसलिए मैं कभी भी वहां परफॉर्म नहीं किया। लेकिन मैं रिटायर होने के बाद 2018 में मैं रिटायर हुआ नेशनल बैंक से, उसके चार साल बाद मैं ऐसे मीडिया फेसबुक और ये सब देख रहा था, तो मुझे कुछ एक सिंगिंग क्लास कहीं ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन टीचिंग का ऐसा कुछ वीडियो देखने को मिला, तो मेरे मन में तो एक सिंगिंग की सीखने की इच्छा तो थी पहले से, तो मैंने फिर वो म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर लिया। वहां से जो मेरी जर्नी सीखने की चालू हुई आज तक चल रहा है, अभी भी सिंगिंग सीख रहा हूँ, गा भी रहा हूँ, स्टार मेकर भी गा रहा हूँ, और मेरी लर्निंग अभी तक है जो मेरी बन नहीं हुई है और मैं लगातार सीख रहा हूँ। तो ये मेरी सिंगिंग सीखने की जर्नी जो चल रही है, इवन दो मैं आज जो भी गाना मैं गा रहा हूँ या मैं लोगों के पास पोस्ट कर रहा हूँ, इधर पोस्ट कर रहा हूँ, उधर पोस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे डिपार्टमेंट के जो मेरे बॉसेस थे उन्होंने कहा कि आप इतना अच्छा गाते हो लेकिन आपने कभी भी प्लांट में इतने फंक्शन हुए कभी हमें सुनाया नहीं। तो ये आज वो बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं शायद अच्छा गा रहा हूँ, तभी लोग बाग मुझे तारीफ कर रहे हैं, मैं गा सकता हूँ करके। तो ये मेरी एक जर्नी है जो आप म्यूजिक में आने की और सीखने की, और इस कारण मैं हो सकता है आप लोग तक पहुंच पाया हूं।
4: जी बहुत खूब। तो दोस्तों सुना आपने गोपाल जी की जीवनी, किस तरीके से उनकी शुरुआत हुई, तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को और सुनते हैं गोपाल जी के ही इस गीत को।

0: बहुत बहुत बढ़िया गीत, बहुत ही प्यारा स्टार्ट। गोपाल जी, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: मेरे फादर का उस समय तो ऐसा था, जो फादर मदर जो बोल दिए वही बन जाओ। उस समय इंजीनियर डॉक्टर का क्रेज काफी था हमारे समय में, तो मेरी जो वैसे इच्छा थी डॉक्टर की, लेकिन फादर लोग का एक कंसेप्ट था उस समय कि उस समय इंजीनियर्स मेल, पर्टिकुलर मेल लोग इंजीनियर साइड ज्यादा जाया करते थे, तो इसलिए मुझे उसी साइड में उन्होंने

0: प्रोत्साहित किया और मैं फिर इंजीनियर बन गया, पर बनना चाहता था डॉक्टर।
1: तो दोस्तों आपने सुना कि गोपाल जी यूं तो डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन डेस्टिनी ने उनको इंजीनियर बनाया। बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक और प्यारा सा गीत गोपाल जी की आवाज में।

0: गोपाल जी, आप संगीतकार हैं, गीतकार हैं, गायक हैं, तो आपके सबसे पसंदीदा गायक कौन है और क्यों?
1: ऐसा है कि मुझे ओल्ड सिंगर जितने भी थे, मुझे सभी काफी पसंद थे, क्योंकि सबका एक डिफरेंट वॉइस कल्चर था और सब अपने अपने जोनर में अच्छे सिंगर्स हुआ करते थे। उनके गाने में इमोशंस भी काफी हुआ करते। लेकिन आप जहां तक पसंदीदा सिंगर्स की बात करेंगे तो मेरे पसंद में मोहम्मद रफी जी काफी मेरे पसंदीदा सिंगर्स में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो डिफरेंट जॉनर्स के गाने इतने अच्छे गाते थे। खास करके मुझे इसलिए भी पसंद था कि उन्होंने जो भी गाना गाया वो मेरे दिल को छू जाता, छू जाया करते
0: जी।
1: तो यही कारण है कि मैं मुझे उनके गाने काफी पसंद है, और ये भी सुना था कि वो काफी अच्छे इंसान भी थे
0: जी।
1: ये जो मैं मेरे कुछ स्टार मेकर के माध्यम से मेरे कुछ अच्छे पुराने ओल्ड एज फ्रेंड्स भी बने हैं
0: जी।
1: जो एक समय उनके घर जाया करते थे मोहम्मद रफी के।
0: ओह माय गॉड, ओके।
1: जो आज मेरे स्टार मेकर के थ्रू मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए हैं जो बॉम्बे में रहते हैं। उन्होंने वो बचपन में पंजाब से उनके मोहम्मद रफी के घर आया करते थे उनके उनके गाना सुनने के लिए। तो वो उनके फैमिली से भी रिलेटेड है, उनके घर के फैमिली से परिचय है उनका। वो बताया था करते थे कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं उन्होंने जो देखा तो वही मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ कि ये भी मैं सुना था, तो इसलिए मुझे और भी अच्छा लगा कि एक अच्छे इंसान होने के साथ इतने बेहतरीन सिंगर भी थे, तो वही मेरे दिल को छू जाता है उनकी बातें और उनके सिंगिंग को, उनके सिंगिंग लेकर।
0: बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो दोस्तों, गोपाल जी के फेवरेट कलाकार सिंगर मोहम्मद रफी साहब हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं गोपाल जी की ही आवाज में।

0: बहुत बहुत सुंदर गीत। गोपाल जी, अगर आपको आपकी तीन इच्छाएं पूरी कर देने वाला कोई जिन या कोई देवता आपको मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे उससे? तीन इच्छाएं।
1: समीर जी, अब आप सही में, एक इच्छा तो मेरी काफी थी, तो उस वो एक इच्छा में मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा।
0: जी जरूर।
1: ये जो मैं जो सिंगिंग नहीं सीख सका
0: जी
1: बचपन से, तो मेरे, मैं काफी लोगों से कभी कभी ये जरूर कह देता हूं कि काश मेरा बचपन लौट जाता और मैं सिंगिंग बचपन से सीखता।
0: ओके।
1: तो मेरी ये एक मैं जिनमें से ही कहूंगा कि मुझे मेरा बचपन लौटा दे, जिससे मैं अपना बचपन से सिंगिंग सीखना चालू करूं दोबारा, इससे एक अच्छा सिंगर बन सकूं। और खास करके मुझे क्लासिकल सिंगिंग में बहुत शौक है, मैं तो क्लासिकल सिंगिंग में मैं महारत हासिल करना चाहता हूं।
0: बहुत बढ़िया।
1: क्योंकि क्लासिकल सिंगिंग एक ऐसा सिंगिंग है जो आदमी अगर सीख ले, आप जितने भी सिंगर्स बोलेंगे, आप जैसे खास करके लता मंगेशकर जी बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगिंग सीखते थे, उसके बाद ही तो आज इतने बड़े नाम है उनका। तो क्लासिकल सिंगिंग से क्या है ना, बेस एटलीस्ट नॉर्मल गाने वालों का बेस अच्छा जरूर हो जाता है। तो वो मेरी एक इच्छा थी कि मैं बचपन मेरा लौटा देता और मैं बचपन से ही क्लासिकल सिंगिंग सीखता और फिर और सिंगिंग करता उसके अलावा
0: जी।
1: तो ये एक मैं मेरी इच्छा है बोल सकते हो, जो एक ये रहता है। और दूसरा मेरे परिवार से, मुझे अपने परिवार से बहुत मोहब्बत है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो क्या कहूँ, ये परिवार मुझे अगले जन्म ही मिले, कहूंगा कि यही परिवार मुझे अगले जन्म ही मिले।
0: क्या बात है।
1: और सबसे खास आज का जो माहौल है आप तो देख ही रहे, जैसा भी है, तो मेरी यही इच्छा है कि दुनिया में सुख शांति बनी रहे, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। तो दोस्तों, हम भी प्रार्थना करेंगे कि गोपाल जी को आपका बचपन वापस मिले और वो दोबारा से क्लासिकल संगीत को सीखें। तो चलिए इस बीच में उनके गाए हुए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं।

0: बहुत प्यारी गायकी, बड़ा ही प्यारा गीत। गोपाल जी, आपको और बेहतर समझने के लिए हमें बताइए ना, आपकी हॉबीज क्या हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए।
1: जरूर जरूर समझिए। मुझे ट्रेवलिंग का काफी शौक था
0: जी,
1: तो मैं पूरी दुनिया घूम लेना चाहता हूँ। मैं ऐसे भी काफी जगह, इंडिया में तो काफी जगह घुमा हूँ
0: जी।
1: जब बच्चे छोटे थे, बच्चों को छोटे छोटे रहते हुए मैं उनके साथ, परिवार के साथ खूब घुमा हूँ। इवन तो छोटे बच्चे को रहते हुए मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जगह हिल स्टेशन में काफी ले जाया करता
0: जी।
1: क्योंकि मुझे समर के समय में, मुझे थोड़ा वाइफ मेरी एक्चुअली फिजिक्स की लेक्चर है यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में, तो उनका भी क्या है, गर्मी की छुट्टी होती थी और गर्मी की छुट्टी होने के साथ साथ मैं भी अपने प्लान करता था कि मुझे भी गर्मी की छुट्टी में प्लांट से मैं छुट्टी लिया करता था। वैसे ही मेरा प्लानिंग करके मैं उस गर्मी में छुट्टी में छुट्टी ले लिया करता था और हिल स्टेशन जरूर चले जाया करता। तो और तो मैं पर्टिकुलरली समर में मई जून के आसपास मैं बच्चों के साथ, छोटे छोटे छोटे बच्चे थे उसको लेके, मिसेस को लेके मैं अकेले ही हिल स्टेशन चले जाया करता था। जितने भी हिल स्टेशन है ठंड, जहां थोड़ा ठंड रहे गर्मी में, वहां जरूर जाया। तो ट्रेवलिंग का मेरा काफी शौक था। इवन तो मैं बाहर भी, यूरोप कंट्री भी दो बार यूरोप जा चुका हूँ और एशिया में भी ऐसे कुछ जगह जा चुका हूँ। तो ये मेरा घूमने का काफी शौक है, अभी भी शौक है। तो अभी भी मेरा कुछ प्लान चल रहा है कि मैं और जगह को घूमने जाऊं। एक मेरा शौक है ट्रेवलिंग का शौक है, दूसरा है मेरा गार्डनिंग का शौक है।
0: अच्छा,
1: गार्डनिंग का काफी शौक है। तो मेरे घर में ही मैं जनरली ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगाता हूँ
0: जी,
1: और ये ठंड के समय मैंने काफी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मतलब ये करके घर में ही पैदाइश करके मैंने घर में काफी यूज किया हम लोगों ऑर्गेनिक फ्रेंड
0: जी।
1: तो ये गार्डनिंग का शौक है। और तीसरा मेरा सिंगिंग जो है, जो पहले नहीं कर सकता था, अब मैं इसको बरकरार रखा हूं, अब मैं लगातार सीख ही रहा हूं। मैं तो एज ए लर्नर सीखता रहता हूं। गाना तो मैं सेकेंडरी रखा हूं, मतलब गाना तो मैं सेकेंडरी रखता हूं, मैं सीखने का मेरा जो है एक बोल सकते जुनून है कि मैं सिंगिंग में कितना बेहतर कर सकता हूं। और पर्टिकुलरली मैं ऐसे सॉन्ग सिलेक्ट करता हूं जहां से मुझे कुछ सीखने को मिले। तो मेरी ये हैबिट ही है कि मैं कुछ ऐसे ही सॉन्ग सेलेक्ट करता हूं जहां से मुझे लगता है कि ये गाना थोड़ा डिफिकल्ट है और इसे गाऊं तो मैं कुछ सीख सकूं
0: जी।
1: तो मैं इसीलिए मैं सिंगिंग पे, लर्निंग पे ज्यादा जोर देता हूं और मैं सीख रहा हूं।
0: बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, फिर एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं गोपाल जी की आवाज में।

0: थैंक यू।
1: बहुत बहुत प्यारा गीत। गोपाल जी, आपके जीवन में सबसे अच्छा तोहफा आज तक की डेट में आपको क्या मिला है और किसने दिया है?
2: समीर जी, मैं तो यही कहूंगा कि ईश्वर ने ही मुझे दिया है
1: जी,
2: मेरा यह खूबसूरत परिवार।
1: वाह, बहुत खूब।
2: मुझे इससे अच्छा तोहफा और कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है कि ईश्वर ने मेरा जो परिवार दिया है वो बहुत खूबसूरत परिवार है। मैं इसी से मैं काफी खुश हूं।
1: बड़ी ही खूबसूरत बात भाई, बड़ी ही खूबसूरत बात। दोस्तों, सही बात है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो सपोर्ट फंक्शन होता है वो होता है फैमिली, और वो फैमिली अगर बहुत प्यारी सी हो तो फिर बस जीवन स्वर्ग हो जाता है। बहुत बढ़िया बात। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक और गीत सुनते हैं गोपाल जी की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया गोपाल जी, ऐसा कौन सा गीत है जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से सूट करता है, डिस्क्राइब करता है आपकी पर्सनालिटी को? कौन सा गीत है ऐसा?
1: अनुज जी, बचपन में तो मैं काफी चंचल था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा डिफरेंट शांत स्वभाव का हो गया हूँ
0: जी।
1: आप लोग मुझे कूल पर्सनैलिटी के हिसाब से जानते हो और कम बोलने वाला।
0: ओ।
1: मैं बहुत बहुत ही मैं सुनने में मैं ज्यादा विश्वास रखता हूँ बोलने से, तो मैं बहुत ही शांत स्वभाव का हूँ आज के डेट में, इसलिए उस मेरे स्वभाव से अगर कुछ मैच करता आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा एक खामोशिया आवाज है तुम सुनने को आओ, कभी छूकर तुम्हें खिल जाएगी, अगर इनको बुलाओ कभी बेकरार है। अरिजीत जी का कुछ सॉन्ग है ना कैसा?
0: अच्छा, ओ ओके ओके ओके ओके।
1: तो वही खामोशिया आवाज है तुम सुनने को आओ भी, सुनने को आओ भी छूकर तुम्हें खिल जाएगी घर, ऐसी कुछ है
0: जी।
1: आएगी घर इनको बुलाओ कभी बेकरार है, बात करने को कहने को इनको जरा खामोशिया करके ऐसा कुछ सॉन्ग है,
0: बहुत
1: तो आप उससे वो रिलेट कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया गोपाल जी आपने। दोस्तों, गोपाल जी को ठीक ठीक पता है कि कौन सा गीत है जो उनकी शख्सियत को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है। बहुत खूब बहुत खूब। तो फिर चलिए सुनते हैं एक और गीत गोपाल जी का ही।

0: गोपाल जी, क्या आपका कोई निकनेम है जो लोग आपको प्यार से बुलाते हो, हमें बताइए ना, और उसका मतलब क्या है?
1: समीर जी, एक्चुअली घर में एक्चुअली मेरे तीन सिस्टर बड़े थे, तो उस समय कल्चर जनरली बड़ा परिवार रहता था, तो
0: जी
1: तीन सिस्टर के घर एक लड़के के ख्वाहिश भी थी परिवार को, मतलब फादर मदर को। तो तीन सिस्टर के बाद मैं हुआ था। आप मान के लीजिए घर में कितनी खुशी हुई
0: आई होगी।
1: होगी जब
0: जी
1: मैं
0: जी
1: आया।
0: जी जी जी
1: तो उन्होंने मतलब सिंपली मुझे नन्ना नन्ना करके बोल दिया, नन्ना
0: वहाँ
1: मतलब नन्ना बोलने का
0: छोटा
1: हिंदी नाम
0: मतलब।
1: जो है नन्हा, छोटा
0: जी
1: छोटा
0: जी
1: बोल सकते हैं ना, तो
0: जी जी जी
1: वही नाम जो है मेरा आज निकनेम है,
0: बहुत
1: नन्हा
0: बहुत सुंदर, नन्ना, बड़ा ही प्यारा निकनेम है
1: छोटा
0: साहब,
1: सा।
0: बहुत प्यारा निकनेम है, बहुत ही सुंदर। दोस्तों, बड़ा ही प्यारा निकनेम है गोपाल जी का। तो चलिए एक गीत भी सुनते हैं गोपाल जी की ही आवाज में।

0: गोपाल जी, अब हमारे प्रोग्राम की उस जगह पर आ गए हैं मैं जहां पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सुनने वालों के लिए कोई संदेश दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: हाँ, मैं सबसे पहले तो रेडियो तांडिया झील के टीम को तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूंगा कि उन्होंने जांबो की आवाज
0: जी
1: कार्यक्रम के माध्यम से मुझे एक मौका दिया कि मैं आप सब तक मेरी आवाज पहुंचा पाया सिंगिंग के माध्यम से। आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे सुना, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, थैंक यू सो मच। आपके गीत सुनकर, आपसे बहुत प्यारी बातें करके बहुत मजा आया। आप इसी तरह गाते रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, थैंक यू।
1: थैंक यू समीर।
2: अब हमको खबर थी ऐ दिल, रंगीन शहर भी होगी।
3: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं, शुभ रात्रि।
4: कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा

नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को

0: और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आइए दोस्तों, एक और बहुत ही बेहतरीन टैलेंट, एक प्रतिभा, एक सिंगर आज हमारे साथ हैं। ये हैं सना आसिफ शेख जी। बाकी आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए आज के कलाकार प्रोग्राम में मैं पहले सना जी का स्वागत करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा सना जी का। तो सना जी, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारे सभी सुनने वालों के लिए थोड़ा सा बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं, बात कीजिए उनसे।
1: यस यस, सबसे पहले मैं समीर जी, आपका, नितिन जी का और आपके एसएम टीम का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मुझे नितिन जी ने बताया कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल करना है, तो सबसे पहले मुझे थोड़ा टेंशन आया कि अरे मुझे मतलब अभी मैं क्या बताऊंगी।
0: okay.
1: मुझे ऐसा लगा ना कि हम इतने जिंदगी में इतने आगे चले गए हैं कि बहुत पीछे मुड़ के देखना भी, और क्या मैं बताऊं, इस टेंशन में मैं ऐसे ही सोचती रह गई। और मैं पूरा मेरा बचपन, मेरे स्कूल का टाइम, मेरा जूनियर कॉलेज, देन मेरा डिग्री कॉलेज, ये मैं पूरा मतलब अपने आप बोलते ना जैसे ख्वाब में मैं घूम के आई, और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतना मतलब मैंने एक खुशी महसूस की, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप सबका, एसएन टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने मुझे वो सारी सारी खूबसूरत यादें मुझे मतलब वापस से, सभी तो नहीं हो गई पर फिर भी जो कुछ मुझे यादें आ गई उससे मुझे बहुत बहुत खुशी मिली। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सबका। और अगर मेरे बारे में बात करूंगी तो वैसे मेरा जन्म जो है वो अहमदनगर, यानी अभी का जो अहिल्या नगर है, नाम चेंज हो गया है उसका, तो मैं अहमदनगर से हूँ। और वैसे मेरा पूरी अगर हम लोग देखते हैं ना, तो संगीतमय फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मेरी मम्मी म्यूजिक टीचर थी, वो पुणे आकाशवाणी रेडियो की स्टार थी, गोवा आकाशवाणी रेडियो की स्टार थी, अहमदनगर रेडियो की स्टार थी। उसने बहुत सारे दिन रात म्यूजिक प्रोग्राम्स हमारे चलते रहते थे घर में। मेरे पापा भी अच्छा तबला बजाते थे, भाई अच्छा गाता है, तबला बजाता है, बहन भी थोड़ा बहुत गा लेती है। तो एक कहेंगे ना तो संगीतमय माहौल में ही मेरा जन्म हुआ है, मैं उसमें ही पली बड़ी हुई है। पर सोचते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है आगे। तो जैसे मेरा 10th हुआ, तो मेरा शायद 12th में मेरा संगीत विशारद भी कंप्लीट हो गया था, पर जब मुझे 11th स्टैंडर्ड में डालना था जूनियर कॉलेज में, तो मम्मी पापा ने सोचा था कि चलो इनको हम लोग क्या करेंगे, म्यूजिक करियर उनके दिमाग में था कि मेरा म्यूजिक में करियर हो। पर जैसे मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया अहमदनगर के, मैं न्यू आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज में पढ़ी, तो वहां जाने के बाद में फिर होता है ना कि हमें म्यूजिक तो था ही, पर मुझे साइकोलॉजी बहुत पसंद आया। फिर मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करके मैंने फिर स्पेशलाइजेशन मैंने साइकोलॉजी में किया, बीए किया, एमए किया। तो इस प्रकार से आगे आगे चलते गए, फिर मेरा बीएड हो गया, फिर एमएड हो गया, फिर मैंने एमए मराठी भी किया, मैंने हिंदी में एमए किया, गोल्ड मेडल भी हासिल किया। फिर मतलब मैं ऐसे आगे चलती गई और म्यूजिक जो है वो मेरा बहुत पीछे छूट गया। तो अब भी देखती हूँ ना तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि अरे मैंने अगर म्यूजिक में करियर किया होता तो आज हम कहाँ पे होते। पर कहते हैं ना कि ऊपर वाले को शायद वो मंजूर नहीं था और हम आगे चलते रहे, फिर शादी, जॉब, बच्चे, इसमें मतलब म्यूजिक कहीं का कहीं रह गया, जैसे 11, 12 स्टैंडर्ड में ही रह गया वो भी। सो उसके आगे मैं 19 और ये 20 में मेरी बेटी ने मुझे बोला मम्मा तुम गाओ, और मैंने ऐसे ही एक गाना रिकॉर्ड किया, तो बोला देखो मम्मी कितना अच्छा गाना रिकॉर्ड हुआ। तो उसने मेरा यूट्यूब चैनल किया और तब से मेरा थोड़ा थोड़ा सिंगिंग मतलब स्टार्ट हुआ, और मैं ये 4-5 सालों में मैं थोड़ा थोड़ा गाती हूँ। फिर मैं एसएम ये जो ऐप है उस पर भी गाती हूँ, एक हैप्पी वीवी करके ऐप है उसके ऊपर मैं गाती हूँ, वहां पे मैंने बहुत सारा म्यूजिक के इसमें जजिंग भी किया हुआ है, बहुत अच्छे ऐप है। तो इस प्रकार से मेरा संगीत का ये जो सिलसिला है वो स्टार्ट हुआ। पर इसमें मुझे एक बात समझ में आ गई कि एकदम से आवाज चली नहीं जाती है, मतलब इतना खराब नहीं होता है आवाज, हम ठीक है, इतनी परफेक्शन उसमें नहीं रहती है, पर हम सालों के बाद में भी गाते हैं ना तो वॉइस उतनी अच्छी रहती है, ये मैंने देखा। और फिर मैंने अपना म्यूजिक गाना जैसे तैसे, मतलब जॉब संभाल के जैसे वक्त मिले वैसे मैं गाती रहती हूँ। जी थैंक यू।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों, आपने जाना कि सना जी कौन हैं, किस तरीके से उनकी संगीत की ये जर्नी ये शुरू हुई। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए सना जी के ही गाए हुए ये बहुत ही खूबसूरत से गीतों का आनंद लेते हैं, पहले इनका लुत्फ उठाते हैं और फिर सना जी के पास वापस लौटते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया शुरुआत और बहुत ही प्यारे गीत। तो सना जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एक जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है वो पूछ लेता हूं, जिससे हमारे सभी सुनने वालों को आपकी संगीत के बारे में जो अभी तक जानकारी मिली है उससे थोड़ी सी बढ़कर मिल जाए, फिर हम आपको समझने के लिए आपके ऊपर बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके पसंदीदा गायक और गायिका आज तक की डेट में कौन रहे हैं, एक एक या दो दो आप बता सकते हैं, और भला क्यों। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि आपको किस तरीके का संगीत पसंद है। आपने कहा विशारद, संगीत विशारद वगैरह भी आपने किया है, लेकिन फिर भी हर एक गायक या गायिका की अपनी एक पसंद होती है। गजल होगी, सूफी गाने होंगे, या बॉलीवुड संगीत होगा, या क्लासिकल होगा। सो दो सवाल, कौन तो आपके फेवरेट गायक गायिका हैं और किस तरीके का म्यूजिक आप पसंद करते हो, थोड़ा बताइए ना
1: जी। अगर मैं सही आपको बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक का नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैंने जो गौर किया

0: अच्छे लगते हैं मुझे, जो ओल्ड वाले सॉन्ग है गीता दत्त जी के। जी
1: जी। और किस तरीके का संगीत आपको पसंद है वो भी तो बताइए।
0: देखिए, मैं जब मतलब छोटी थी ना, तो घर में सब क्लासिकल का ही माहौल था, तो वो टाइम पे हमने कभी मतलब फिल्मी सॉन्ग मतलब सुनते थे हम लोग, पर कभी फिल्मी सॉन्ग की तरफ हम लोग झुके ही नहीं थे। तो ज्यादा करके सब पूरा मराठी माहौल था हमारे घर में, तो मैं पूरा मराठी ही मतलब जो मम्मी सिखाती थी वही गाती थी, या क्लासिकल वाले चीज थे या बड़े ख्याल थे ऐसे हम लोग गाते थे, या भावगीत भक्ति गीत अभंग यही गाते थे। तो थोड़ा सा फिल्मी की तरफ मतलब कभी ऐसा हम लोगों ने गौर ही नहीं किया था, पर जब शादी हो गई, शादी के बाद में मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छा गाते हैं, वो प्रोफेशनली गाते हैं, उनकी वजह से एक्चुअल में मैं फिल्मी गाना मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में जब मैं देखती थी तो मुझे मतलब स्केल जो रहता था, तो जैसे मम्मी ने सिखाया था काली चार में मैं गाती थी, तो फिल्मी सॉन्ग बहुत हाई स्केल में होते थे तो मैं इतना गा नहीं पाती थी, पर शादी के बाद में मैं अभी काफी अच्छे तरीके से मतलब वो रिकॉर्डेड जो स्केल होते हैं मैं वो गाती हूँ। तो मैं दोनों सवाल जो है आपके उसका एक ही जवाब दूंगी, जो अच्छा लगे मेरे दिल को सुकून दे मुझे खुशी दे मैं उसी टाइप के गाने गाती हूँ। और ज्यादा करके मुझे जो स्लो रोमांटिक सॉन्ग होते हैं वो वाले बहुत पसंद आते हैं।
1: बहुत खूब बहुत खूब, बिल्कुल क्लियर बात है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए सना जी के ही गाए हुए इन गीतों का आनंद लें। तो जो उन्होंने कहा वो आपको इन गीतों में सुनाई देगा और बहुत मजा आएगा। लीजिए, पेश करता हूँ।

0: बहुत खूब। चलिए सना जी, आपकी संगीत के बारे में, आपके संगीत के बारे में बात हो गई, आपके गीतों के बारे में बात हो गई, आपके म्यूजिक जर्नी के बारे में बात हो गई। आप थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आप क्या करते हैं, कौन हैं आप। तो मुझे ये बताइए कि पूरे दिन भर में, मैं मानता हूँ आप बहुत बिजी रहते होंगे, एक किसी भी गृहिणी की तरह बहुत सारे काम आपके साथ चलते होंगे, लेकिन संगीत के लिए, गीत के लिए, गायकी के लिए आप कब वक्त निकालती हैं, कब गाती हैं, चाहे वो एस म्यूल पर हो, चाहे वो स्टार मेकर पर हो, कहीं पर भी रिकॉर्डिंग करती हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बार में तो रिकॉर्डिंग होती भी नहीं, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तो पूरे दिन में कब वक्त निकलता है आपके पास?
1: समीर जी, पहली बात ये, मतलब ऑफ कोर्स हर स्त्री हाउसवाइफ होती है, उसका घर का काम तो कभी चुकता नहीं है, पर मैं प्रोफेसर हूँ और मैं जूनियर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हूँ। और बहुत साल पहले, मतलब जैसे मैंने बीएड और एमएड किया था, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन एंड मास्टर डिग्री इन एजुकेशन, उसके बाद मैं एक्चुअली टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में थी, मैं एज अ लेक्चरर में पढ़ाती थी, मैंने एज अ प्रिंसिपल भी काम किया है, एंड देन कुछ रीजन मुझे वो छोड़ना पड़ा, फिर मैंने मुंबई का जो सेंट जेवियर कॉलेज है वो मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो एज अ प्रोफेसर मेरा मेन, मतलब जो पेशा है वो मेरा टीचिंग का है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं स्टूडेंट से बहुत अटैच रहती हूँ, ये मेन है। और फिर ये सारे शेड्यूल में, मतलब घर का, फिर कॉलेज का काम और वो सब संभाल के, मैं सही में बोलूं आपको, मैं लिटरली एक आधा गाना अगर मुझे बिठाना है तो मैं, मेरा 20 मिनट्स का ट्रैवलिंग होता है, वो 20 मिनट्स में मैं फिक्स कर लेती हूँ कि मुझे ये गाना बिठाना है या मुझे उसको गाना है या शाम में रिकॉर्ड करना है। तो मैं वो ट्रेन में वो गाना सुनती हूँ, दो दिन चार दिन जैसे हो जाए, और जैसे वो अच्छे से हो जाता है कि हाँ बाबा अभी रिकॉर्ड कर सकते, तो देन मैं टाइम निकाल के रात में या सुबह है जल्दी ऐसे मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ।
0: तो वैसे
1: या काम करते करते मैं सॉन्ग सुनती हूँ, वो मतलब जो गाने का सॉन्ग होता है मुझे, तो वो मैं काम करते करते भी सुन लेती हूँ ऐसा।
0: तो आप एक गाने को रिकॉर्ड करने के लिए, मेरा कहने का मतलब है, तीन चार दिन लगते हैं, क्योंकि आप पहले उसको सुनते हो जैसा आपने बताया, फिर उसके बाद जब भी आपको मौका मिलता है, कोई आपने टाइम मुझे फिक्स करके बताया तो नहीं, लेकिन आपको जब भी मौका मिलता है आप उसे रिकॉर्ड करते हो, तो कहने का मतलब
1: ये है। कुछ गाने पहले से अपने, मतलब हम सुनते हैं ना, बहुत सारे गाने ऐसे हैं कि सर हम लोगों को मतलब अच्छे से आ जाते हैं, पर जो छोटी छोटी बारीक सी चीजें होती है, कुछ छोटी छोटी हरकतें होती है, तो ऐसा लगता है कि वो अच्छे से बीट, मतलब हम बैठ के ही गाना गाएंगे, तो उसके ऊपर मैं कोशिश करती रहती हूँ कि इस हरकत को लता जी ने कैसे लिया है, तो मैं ट्राई करती हूँ उस प्रकार से करने के लिए, कोशिश करती रहती हूँ, और जितना हो सके मेरे से मैं फिर वो बिठा के फिर मेरा गाना मैं रिकॉर्ड करती हूँ।
0: तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम सना जी के ही गाए हुए गीतों का आनंद उठाएं, और बातचीत तो हमारी अभी उनसे जारी रहेगी, तो सुनते हैं ये प्यारे से गीत।
1: ला ला ला।

0: बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गायकी। सना जी, अगर आपसे कहा जाए कि एक स्टेज आपको आज शाम के लिए दिया जा रहा है, आपको उसके ऊपर परफॉर्म करना है, सारा स्टेज, सारा हॉल आपका भरा हुआ, आपके स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स जो कलीग्स हैं, आपके सारे जानने वाले सब वहाँ मौजूद हैं, और आपसे ये भी कहा जाए कि चलिए आप किसी एक सिंगर को अपने साथ स्टेज पर बुला सकते हैं गाने के लिए, जो कि आपको सपोर्ट करेंगे, बस गाना आप ही को गाना है, वो सिर्फ सपोर्टिंग फंक्शन में होंगे, तो आप किस सिंगर को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे?
1: माय गॉड, सिंगर को, अगर सही में अच्छे सिंगर्स हैं तो मैं श्रेया जी को बुलाना चाहूंगी, श्रेया घोषाल जी को, कि मेरे साथ आए और सिर्फ खड़ा रहे तो भी मैं गा पाऊंगी कि नहीं पता नहीं, उनको ही देखती रहूंगी।
0: okay.
1: जी जी,
0: तो दोस्तों आपने जाना कि सना जी हैं जो श्रेया घोषाल जी को बुलाना चाहेंगी स्टेज पर, जो कि स्टेज पर आकर उनकी हेल्प करेंगी, उनको सपोर्ट करेंगी, या शायद सिर्फ खड़ी भी रहेंगी तभी भी सना जी को बहुत। तो चलिए आगे बढ़ते हुए दोस्तों इन प्यारे से गीतों का लुत्फ उठाएं और फिर वापस आएं सना जी के पास।

0: बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटिफुल। तो सना जी, आगे बढ़ते हुए मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी खास बात जो आप सभी लोगों को बोलना चाहेंगी हमारे इस रेडियो के माध्यम से, इस रेडियो के थ्रू, जिससे कि आपकी सारी बातें उन तक पहुंच पाएं, आपको लगे कि आप उनसे कुछ बात करना चाहती थी, तो कुछ ऐसा हो तो मौका है, अभी बोलिए ना।
1: यस, बहुत अच्छा मौका है। मतलब म्यूजिक तो है ही, मैं म्यूजिक के बारे में तो हम लोगों ने बहुत बात की, पर मैं एज अ टीचर, मैं जो महसूस करती हूँ कि एज अ टीचर सिर्फ एक टेक्स्ट बुक या एक सिलेबस पढ़ाना ही टीचर का काम नहीं है। तो हम लोगों को आज के जो स्टूडेंट है, आज के जो बच्चे हैं, जिनको हम बहुत बार जेंजीज कहते हैं, उनको हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हालात हम लोग देखते हैं आजकल के स्टूडेंट के बारे में, जो कुछ न्यूज सुनते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर को स्टूडेंट को समझना चाहिए। क्योंकि हर अलग अलग अलग अलग लोकेलिटी से, अलग अलग सामाजिक आर्थिक परिस्थिति से बच्चे स्कूल में आते हैं या कॉलेज में आते हैं, सबकी बराबरी एक जैसे नहीं कर सकते हम लोग। तो एज अ टीचर हमको हर बच्चे को समझना जरूरी है, उतना अटेंशन दे के हर चीज उनकी समझ के लेना बहुत जरूरी है, ये मुझे लगता है। और उसके बाद में मुझे और एक चीज जो है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं जिंदगी में वो कभी होता नहीं है। सो अपना जो कर्म है वो करो और भूल जाओ, बोलते हैं ना हम लोग, नेकी करो और दरिया में डाल दो, तो वो भी करना चाहिए। और जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। सो किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। सो ऊपर वाला हमेशा अपने पास रहेगा, अपना कर्म करते जाए और वो कर्म जो है वो अपना वापस अपने पास आने वाला है। अगर ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे तो कोई मतलब गलत राह पे या गलत दिशा में नहीं जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को समझते वक्त भी ये सारी बातें बच्चों में इंकल्केट करना हम लोगों को बहुत जरूरत है। उनको एडजस्टमेंट कैसे करना है, कॉम्पिटिशन का माहौल जो है, सक्सेस का माहौल जो है, मतलब ये सारी चीजें सिखाते हुए मुझे एक चीज बहुत है कि आज के स्टूडेंट को इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो सिखाना बहुत जरूरी है, भावनिक बुद्धिमत्ता। क्योंकि आज के बच्चों में उतनी एडजस्टमेंट या उतनी क्षमता, मतलब क्षमता बहुत है, पर जो रियल परिस्थिति है ना, उसमें आज के बच्चों को समझना मेरे लिए ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है। तो वो एज ए टीचर करना चाहिए। और मैं और एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जो एनिमल्स है, मैं हम लोग मतलब पूरी फैमिली हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब प्राणी प्रेम हम कह सकते हैं, एनिमल का प्यार बोल सकते हैं, जुबा नहीं होती है उनको, तो प्लीज उनका भी ख्याल करें, गरीब और ये जो लोग हैं उनकी भी सहायता करें। मुझे ऐसा लगता है कि एक ही चीज बोलूंगी कि सिर्फ अच्छा इंसान अगर हम बनते हैं, इंसानियत रखते हैं, तो हर चीज बहुत अच्छे से हो सकती है, ये मुझे लगता है। और यही चीज मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि बस आप अच्छे इंसान बने, इंसानियत बनाए रखे, तो सब कुछ आसान है। थैंक यू समीर जी,
0: बहुत खूब। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इन प्यारे से गीतों का आनंद लें और फिर वापस आते हैं सना जी के पास।

0: बहुत खूब सना जी, हम लोग अपने अपने प्रोग्राम की उस जगह पर आ गए हैं जहां पर मुझे आपसे गुजारिश करनी है कि हमारे जितने भी आज के कलाकार के फैमिली मेंबर्स आपको सुन रहे हैं, आप उनसे कुछ बात कीजिए, कुछ संदेश दे दीजिए उनको, कुछ मैसेज दे दीजिए उनसे, बात कर लीजिए उनसे।
1: जी, मुझे लगता है कि मैंने इससे पहले जो बातें बताई वही मेरे लिए एक संदेश था कि मेन चीज वही है कि हम लोग एक अच्छे इंसान अगर बनते हैं, इंसानियत रखते हैं, तो हर चीज बहुत खूबसूरत है। एक बहुत खूबसूरत सा वीडियो है समीर जी, मुझे पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, एक खत यानी जो लेटर ऐसा हिंदी में है, खत करके वीडियो है। मैं हमेशा जब भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं मतलब आजू बाजू की परिस्थिति देख के या मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि अरे क्या चल रहा है, तो मैं हमेशा वो वीडियो देखती हूँ। उस वीडियो में एक दादाजी है जो अपने जो जन्मा हुआ पोता है उसके लिए खत लिखते हैं, तो उसमें बहुत एक अच्छी मतलब बात बताई गई है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है और बहुत ईजी भी है अगर हम उसे उस प्रकार से जिएंगे। तो हर कुछ सवाल ऐसे है उनके जवाब नहीं है, तो मतलब टाइम वेस्ट मत करो कि उसे ढूंढने में, और इसमें जो जिंदगी आपके सामने है को एकदम बोलते ना खुशहाली से जियो, हर पल हर क्षण आप बहुत खुशी से उस बात को जी सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से जीता है तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और म्यूजिक तो साथ में है ही उसमें, क्योंकि म्यूजिक बोलते हैं ना हर इसकी थेरेपी है, हर इसका इलाज है, तो म्यूजिक तो हमारे साथ जिंदगी में जन्म से लेकर मृत्यु तक म्यूजिक ही हर चीज में बसा हुआ है। चिड़ियों की आवाज, ट्रेन की आवाज, हर हर हर इसमें म्यूजिक है, तो बस इसको दवा बना के हम अपनी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है।
0: बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो सना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपके गीतों का हमने लुत्फ उठाया। आप अपना ख्याल रखिएगा और गाते रहिएगा। थैंक यू सो मच।
1: थैंक

तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में। नमस्कार।

0: जब पास आने का मौका आए तैयार रहो हमेशा विद क्लोज अप। इसकी जिंग फ्रेश टेक्नोलॉजी दे 18 घंटे लंबी ताजा सांसें। क्लोज अप 18 घंटे ताजगी।
1: इट ओनली टेक्स अ फ्यू मिनट्स टू रजिस्टर वन विद ओवर 500 एक्सटेंशंस टू चूज फ्रॉम। प्लस एवरी